मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। द सेंट्रल ब्यूरो।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल कर्म काम में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है।

ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है, यानी हम ही हैं। हमें तराशने में ईश्वर ने अपनी कलाकारी का अंत कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन। आलेख और स्वर है माधुरी महापात्र का।
1: शिक्षा क्यों आवश्यक है? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा कितनी आवश्यक है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में शिक्षा का उद्देश्य छिपा है। मूल रूप से पशुओं से मानव को श्रेष्ठ बनाती है बुद्धि, विवेक और कल्पनाशीलता। इन गुणों का सृजन तथा इनको परिपक्व बनाने में शिक्षा का योगदान अहम होता है। वैसे समग्र रूप से देखें तो शिक्षा ही हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। उत्साहपूर्वक जीने, स्वस्थ रहने, समृद्धिपूर्वक जीने, संबंधों में तृप्ति, व्यवस्था में भागीदारी एवं सार्थक पहचान के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की अपनी विशिष्ट विशेषता है, पर यह केवल जीवन में आर्थिक निर्भरता प्रदान करने में सक्षम हो पा रही है। सामाजिक समृद्धि एवं प्रतिष्ठा की बात इसमें समाहित तो है, इसे कैसे उपयोग किया जाए इसमें लुप्त प्राय है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जीवन को समग्र रूप से विकसित करने की विद्या विद्यमान नहीं है। एक अध्यापक का वास्तविक दायित्व एवं जिम्मेदारी कितनी है, छात्र अपने कर्तव्य के प्रति कितना सजग एवं सतर्क है, जैसी बातें दूर चली गई है। आज की शिक्षा एकांगी हो गई है और इसका कारण है शिक्षा का व्यवसायीकरण। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास की व्याख्या करती है, वह विकास की तकनीकी बनाती है। इससे पता चलता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। बाहरी दुनिया में आत्मनिर्भरता की कला शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही अपने आंतरिक जगत में चिंतन एवं चरित्र की समझ भी इसी के माध्यम से जानी एवं समझी जाती है। बाहरी जगत में व्यवहार पक्ष की महत्ता है तो स्वयं के अंदर सही सोच, पवित्र भाव एवं उत्कृष्ट चिंतन की आवश्यकता सर्वोपरि है। दोनों का मिलाजुला स्वरूप शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। शिक्षा दोनों को एक साथ विकसित करती है। आज की शिक्षा में इन मूलभूत बातों का कोई महत्व नजर नहीं आता है। प्राचीन काल में शिक्षा ज्ञानदान की पुण्य परंपरा थी। योग्य आचार्य जो अपने जीवन में अनेक गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे, वे विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा प्रदान करने में समर्थ एवं सक्षम रहते थे। ये विद्यार्थी अपने राष्ट्र एवं समाज को अपने मजबूत कंधों से सहारा प्रदान करते थे। यही था हमारे अतीत के स्वर्णिम भारत का रहस्य। जब से यह परंपरा विलुप्त हुई है, इसके स्थान पर अन्य स्वार्थ युक्त परंपरा उठ खड़ी हुई है। पहले शिक्षादान की पुण्य परंपरा थी, अब यह ऊंचे दामों में बेचने का व्यवसाय बन गई है। आज ऐसे कई शैक्षणिक प्रतिष्ठान हैं जहां एक मध्यम वर्गीय छात्र नहीं जा सकता, कारण वहां बड़ी रकम की जरूरत होती है। ऐसे में एक योग्य एवं प्रतिभावान छात्र चाहकर भी उन संस्थानों में दाखिला प्राप्त नहीं कर सकता। संपन्नता एवं व्यवसायीकरण की इसी अंधी दौड़ में शिक्षा रूपी व्यवसाय तो फल फूल रहा है, परंतु शिक्षा का मूल उद्देश्य खो गया है। शाला में केवल अच्छी पढ़ाई, अच्छे अंक, अंग्रेजी सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है। उनमें अच्छे विचार एवं पवित्र भावनाओं का बीजारोपण करना चाहिए। विद्यार्थियों में मौलिक सोच एवं चिंतन की प्रक्रिया को विकसित करने की प्रेरणा भरनी चाहिए। उनके अंदर औरों के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव पनपे। श्रेष्ठ विचारों के साथ सामान्य अंक लेकर उत्तीर्ण होने वाला छात्र किसी मेरिट छात्र से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। पाठशालाओं में जीवन जीने की कला, जीवन प्रबंधन, समय प्रबंधन, व्यावहारिक बुनियादी शिक्षा आदि जीवनोपयोगी पाठ्यक्रमों को शामिल कर उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए। और जो विद्यार्थी इस तरह के क्रियाकलापों में आगे आते हैं, उन्हें उचित पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। इससे पाठशालाओं में वातावरण सुखद एवं सहज होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख और स्वर था माधुरी महापात्र का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है अनुराधा पौडवाल का। संगीत निर्देशक है सतीश भाटिया।

काकभुशुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को बताया, जैसे गुरु अथवा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, वैसे ही भक्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संतोष की प्राप्ति से कामनाओं से मुक्ति मिलती है। जब तक कामनाएं जगती रहती हैं, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर था अनुराधा पौडवाल का, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: कास्तकार भाई बहन मन, मेरी जो नाव सुनते खन हुंचो राग जो सुरता पड़े से, कोनी कोनी कम आरु कोनी कोनी आगर राग बीती मन रहे से, आरु टोंड ने डारतो चिखन आँख ने आंसू बले ढरकुन जाओ है। मांतर ये नीरले काई तीज ने सुवाद नी रहे, चटनी ने चरफर मिरी रहो तेबे हुंचो सुवाद बढ़ुन जाए से, बलो ने आमचो खादी चो गोटोक मूर भागा असन होय से ये मीरी। देह हाथ पाए का जे बले खूबे लाभकारी रहे से, आरु सफाई घर मन ने तो जानस ची कि संधान हो मसला हो कि साग भाजी हो, सफाए ने मिरी नी पड़लो ने हुंचो सुवाद अधूरा हो जाए से। आरु मिरी गोटोक नगदी फसल बले होय से, तो कास्तकार भाई बहन मन साग काजे शिमला मिरी, सलाद काजे काचा हरा मिरी, संधान काजे मोट लाल मिरी, आरु मसला मन काजे सुखा लाल मिरी चो कमानी करे जाए से। तो काचा हरा मिरी चो कमानी नुआ वैज्ञानिक वाट मन ले करलो ने ये चो उपजन आगर हो सके से। तो इया आज जानू हरा काचा मिरी चो कमानी चो नुआ वाट मन की। काचा हरा मिरी चो कमानी करतो काजे खिंडी गरम आरु ओल बीती लहरा पानी नंगत रहुआ है। हुसन तो ये सफाई किस्म चो लहरा पानी ने होक सके, मांतर आगर शीत आरु आगर घाम नुकसान करे से। हुसन तो काचा मिरी सफाई किस्म चो भुई माटी ने मंडाव खोआ है, मांतर ध्यान संगात और गोठ ये आए कि हुता पानी चो निकासी अच्छा रहो, दुई मटिया बारोई भुई ये मन बले खूबे अच्छा रहे से। कास्तकार भाई बहन मन के आप लो ठान चो भुई माटी के दखुन किस्म चो चुनाव करुन आगर उपजन देतो बीती किस्म मन के मंडातो रहे। बेड़ा ने भुई माटी जल

0: विकास सिंचाई चो पूरा प्रबंध रहो तेबे काचा मेरी चो फसल अच्छा अरु आगर उपजन दे दे। नर्सरी 10 ले 15 फुट लाम अरु 2.5 ले 3 फुट ओसार रहो। संगे संगे एचो डेंग 6 इंच तक रहो। एचो पाट पाट ने गहरा नाली कोडून दे तो रहे आरु जोन 5 ले 10 सेंटीमीटर चो अरक फरक ने 2 ले 2.5 सेंटीमीटर गहरा रहो। बीज के लेन ले लेन बनाउन भाती बुनतो रहे। एचो फरक 5 ले 7 मीटर रहो। एथा पानी चो निकासी अच्छा रहो आरु भूई ने छाए नी पड़ो। ये गोठमन के ध्यान संगातो रहे। आरु ये मिरी चो दखा रखा करतो काजी कियारी मन ने जरूरत हिसाब ले फवारा महा सिंचाई करते रहतो रहे। घाम बेरा गोटोक दिन चो अरक फरक ने पानी छींचते रहतो रहे और फिर वर्षा बेरा पानी चो निकासी अच्छा रहो ये ध्यान संगातो रहे। संगे संगे कियारी मन चो लाटा बूटा मन के निस्काते बले रहतो रहे और सिंचाई संगे संगे निराई गुड़ाई बले करते रहतो रहे। काचा हरा मिरी चो बेड़ा ने पहल हार सिंचाई रोपा मंडा तो पाछे करून देतो रहे और घाम बेरा 5 ले 7 दिन चो भीतरे और शीतकार बेरा 10 ले 12 दिन चो अरक फरक ने सिंचाई करते रहतो रहे। असन करलो ने यथा फूल और फल अच्छा धरे से हारक फेर सुरता कराऊं दे से कि बेड़ा ने पानी चो निकासी अच्छा रहो। बेड़ा ने पानी मांडुक नी देतो रहे और फर के टूटा तो काजे काचा हरा मिरी के फर धरतो चो 15 ले 20 दिन पाछे टूटाऊ सकास। पहल और दूसर हार टूटा तो समय ने 12 ले 15 दिन चो फरक संगाऊ सकास। फर मन अच्छा तैयार हो तेबे टूटातो रहे और ये काचा हरा मिरी चो उपजन असन सांगलो वाट ले हरा काचा मिरी चो कमानी कर लो ने ये चो उपजन आगर ले आगर 150 ले 200 क्विंटल 2.5 एकड़ हिसाब ने और 15 ले 25 क्विंटल 2.5 एकड़ हिसाब ले सूखा लाल मिरी जो कमानी हो सके से। तो कास्तकार भाई बहन मन असन वाट ले मिरी कमाउन आप लो आमदनी के बढ़ाओ सकासे और सफाए लोग के साग भाजी संधान चटनी मसला ये सफाए काजे मिरी चो स्वाद दे सकासे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि समय की बेड़ा खड़ा चुकोट। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोकवाद्य धुन का कार्यक्रम। माफ करेंगे, लीजिए सुनिए कार्यक्रम हुलहुली। आज इसमें सुनिए गौ पतैया पाड़। वादक कलाकार हैं श्रीधर और साथी।

हुल्लोली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गौ पतैया पाड़। वादक कलाकार थे श्रीधर और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 3:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:55 और सुबह 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आज के आकर्षण होंगे कार्यक्रम रसरंग, विषय होगा हिंदी सिनेमा में महिलाएं, प्रस्तुति होगी चंद्र ऋषि ठाकुर की। हल्बी समाचार बुलेटिन, साथ ही फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। सुबह 9:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। सुबह 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के गीत। गुलशन कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 10:00। इसमें आज आप सुनेंगे प्यार शीर्षक पर हिंदी फिल्मी गीत। गुरुदुम कार्यक्रम का प्रसारण समय सुबह 10:30 पर। इसमें सुनिए हल्बी गीत। कलाकार होंगे लोकनाथ वैष्णव और साथी। सुबह 11:00 होगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म अभिनेत्री रीना रॉय पर। विभिन्न बोलियों में लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस में। प्रसारण समय सुबह 11:30 पर। झुमझुमा कार्यक्रम में दोपहर 12:00 सुनिए हल्बी गीत। कलाकार होंगे मोतीलाल और साथी। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार बेड़ा खाड़ा चुगोट। दोपहर 1:05 पर। दोपहर 1:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार। कार्यक्रम का प्रसारण समय दोपहर 2:30। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:00 आप सुनेंगे देशभक्ति गीत समूह स्वर में। युवाणी शाम 5:10 पर।

0: शाम 6:30 पर सुनिएगा गोंडी समाचार बुलेटिन। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चुगांव सुनिएगा शाम 7:21 पर। रात्रि 8 बजे होगा कार्यक्रम कुड़ई फूल, इसमें सुनिए नीलूराम और साथियों के गाए भत्री लोकगीत। पिलामन का जी गोट हल भी बोली में रात्रि 8:30 पर प्रस्तुति होगी सुक्रुराम यादव की। पुरानी फिल्मों से रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम ओआठ में आप सुनेंगे कृषि विभाग की योजनाएं। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अजय कुमार मीरी से ली गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10 बजे हल्बी परिचर्चा, विषय होगा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास। प्रतिभागी होंगे श्री मंधर रामनाग, श्री बलदेव मौर्य। कार्यक्रम का संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा हम आपके लिए लेकर आएंगे आज रात्रि 10:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 3 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 9:55 और 11:55 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स सदस्य देशानां विदेशमन्त्रिणः पारस्परिकहितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यन्ति इति। लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला वर्यस्य नेतृत्वे एकं उच्चस्तरीयं भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं भारत भूटान संबंधान सुदृढीकरणोद्देश्येन सह अद्य भूटानस्य यात्रां करिष्यति। 51 सदस्याः भूटान भारत संबंधानां विभिन्नेषु विषयेषु उभययोः प्रतिवेशी देशयोः मध्ये सहयोगं संवर्धयितुं च चर्चां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कुछ स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्यवर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

जगदलपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी शिवा सिंह का प्यार भरा अभिवादन। आज नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम में आपके लिए है कार्यक्रम रसरंग।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
0: या फोन करें 222150 या 222400,
1: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
1: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 15102।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
5: श्रोताओं, आज हम आपसे छोटी सी चर्चा करते हैं, छोटी छोटी बातों की, और इन छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन में किस प्रकार का बदलाव हम ला सकते हैं, या कहें कि छोटी छोटी बातों का बड़ा असर, जिसके द्वारा हम स्वयं अपने जीवन को स्वनिखार सकते हैं। पहला है जरूरत से ज्यादा बात करना, दूसरा मैसेज का देर से जवाब देना, तीसरा है हर बात पर हाँ कहना, चौथा स्पष्ट बोलने के बजाय बहाने बनाना, पांचवा है बिखरा हुआ सामान। तो श्रोताओं, ये बातें तो छोटी है लेकिन इसका असर बड़ा है। आज हम इन 5 बिंदुओं पर छोटी सी चर्चा कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। जैसा कि पहला है जरूरत से ज्यादा बात करना। हर किसी से अपनी निजी समस्याएं साझा करने या फिर लगातार दूसरों की शिकायत करते रहने से लोग आपकी बातों से ऊब सकते हैं, फलस्वरूप आपसे बात करना कम कर सकते हैं या फिर आपकी बातों को अहमियत देना बंद कर सकते हैं। इसलिए हर समस्या को बताने से बेहतर है समाधान खोजने पर ध्यान देना और सिर्फ जरूरत की बातें करें। जैसा कि दूसरा है मैसेज का देर से जवाब देना। आज हम देखते हैं कि आज के परिवेश में हमारे हाथ में मोबाइल है। कई रिसर्च बताते हैं श्रोताओं कि लोग उनका भरोसा कम करते हैं जो समय पर उनका उत्तर नहीं देते या फिर बीच में बात छोड़कर अचानक गायब हो जाते हैं। इसलिए हर मैसेज और मेल का 24 घंटे के भीतर जवाब दें। अगर आप किसी कारणवश जवाब आपको देने में देरी होती है तो क्षमा मांग लें। तीसरा बिंदु है हर बात पर हाँ कहना। जी हाँ श्रोताओं, एक स्टडी की माने तो बिना सोचे हाँ कहने वाले लगभग 70% लोग तनाव में रहते हैं, और इसका कारण है कि वे हर काम का मूल्यांकन किए बिना ही हाँ बोल देते हैं। इसलिए हाँ कहने से पहले अपनी ऊर्जा और समय का मूल्यांकन करें और उसी हिसाब से निर्णय लें, ताकि बाद में आपको उस फैसले का अफसोस ना हो। चौथा बिंदु है स्पष्ट बोलने के बजाय बहाने बनाना। जी हाँ श्रोताओं, जो बार बार बहाने बनाते हैं उन पर देखा जाए तो लोग कम भरोसा करते हैं। इसलिए अगर गलती करें तो उसे स्वीकारें। अगर आपकी गलती नहीं है तो अपनी बात स्पष्ट रूप से उसके सामने रखें। बहानों के बजाय सुधार पर ध्यान दें, क्योंकि बहानों से आपकी सामने वाले व्यक्ति से आपकी बातें कमजोर पड़ती हैं। और पांचवा जो बिंदु है वो है बिखरा हुआ सामान। जो व्यक्ति अपना सामान अस्त व्यस्त रखते हैं वे लोग औसतन हर साल 55 घंटे सिर्फ खोई चीजों को ढूंढने में गवा देते हैं। इसी तरह अगर आप अपना वर्क स्पेस अस्त व्यस्त रखते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप अपना समय बर्बाद करते हैं। रोज 2 से 4 मिनट ही अपनी डेस्क या दराज को व्यवस्थित करने में दें तो भी पर्याप्त है। साफ सुथरे माहौल में आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ श्रोताओं, ये 5 बातें, जैसे कि जरूरत से ज्यादा बात करना, दूसरा मैसेज का देर से जवाब देना, तीसरा हर बात पर हाँ कहना, चौथा स्पष्ट बोलने के बजाय बहाने बनाना, और पांचवा बिखरा हुआ सामान, ये 5 बातें हैं। बातें छोटी लेकिन इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर है। तभी हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।

फिल्म रंग बिरंगी के इस प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम रसरंग। विषय है हिंदी सिनेमा में महिलाएं, प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की।

आप सभी प्यारे श्रोताओं को चंद्रा ऋषि ठाकुर का नमस्कार। आज रसरंग का विषय है हिंदी सिनेमा में महिलाएं।

श्रोताओ, स्त्री हमेशा से ही सिनेमा के केंद्र में रही है। यहाँ तक कि हॉलीवुड सिनेमा भी स्त्री के इर्द गिर्द ही कथाओं को बुनता रहा है। सिनेमा की हर विधा, यानी ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक या फिर आंचलिक सिनेमा में भी स्त्री की समस्याएं, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री की यौनिकता, स्त्री की श्रृंगारिक अभिव्यक्तियां, स्त्री का देह सौष्ठव, स्त्री सौंदर्य की सम्मोहक प्रस्तुति आदि सिनेमा के आकर्षक तत्व रहे हैं। सिनेमा में स्त्री का आगमन स्त्री सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। अभिनय, फिल्म निर्माण और निर्देशन, इससे जुड़े सभी क्षेत्रों में बिना किसी वर्जना और रूढ़ियों के आज स्त्री सक्रिय है। ये स्थिति भारतीय सिनेमा के आरंभ में नहीं था। उस युग में सिनेमा को औरतों के लिए वर्जित और अनैतिक क्षेत्र समझा जाता था। यहां तक कि सिनेमा देखना भी स्त्रियों के लिए निषिद्ध था। नाटकों में भी स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुष कलाकार ही करते थे। जब दादा फाल्के ने सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, तब रानी तारामती की भूमिका के लिए कोई स्त्री कलाकार अभिनय के लिए तैयार ही नहीं हुई। यहाँ तक कि तवायफों के कोठों से भी उन्हें कोई स्त्री फिल्म में अभिनय के लिए नहीं मिली। उसी समय उन्हें एक मराठी नाटक कंपनी का पता चला, जो कुछ समय के लिए अपना नाटक प्रदर्शन स्थगित कर रही थी। उन्हें वहां से मदद मिली और कमलाबाई गोखले से उनका परिचय हुआ। दादा साहब फाल्के ने अपनी अगली फिल्म मोहिनी भस्मासुर में इन्हीं से अभिनय कराया। इस तरह कमलाबाई और उनकी मां दुर्गा गोखले को भारतीय सिनेमा की प्रथम स्त्री कलाकार होने का गौरव प्राप्त हुआ।

श्रोताओ, प्रारंभिक दौर की फिल्मों में विदेशी यानी एंग्लो इंडियन मूल की स्त्रियां ही फिल्मों में काम को सहर्ष स्वीकार करती थीं। विदेशी मूल की रूबी मेयर हिंदी सिनेमा में सुलोचना के नाम से मशहूर हुई। इसी क्रम में एस्तर अब्राहम प्रमीला के नाम से पारसी घुमंतू थिएटर से होते हुए बम्बई की फिल्मों में स्टंट कलाकार के रूप में स्थापित हुई। इसी दौर में पेटेंस कूपर ने इसी नाम से नर्तकी के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने यूरेशियन थिएटर, पारसी थिएटर और मदन थिएटर ग्रुप से होते हुए बम्बई की फिल्मों में कदम रखा। विदेशी मूल की अन्य अभिनेत्रियों में एरिस गास्पर, सुजाना सोलोमन, एफी हिपोलिट, बोनी बर्ड, बेरिल क्लेसन और विनी स्टीवर्ट आदि ने बम्बई फिल्म उद्योग में पहले पहल स्त्री पात्रों की भूमिका को एक सामाजिक पहचान दिलाई। भारतीय मूल की प्रथम अभिनेत्री दुर्गा खोटे बनी। दुर्गा खोटे एक कुलीन परिवार की सुशिक्षित लड़की थी। इस अभिनेत्री ने ये सिद्ध कर दिया कि सिनेमा का क्षेत्र केवल निम्न वर्ग या तुच्छ पृष्ठभूमि की स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि अभिनय कला के प्रदर्शन में अभिजात एवं सुसंपन्न परिवारों की स्त्रियां भी सम्मिलित हो सकती हैं। इस परंपरा की सुदृढ़ नींव रखने वाली युगांतरकारी अभिनेत्री थी देविका रानी।

श्रोताओं, नवजागरण काल से आंदोलन के पुरोधा स्त्रियों की सामाजिक दुर्दशा के विरोध में सुधारों के लिए मुहिम चला रहे थे। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप सिनेमा में स्त्री के प्रति एक नई दृष्टि विकसित हुई। प्रारंभिक दौर की फिल्मों में मुख्य रूप से स्त्री की समस्याओं को अधिक से अधिक चित्रित किया जाने लगा। ये भारतीय समाज को पुनर्जागृत करने का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। 1993 के दशक से हिंदी सिनेमा में स्त्री पात्रों एवं नर्तकियों के आइटम गीत की परंपरा आरंभ हुई। इस परंपरा ने फिल्मों की व्यापारिक क्षमता में वृद्धि की। दर्जनों फिल्में आईं जिन

का यथासंभव प्रदर्शन, ताकि पुरुष दर्शकों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित किया जा सके। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ ये दबाव बढ़ता ही जाएगा, लेकिन फिल्मकारों को अपने प्रतिबद्ध दर्शकों की नैतिक चिंताओं का ख्याल भी रखना पड़ेगा। इसलिए वे स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का रसरंग, जिसका विषय था हिंदी सिनेमा में महिलाएं। अब हमें दे अनुमति, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग, विषय था हिंदी सिनेमा में महिलाएं, प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। अब लीजिए सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।
2: जोहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। हल्बी ने समाचार बुलेटिन संगे मैं महेंद्र सिंह ठाकुर। पहल सुना आज ही चमूर खबर मन की। गुजरात में फिर दूसरहार बना लो सोमनाथ मंदिर चो 75 बरख पूर्तो के सोमनाथ अमृत उदीम कार्यक्रम होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बले हुता अमरोडला। केंद्र सरकार बाटले विकसित भारत जी राम जी अधिनियम चो 1 जुलाई ले मूर हो तो अधिसूचना जारी होली। राज ने हो तो बीती नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मंचो आम और उपचुनाव काजे नामांकन पत्र भरतो काम मूर होली। 18 मई तक ले नामांकन भरु खोए दे। और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लता उसेंडी चिलपुट्टी गांव ने 9 करोड़ रुपया ले आगर खर्चा बीती कैक बाढ़ती चुका मंच भूमि पूजा करला। इदाय खबर सरसरा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्ला से कि सोमनाथ मंदिर केवई नी टूट तो विश्वास।

0: खूबे मान और देश चो केबई निमेट तो सर तो असन आत्मा चो चीना आए। गुजरात ने सोमनाथ अमृत महोत्सव उदीम ने सपाय संगे गोठियाते श्री मोदी बल्ला कि सोमनाथ अमृत उदीम सोजे जूना बेरा चो उदीम नो है पहारले ए तो कय हजार बरख तकले ए देश चो सिख्या दे तो चीना रहे दे। हुन बल्ला कि सोमनाथ लोग मन के ये सुरता दे हुआ है कि कोनी बले राष्ट्र तेबत ले बरसक ठिया रोक सके जेबत ले हुन चो आपलो जड़ ले टेकुन रहे से। एचो पहिल प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर ने गोटो खास महापूजा करला। हुन सोमनाथ मंदिर चो टीपे कुंभाभिषेक बले करला। मंदिर चो इतिहास ने पहिल हार सबले उपरे टीप ने 11 ठन पवित्र ठान मनले आनलो बीती पवित्र पानी ले जलाभिषेक करतोर होली। श्री मोदी झंडी के फहरा तो कार्यक्रम ने बले मिसला। ई मंजी वायुसेना बाटले एयर शो करला जेथा सूर्य किरण एरोबेटिक्स चो दल बाटले सोमनाथ चो उपरे खूबे सुंदर करतब दखाला। हेलीकॉप्टर ले फूल बले पकाला। एचो पाछे श्री मोदी खास प्रदर्शनी के दखुक गेला। सोमनाथ मंदिर चो 75 बरख पूर्तो के बल्लो ने 3 कोड़ी 15 बरख पूर्तो चो मोहका ने छत्तीसगढ़ चो कैक जूना ऐतिहासिक मंदिर ठान मन ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व उदिम कार्यक्रम मन होली। ये कार्यक्रम मन ने मंत्री मन विधायक मन जनप्रतिनिधि मन और अधिकारी मन अमरुण रला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर चो महादेव घाट चो हाटकेश्वर महादेव मंदिर ठान ने होलो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ने भाग धरला। हुन जनप्रतिनिधि और भगत मन संगे गुजरात चो सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअल उआट हिसाब ने मिसुन भाती प्रधानमंत्री चो गोट बात के सुनला। ए मौका ने मुख्यमंत्री बल्ला कि 75 बरख पहिल आजी चो दिने सोमनाथ मंदिर चो दूसर हार बना तो जतना तो काम होन रली। बलो ने एकई ऐतिहासिक मौका हिसाब ने देश भर ने स्वाभिमान पर्व उदिम हिसाब ने मनातोर होय से। हुन बल्ला कि सोमनाथ मंदिर ने कैक हार बाहर चो आक्रमणकारी मन बाटले हमला होली मानतर मंदिर चो विश्वास और रुसुम रीति के कोनी गुचाउक नहीं सकला। श्री साय बल्ला कि पहिल हार चो आक्रमण बेरा मंदिर चो पुजारी और भगत मन मंदिर के निछाणला और आपलो जीव के सोपुंदिला। मुख्यमंत्री बोलला कि हुन मंचो असन त्याग के आजी बले सोनचो आखर ने इतिहास ने लिखलो रासे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया चो चीपाडन चो मंजी लोग मन के गोटोक बरक काजे सोन नी घेंतो काजे तेल ईंधन के आगर नी बावरतो काजे और विदेश चो पैसा के बचातो काजे गुहार करला। हैदराबाद ने 10 मई के होलो गोटोक कार्यक्रम ने श्री मोदी वर्क फ्रॉम होम काजे बोले बल्लो ने घरे रहून काम करतो काजे बोलला से। ए गोट असन समय ने इली से जिदल दाए पश्चिम एशिया ने लड़ाई झगड़ा झिकाटाना और हारमुज जल डमरू चो मंजी ऐले फैले चो अटका बाधा चो किरता संसार भर ने काचा तेल भाव $70 गोटोक बैरल चो हिसाब ले बाढ़ून भाती $136 होन गेली से। प्रधानमंत्री रैयत चो लाभ मन ले ध्यान देऊन खर्चा करतो काजे विचार करून लाय बल्ला से। कसन बल्ले देश खूबे बाढ़ तो बीती संसार चो ऊर्जा चो खर्चा चो बोझा ने पड़ली से। प्रधानमंत्री देश चो लोग मन ले खातो तेल के बले खिंडी कम खर्चा करुक लाए बल्ला और किसान मन के विदेश ले तो बीती रासायनिक खत मन चो भरसा नी रतो काजे बले चेताला से। यही मंजी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला से कि पश्चिम एशिया ने झगड़ा डंड होय से हुंचो असर गुलाय दखा दे से। एचोले आम चो देश बले अलगे नी आए। एचे काजे प्रधानमंत्री बाटले देश चो सपाय लोग मन के खूबे खास और नंगत सलाह दिला से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एचो समयाचो पूर और तब तो लेहरा बलों ने लू के दखा रखा काजे देश चो तैयारी कसन चले से एके दख तो काजे गोटोक बस का करला। नई दिल्ली ने गेलो 10 मई के गोटोक बड़े हिसाब चो बसका ने श्री शाह सरकारी एजेंसी मंचो तैयारी के दखला। पहल चो चेता तो उवाट सहायता दे तो जमक चो तैयारी और अंतर एजेंसी समन्वय चो जांचा परखा करला। गृहमंत्री बाटले देश ने तैयारी करलो खूबे समय काजे चो पूर बेरा काजे चो बनालो उवाट मन के बले दखला। जेमन ने खास ढांचा बीती परियोजना मंचो दखा रखा नंदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान मन ने वैज्ञानिक बाढ़ती चो गोट शामिल आसे। बसका ने लोग मंचो चेतानी जीव जिया चो नुकसान के कम कर तो काजे ठेबा तो काजे बनालो उवाट बीती काम और खास सहायता बीती तीज मन समान मन और उपचार चो तैयारी चो बरसक भंडार के बले पक्की कर तो काजे गोट बात होली। केंद्र सरकार बाटले विकसित भारत जी रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम चो मूर करतो काजे अधिसूचना जारी करून दिली से। ए अधिनियम एसु बरक 1 जुलाई ले गुलाय देशभर ने लागू होय दे। देशभर ने नुआ उवाट चो मूर करतो काजे एवे चो वित्त बरख ने 95,692 करोड़ रूपया चो प्रावधान करलो रासे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम चो खास गोटे आए कि गोटोक वित्तीय बरख ने रोजगार गारंटी के 100 दिन ले बढ़ाउन भाती 125 दिन करतो राय। ए चो संगे ची ए अधिनियम समया ले भूती पैसा देतो संगे संगे ठगा फारसी नहलो और भुगतान उपरे जोर दे हुआ है। नंगत पकी समय ने कोकई बले काम नी दिलो ने ए नुआ अधिनियम ने बेरोजगारी भत्ता देतो काजे बले प्रावधान आसे। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम गांव का रिठान के पैसा कोड़ी हिसाब ने बरसक बनातो काजे ची रोजगार चो नुआ मौका देतो और गाँव चो सरलगा बाढ़ती होते रहो बलते खूबे नंगत काम करे दे। मेहरार भूतियार मंचो आगर भागीदारी काजे ए अधिनियम बाटले काम बूता करतो ठान ने पीला मंचो दखाराखा करतो काजे बले खास ध्यान दिलो रासे। पांच बरखले नानी उमर चो पांच जन नहाले आगर पीला मन रलो ने हुन मंचो दखाराखा काजे रोजे दिने गोटोक भूतिहारिन मेहरार के हुता बसातोर होई दे। राज ने होलो बीती नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मंचो आम और उपचुनाव काजे नामांकन पत्र भरतो काम 11 मई ले मुर होली से और ए काम 18 मई तक ले चले दे। नामांकन पत्र मंचो जांच 19 मई के करतोर होई दे। उम्मीदवार मन 21 मई तक ले आपलो नाव के आपस धरुक सक दे। मतदान गोट की चरण हिसाब ने 1 जून के होई दे। हुताए ए चो हारा जीता 4 जून के सांग तोर होई दे बल्लो ने मतदान चो परिणाम। जानुखो की नगरी निकाय ने अध्यक्ष चो 5 और पार्षद चो 77 संगे सपाई मिसाउन 82 पद मन ने चुनाव होय दे। हुताए त्रिस्तरीय पंचायत मन ने जनपद पंचायत सदस्य मंचो 10 सरपंच 82 और पंचो 1136 संगे सपाई मिसुन 1228 ठन मेला पद मन का जे चुनाव होय दे। नगरी निकाय प्रशासन और विकास विभाग बाटले सपाई निकाय मन के पीऊ तो पानी चो छिपा के गुचा तो काजे बल्ला से। विभाग बाटले सपाई निकाय मन के नल टेंडा बोर पंप और दूसर पानी पाव तो ठान मंचो 7 दिन चो भीतरे जांच करून भाती सुधरा तो जतना तो काजे बल्ला से। संगे ची पाइपलाइन ने कहा टूटलो फूटलो दखा दिलो ने और नली मन ले होन जातो बीती पाइपलाइन मन संगे संगे घरे घरे चो सेवा बीती कनेक्शन मन के दूसर ठान ने नेतो काजे बले बल्ला से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जेठ बेरा चो छुट्टी मन ने देश चो कैक स्कूल मन ने भारत चो भाषा सिखा तो काजे ग्रीष्मकालीन शिविर कार्यक्रम कर दे। 7 दिन चो ये शिविर मन ने भारत चो भाषा मंचो बुनियादी संवाद कौशल बलो ने गोठिया तो बलतो उआट के सीख तो काजे शब्द मन के जान तो काजे आपलो जानकारी गोट के सांग तो काजे जीवना जीव तो संगे गोट बात कर तो काजे और रुसुम रीति चो सहरानी गोट मन काजे रह दे। ए चो खास गोट राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिसाब ने समावेशी और समान शिक्षा उआट के पूरे आंतो। राज्य ने आजिकाली मकान सूचीकरण और घर मंचो गंती करतो काम चले से। इधाड़ी ने कोंडागांव जिला ने रैयत चो लोग मन के जनगणना चो खास गोट मंचो जानकारी देतु काजे एलईडी वैन और नुक्कड़ नाटक दिखाउन भाती गांव गांव ने सांग तो चेता तो काम होली। इस समय ने वीडियो ऑडियो और दूसर उआट मन ले जनगणना चो काम बुता हुंचो मुरगोट और लोग मंचो भागीदारी चो खास गोट मन के समझातोर होली। जानुखो की 1 मई ले मुरहोलो बीती मकान सूचीकरण काम हिसाब ने प्रगणक मन लोग मंचो घर घर जाऊन भाती आवासीय और गैर आवासीय घर मन हुन मंचो हालचाल काय काम दे से काय सहायता हो से जसन कई एक जानकारी गोट पीऊ तो पानी शौचालय बलों ने झाड़ा खोली रांदा खोली गैस बिजली इंटरनेट और संचार सहायता संगचो कई एक जानकारी मन के जुहासोत। ये काम 30 मई तक ले चले दे। बस्तर विकास प्राधिकरण चो उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी गेलो 9 मई के चिलपुट्टी गाँव ने 9 करोड़ रूपया ले आगर खर्चा चो कई एक बाढ़ती बीती काम चो भूमि पूजा करला। ए मौका ने हुन चिलपुट्टी ने होलो मानदान कार्यक्रम ने 12 जन नंगत पड़तो पीला मन के प्रमाण पत्र देउन भाती मान करला। कार्यक्रम ने सपाय संगे गोठिया तो बेरा लता हुसैंडी बल्ला की बाढ़ती चो ए सपाय काम होली जाले गांव कारी ठान मन ने ईआर जहार नंगत होए दे और कैक समाज और रुसुम रीति चो काम मन बले नंगत हो सके दे। संगे ची स्वास्थ्य और डिजिटल सेवा चो लाभ बले देहात चो लोग मन के नंगत हिसाब ले मिरे दे। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान हिसाब ने सुकमा जिला ने शिविर बस का करुण भाती लोग मंचो उपचार करतोर होय से। ई धाड़ी ने गेलो 10 मई के कोंटा विकासखंड ने अरलमपल्ली पोलमपल्ली दोरनापाल बगड़े गुट्टा रंगाईगुड़ा कोलईगुड़ा और पेंटापाड़ गांव चो 39 जन लोग मन के जिला अस्पताल अनुन भाती हुनमंचो उपचार करातोर होली। कलेक्टर अमित कुमार सांगला की ये अभियान हिसाब ने जिला चो लाफी लाफी चो ठान मन ने नंगत स्वास्थ्य सेवा के अमरातो काम के मूर हिसाब ले करतोर होय से। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान हिसाब ने जिला ने 2,93,000 ले आगर लोग मंचो देह पायचो जांच करतो लक्ष्य संगालो रासे। एवत ले 1,54,000 ले आगर लोग मंचो देह पायचो जांच करलो रासे। कोंडागांव जिला ने 10 मई के डायल 112 आपातकालीन सेवा के मुर करला से। एदाय ए सेवा चो मुर होलो ने कोनी बले मनुक पुलिस उपचार नहाले आईक बुता तो गाड़ी संगे कोनी बले उधा पड़े चो काम काजे 112 नंबर के डायल करुक सकोत। 24 घंटा चलतो बीती ए सेवा ने कॉल रिकॉर्डिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग और तुरते सहायता करतो दल चो सहायता मिरे दे जेचोले घटना ग्रह चो ठान ने तुरते अमरुख होए दे। डायल 112 सेवा के मुर करतो काजे कोंडागांव पुलिस बाटले सफाई विभाग चो कर्मचारी मन, कॉल सेंटर ऑपरेटर मन, कंट्रोल रूम चो कर्मचारी मन और तुरते सहायता करतो दल के खास प्रशिक्षण दिलो रासे। नारायणपुर पुलिस बाटले सामुदायिक पुलिस चो काम के बरसक बनातो काजे 11 मई के माड़ मैत्री अभियान चो मुर करला। नारायणपुर चो हाईस्कूल भाटा ने होलो कार्यक्रम ने पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया सांगला कि ये अभियान चो खास काम नक्सली ग्रह बीती ठान मंचो जुआन मन और गांवकारी मन के शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और समाज चो काम बुता संगे मिसातोर आए। कार्यक्रम ने हमर फिट नारायणपुर हिसाब ने सपाए संचो मिसलो जुम्बा सत्र चो कार्यक्रम मन बले होली। इस समय ने डायल 112 वाहन सेवा माड़ मैत्री रथ और फटफटी ने दौरा जातो दल मन के हरा झंडी दखान भाती पठातो काम होली। गांवकारी मन और पुलिस मंच मंजी विश्वास और राखा रक्षा और सहायता चो भावना के और आगर बरसक बनातो हिसाब ने बीजापुर जिला चो उड़ता मल्ला गांव ने मनवा पुलिस मनवा नाटे अभियान हिसाब ने जनसंवाद और चलित थाना कार्यक्रम होली। ये कार्यक्रम ने पुलिस अधिकारी मन और जवान मन गांवकारी मन संगे भेंट करला और हुन मंचो चीपाडन के सुनला। संगे ची सरकार चो कई जन कल्याणकारी योजना मंचो गोट बात के सांगला। पुलिस अधिकारी मन होता है सपाए माए बाप ममले पीला मन के रोजे सरलगा स्कूल पठा तो काजे और आंगनबाड़ी पठा तो काजे बल्ला। कार्यक्रम ने गांवकारी मन के हुन मंचो रोजे काम पड़तो तीज समान मन बाटला और संगे संगे पीला मन के पड़तो किताब और खेल तो समान मन के बल्ले दिला। बीजापुर जिला चो मर्रा मेटा गाँव ने बल्ले मनवा पुलिस मनवा नाटे अभियान हिसाब ने सिविक एक्शन कार्यक्रम और चलित थाना कार्यक्रम होली। ये कार्यक्रम ने गोंड मेटा, मर्रा मेटा, पद मेटा, धर्मा, घोटपाल और बैल गांव चो गांवकारी मन अमरुंडला। ए मौका ने पुलिस चो जवान मन गांवकारी मन ले गुहार करते बल्ला कि हुन मन आपलो ठान चो बाड़ती काजे सपाय मिसुन नंगत सलाह सुतुर ने रहोत। गांवकारी मन बले पुलिस उपरे विश्वास दखाते आपलो ठान ने साहिती बाड़ती और राखा जतन वाट के नंगत बनातो काजे सहायता करतो विश्वास दिला। जगदलपुर चो अंत्यावसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बाटले अनुसूचित जनजाति वर्ग चो मेहरार मन के कोसा सूत बनातो काजे 2 महीना चो प्रशिक्षण देतोर होई दे। प्रशिक्षण काजे मन करतो मेहरार मन काली 14 मई के कुमार पारा चो अंत्यावसायी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र ने आवेदन करुक सकोत। आवेदन करतो मेहरार मन के 5वीं पास होन रतो राय। मेहरार मन के शिष्यवृत्ति हिसाब ने 1500 रुपया चो रोज महीना सहायता मिरे दे। सरासरी मूर खबर मन के फेर सुनाता। गुजरात ने फेर दूसर हार बनालो सोमनाथ मंदिर चो 75 बरख पूर्तो के सोमनाथ अमृत कुदीम कार्यक्रम होली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बले हुता अमरुंडला। केंद्र सरकार बाटले विकसित भारत जी रामजी अधिनियम चो 1 जुलाई ले मूर होतो अधिसूचना जारी होली। राज्य ने होलो बीती नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मंचो आम और उपचुनाव काजे नामांकन पत्र भरतो काम मूर होली। 18 मई तक ले नामांकन भरुक होई दे। और बस्तर विकास प्राधिकरण चो उपाध्यक्ष लता उसेंडी चिलपुट्टी गांव ने 9 करोड़ रुपया ले आगर खर्चा बीती कैक बाढ़ती चो काम मंचो भूई पूजा करला। एची संगे हल्बी समाचार बुलेटिन चो ये अंके थाय सरे से जुहा।
1: अभी आप सुन रहे थे हल्बी समाचार बुलेटिन।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मेरे दिल पर राज करने वाले, हर दिन तुम्हारा साथ समय बिताना सौभाग्य है। मेरी हर धड़कन में बस तुम्हारा नाम है, मेरी हर धड़कन में बस तुम्हारा नाम है। मैं तुमसे

थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वासमत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ

0: समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सोनाना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्यभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 प्वाइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
8: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPI-M and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
7: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office and secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
9: In stark contrast to the post-election political drama witnessed in neighbouring states, Puducherry is poised to witness a swearing-in ceremony marked by political continuity, with N. Rangasamy all set to walk into the Chief Minister's office once again. This will be the fifth term for the 76-year-old political stalwart as Chief Minister. Ministers will be also swearing in along with the Chief Minister at the ceremony. Union Minister and BJP Election in Charge Mansukh Mandavya, BJP National President Nitin Nabin, BJP Puducherry in Charge Nirmal Kumar Surana, and State BJP President VP Ram are among the prominent leaders expected to attend the swearing-in ceremony. Mr. Nabin, who arrived in Puducherry yesterday evening, has held discussions with the party office bearers and legislators at the party headquarters. Bibin Asnad, Akashwani News, Puducherry.
7: In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities, mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those where final reports have already been submitted. Simultaneously, the state police has ordered a physical verification of all arms and ammunition stored in police station armories to be completed by Friday. The directive also emphasizes a crackdown on cross-border smuggling and crime through regular border meetings and intelligence sharing. Following Prime Minister Narendra Modi's call for austerity amid West Asia crisis, the chief ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered a 50% reduction in the vehicle fleets of the CM, ministers and other officials, and directed that unnecessary vehicles be removed from official convoys. The state government has stressed greater use of PNG, metro services and public transport while encouraging virtual meetings and a weekly no-vehicle day. More from our correspondent.
10: Chief Minister Yogi Adityanath urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchases of gold. During a meeting with the Chief Secretary, DGP and all additional Chief Secretaries and Principal Secretaries of various departments, Chief Minister directed that the fleets of the Chief Minister, ministers and others be immediately reduced by 50%. He said that unnecessary vehicles be removed from official convoys. The Chief Minister also appealed for prioritizing the work from home culture in the state. The Chief Minister said that ministers, MPs, MLAs and public representatives should use public transport at least one day a week. A no-vehicle day should also be organized once every week. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
7: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has reduced the number of vehicles in his cavalcade until further orders. In a cabinet meeting on Monday, Mr. Yadav appealed to the members of the Council of Ministers to reduce petrol and diesel consumption in the national interest and suggested the use of public transport. An official said no vehicle rallies will be organized during his visits. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also said ministers, MLAs, officials and government departments would limit the use of official vehicles, adopt carpooling and prioritise metro and bus services. The government has increased the import duty on gold and other precious metals, which will be effected from today. In a statement, the Ministry of Finance said gold and silver findings will attract 5% duty, while platinum findings will attract 5.4% duty. Furthermore, precious metal spent catalyst is set at 4.35%, subject to the fulfillment of compliance criteria. Earlier, Prime Minister Modi had appealed the citizens to avoid purchasing gold amid the ongoing West Asia crisis. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken Shubham Kernar into its custody in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on the 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The government has revised the release date of the provisional estimates of annual gross domestic product GDP and quarterly estimates of GDP for fourth quarter from last working day of May to 7th of June every year. The revision in the release schedule has been made after due consultation with the Advisory Committee on National Account Statistics. The ministry said that the revision is aimed at further strengthening the data quality. India will be hosting a two-day BRICS foreign ministers meeting from tomorrow. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegations from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Ahead of the meeting, Dr. Jayashankar will today hold several bilateral meetings in New Delhi. The minister will meet his Chilean counterpart, Francisco Perez Mackenna, this morning and will hold bilateral talks. Later in the afternoon, he is also scheduled to hold bilateral talks with the foreign ministers of South Africa, Ronald Lamola, and Brazilian foreign minister, Mauro Vieira. Later in the evening, Dr. Jayashankar will also meet his Russian counterpart, Sergei Lavrov. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations. The 51-member delegation includes MPs from Rajya Sabha and Lok Sabha and officials from the Ministry of External Affairs. The delegation is expected to hold discussions on various aspects of Bhutan-India relations and ways to enhance cooperation between the two neighbouring countries. The Ministry of External Affairs has urged people interested in undertaking the Kailash Mansarovar Yatra to apply before the 19th of this month, as registrations will close soon. Applicants can get further details and register through the official website kmy.gov.in. India can witness early arrival of southwest monsoon this week. The India Meteorological Department, or IMD, said conditions are becoming favourable for the advance of southwest monsoon likely over parts of South Bay of Bengal, Andaman Sea and Andaman and Nicobar Islands towards the end of this week. According to the Met Department, the southwest monsoon normally sets in over Kerala around 1st of June every year. Meanwhile, several districts of Rajasthan are currently reeling under severe heatwave conditions, with border districts being most affected. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius. Barmer was the hottest place in the state yesterday, with the maximum temperature recorded at 48.3 degrees Celsius. More from our correspondent.
11: The Met Centre has issued a red alert for severe heatwave conditions in the border districts of Barmer, Jaisalmer and Phalodi for today. In addition, an orange alert has been issued for four western districts, while a yellow alert has been sounded for six southwestern districts of the state. Not only the days, but the nights are also witnessing intense heat, with temperatures remaining above 30 degrees Celsius at several places. The prevailing heatwave conditions have affected normal life across the region. According to the Met Department, similar weather conditions are likely to continue for the next 2 to 3 days. With Jitendra Divedi's report from Jaipur, Jigyasa Pandey, Akashwani News.
7: Over to sports. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder scalped 3 wickets. Kagiso Rabada was declared player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
12: Thank you, Anuja. The dailies today have all taken note of the NEET UG 2026 being cancelled on allegations of question paper leak affecting lakhs of medical aspirants across the country. NEET mess. NTA orders retest as CBI probes leak, writes Hindustan Times. The paper adds, what began as a social media claim has now snowballed into a massive examination scandal. Quoting the Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, the Hindu hints at fuel price hike as oil marketing companies mounting losses cause concern. PM cuts convoy, government departments to adopt austerity measures, reports the Times of India. Under the headline, in a shifting world order, five principles should guide India's diplomacy, notes an editorial in the Indian Express, adding, in foreign policy, there is no substitute for nurturing trusted partnerships, even while seeking new opportunities. Iran's Arakchi, Russia's Lavrov to be in Delhi for BRICS huddle, reports the Indian Express. The Economic Times noting the war impact on growth and current accounts cites PMO stitching a plan to boost foreign fund flow with steps to ease FEMA rules. A headline in the Tribune writes early monsoon likely, Andaman Sea may witness onset by May 16. And finally, a trailblazing first in 145 years at the prestigious institution St. Stephen's College, ready for its first ever woman principal, writes the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
7: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विभिन्न बोलियों में लोकगीत कार्यक्रम मंजरी में। पहले सुनिए मोरिस सिंह और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे त्रिनाद क्षत्रिय और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से लोक मंजरी कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीत। अब लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी गीत। कलाकार हैं निर्मला और साथी।

लोक मंजरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
3: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
3: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
3: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
3: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
3: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
3: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी।
3: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
3: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-440-5559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
4: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
5: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
6: अब तेरी बारी है, तेरी
7: तुम्हारी बारी, तुम सुना।
6: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
7: तो कहानी सुना दो भाई।
6: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
7: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
6: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
7: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी होगा।
6: चलते हैं।
4: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
8: कौन है
7: दीदी?
8: कौन है
7: दीदी?
6: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
7: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
6: हम थोड़ा पानी पी लें?
9: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
7: हाँ, पर ठंडा पानी था।
6: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
9: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
7: कौन है आप?
9: नहीं समझे?
7: नहीं।
9: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: हवा चलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
4: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
5: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
4: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
4: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
4: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
4: नहीं समझी?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
2: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
1: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।

0: लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
1: हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हाँ।
1: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
0: हाँ? हाँ? पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
1: हाँ?
0: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
1: हाँ?
0: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
1: हाँ, आने दो, आने दो।
2: ए, कौन हो तुम? रुको, रुको। जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
3: कौन हो तुम?
4: साहब, मैं एक चरवाया हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब, साहब, दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
5: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर, हम एक चरवाया है।
5: आगे बताओ।
4: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
5: क्या देखा तुमने?
4: साहब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
5: क्या?
4: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
5: कितने लोग रहे होंगे?
4: साहब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
5: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
4: साहब, मेरा गाँव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
6: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
7: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
6: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
7: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
6: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
7: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
6: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
7: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
8: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
5: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
8: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
3: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
8: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
5: जी,
9: यस सर।
8: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
9: उधर से।
5: हाँ। जी,
8: तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
5: जी सर।
8: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
5: जी सर।
8: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
5: जी सर।
8: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
5: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
8: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
10: यस सर।
8: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
5: जी जी सर।
8: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
5: सर, जी सर।
8: कोई शक?
5: नो सर।
8: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
10: यस सर।
5: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
9: धीमे बोलो, धीमे।
5: जी,
9: उन्हें पता ना चल जाए।
5: जी सर।
9: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
5: जी।
9: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
5: ठीक है सर।
9: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
5: जी सर। जी सर।
9: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
5: जी सर।
9: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। धीरे,
5: धीरे, धीरे।
9: तबे बहुत। बस, अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू कर।
5: रेंगेंगे।
9: जी सर। कोई भी उठ सब रेंगेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
5: एवरीबॉडी रेडी?
9: यस सर।
5: यस सर।
9: अब हथगोला फेंको।
8: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
10: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओं अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सन 1968 में बनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में।

श्रोताओं, आज की फिल्म है एन इवनिंग इन पेरिस, जो सन 1967 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1968 में बनी हिंदी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के गीत। एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म शक्ति सामंत द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म है। शक्ति सामंत के द्वारा उनके बैनर में बनी ये फिल्म है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ।

एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी सचिन भौमिक ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को भी स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई शम्मी कपूर, शर्मिला टैगोर, प्राण सरिता, के एन सिंह, डेविड अब्राहम, एम बी शेट्टी और राजेंद्र नाथ ने। गीतों को लिखा शैलेंद्र ने, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म के गीतों को अपनी आवाज दी आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। ये फिल्म फ्रांस की राजधानी पेरिस के इर्द गिर्द घूमती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे सन 1968 में प्रदर्शित फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के गीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2 से 3% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया है कि मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत GRAMJI अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। पालोह जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। मंगलवार शाम दल्ली राजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि BSP की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान JCB और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और BSP के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmy.gov.in पर जा सकते हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच IPL T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। IPL मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इससे पहले 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया था। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। बलरामपुर जिले के धंधापुर गांव में खनिज विभाग की टीम ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त किया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई

0: कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर, और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन। जी हां श्रोताओं, आज है बुधवार और आज के इस दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए शीर्षक फिल्मी गीत। गुलशन के अंतर्गत लीजिए सुनिए प्यार शीर्षक पर फिल्मी गीत। प्यार एक ऐसी भावना है जो केवल दो लोगों को जोड़ती है, बल्कि जीवन को सकारात्मकता और अर्थ से भर देती है। कुछ प्यार भरे गीतों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। इस गीत को स्वर दिया है किशोर कुमार ने। फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल। गीत लिखा है शिव कुमार सरोज ने, संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

संगीत और स्वर है बप्पी लहरी का, गीत रचना इंदिवर की। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मनोकामना से।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्यार शीर्षक पर हिंदी फिल्मी गीत कटी पतंग। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आरडी परमन।

अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और मनहर उदास के युगल स्वर में इंदिवर का लिखा गीत। संगीत उषा खन्ना ने दिया है। फिल्म का नाम है होटल।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं गुलशन कार्यक्रम में प्यार शीर्षक पर फिल्मी गीत। आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर में लीजिए सुनिए अपराध फिल्म का गीत। इंदिवर के शब्दों को सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए साधना सरगम और मनहर उदास के युगल स्वर में अनजान का लिखा गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म घुंघरू से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे प्यार शीर्षक पर फिल्मी गीत। मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम गुरदुम, इसमें सुनिए आज लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

0: गुड़दुम लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोकनाथ वैष्णव और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: 0014242424।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 0778222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। लीजिए समय पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार में आज हम जिस अदाकारा से के बारे में बातें करने जा रहे हैं वो है सिल्वर स्क्रीन पर अपने अभिनय का परचम फहराती, कभी नागिन बन के नजर आती तो कभी आशा बन के आती, जी हाँ, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रीना।

रीना रॉय 70 और 80 के दशक की हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर, सफल और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। हम आपको बता दें कि इनका जन्म 7 जनवरी 1957 को हुआ था। श्रोताओं, हालात और परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं कि इन्होंने बेहद कम उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बहुत खूबसूरत होने के साथ ही साथ वो बहुत अच्छी डांसर यानी कि नृत्यांगना भी थी।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज हम बातें कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा जिन्हें देखकर न जाने कितनों ने अपना दिल हारा। खूबसूरती की मिसाल, एक्टिंग की धनी लगा दी जिन्होंने सुपरहिट फिल्मों की छड़ी। ढूंढा उन जैसा हर जगह पर मिला न कोई। वो कोई और नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत, प्यारी, शानदार और सुपर टैलेंटेड रीना रॉय हैं। इनका जन्म मुंबई शहर में हुआ था। इनके पिता मुस्लिम थे, नाम था सादिक अली, और माताजी हिंदू थीं, जिनका नाम था शारदा रॉय। रीना रॉय के पिता फिल्मों में छोटे मोटे अभिनेता के तौर पर काम किया करते थे और वहीं माँ शारदा तो बावरे नैन जैसी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थीं और आगे चलकर उन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया था। रीना रॉय के बचपन का नाम था सायरा अली। ये चार भाई बहन थे, दो बहनें थीं बरखा और अंजू, भाई का नाम था राजा।

इनकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, सिर्फ बाहर से ही लग रहा था, क्योंकि रीना रॉय के माता पिता आपसी रिश्तों को कामयाब बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और आखिरकार

अलग होने का फैसला लिया। अलग होते ही शारदा रॉय ने अपने चारों बच्चों के नाम के साथ सरनेम भी बदल दिया। उन्होंने सायरा अली का नाम बदल कर रख दिया रूपा रॉय, और रूपा रॉय का नाम ही आगे चलकर बना रीना रॉय।

रीना रॉय के सपनों को उड़ान तब मिली जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की। फिल्म का नाम था नई दुनिया नए लोग, पर किसी अनजान कारण की वजह से ये फिल्म उस वक्त रिलीज नहीं हो पाई। बी आर इशारा ने रीना रॉय को अपनी दूसरी फिल्म जरूरत में फिर एक बार मौका दिया। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई, जिसकी स्टोरी इस फिल्म की स्टोरी भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये फिल्म कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, पर रीना रॉय अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही। इस फिल्म में रीना रॉय को सब ने नोटिस किया और रीना रॉय को कई डायरेक्टर्स ने भी पसंद किया और साथ ही साथ फिल्मों के ऑफर भी आने लगे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। आज की कलाकार हैं मशहूर अभिनेत्री रीना रॉय। इन्होंने फिल्म जैसे को तैसा, जख्मी, नागिन, अपनापन, आशा और बदलते रिश्ते जैसी कई और सुपरहिट फिल्में दी। अभिनेता जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय थी और इन्होंने 22 फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें से अधिकतर हिट रहीं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी इनकी जोड़ी बहुत चर्चा में रही। हर बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ रीना रॉय ने काम किया। वर्ष 1983 में इनकी जिंदगी में एंट्री हुई मोहसिन खान की। मोहसिन खान से लंदन में इनकी एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात जल्द ही शादी में तब्दील हो गई। मोहसिन खान उस वक्त पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर थे। उन्होंने कुछ हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में अभिनय भी किया है। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, फिर आपसी मतभेद के चलते रीना रॉय मोहसिन खान से अलग हो गईं।

मोहसिन खान से अलग होने के बाद रीना रॉय ने अपना अधिकतम समय अपनी बच्ची सनम खान की परवरिश में दिया था, इसलिए कम फिल्मों में काम किया। वहीं जिंदगी में माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रही थी रीना रॉय। रीना ने दूसरी शादी कभी भी नहीं की। इन दिनों रीना रॉय अपनी बहन बरखा रॉय के साथ मिलकर बॉम्बे में ही एक्टिंग स्कूल भी चलाती हैं। जब रीना रॉय से ये पूछा गया कि आपकी शक्ल सोनाक्षी सिन्हा से इतनी कैसे मिलती है, इस पर रीना ने कहा कि सोनाक्षी अपनी माँ पूनम सिन्हा से मिलती हैं और ये संयोग की बात है। घुड़सवारी और बाइक चलाना रीना को बहुत पसंद था। फिल्म सनम तेरी कसम में इनकी एंट्री जब बाइक से हुई थी तो इन्हें बहुत अच्छा लगा था और लोग भी उस सीन को लेकर तालियां बजाने लगे थे।

रीना अपने जीवन में आज बहुत खुश हैं और अभी वो कई रियलिटी शोज में भी नजर आ जाती हैं। अपनी जिंदगी को अपने अंदाज से शान से जीती हैं रीना रॉय। वे हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन ढंग से जीती रहें। हम सलाम करते हैं और दुआएं देते हैं बेहतरीन अदाकारा रीना रॉय को। इसी के साथ कार्यक्रम एक ही कलाकार अब समाप्त होता है।

एक ही कलाकार। अभी इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मशहूर अदाकारा रीना रॉय के बारे में। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। समय है सुबह के 11:30 का। सबरस, इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए भोजपुरी में, गाया है सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने।

0: जवाब मिला
1: क्या?
0: फल खाया इस वृक्ष का अपने देश का, फल खाया इस वृक्ष का भाई गंदा किया तरुपात, और फर्ज हमारा यही है कि मरूं इसी के साथ। अरे आज के समाज में दहेज बना रोड़ा, आज के समाज

0: सकाराम।
1: सरकार उसकी बीबी जो है पढ़ी लिखी तेज तर्रार मिल गई अंग्रेजी बोलने वाली, बीबी अंग्रेजी बोलती है वो डार्लिंग वेरा भाई, और लड़का सीधा साधा गांव दे गांव देहात का था बेचारा, वो सीधा साधा बीबी मगावे आलू वो ले आवे बैगन, इंग्लिश मीडियम की थी, क्या कहता है कभी
2: अरे बीबी बी ये पास मर्दा मिला घास कर रहा,
0: मिला घास कर रहा हो, मिला घास कर रहा, मिला घास कर रहा हो, मिला घास कर रहा।
2: ऐसी लोन बोले
0: दिया दिया दिया,
2: अरे ऐसी लोन बोले।

पर कटना मरना भल मनई का काम सुनो। कवि का भाव देखिएगा, बिटिया का खेत बिका बेटा का बारी, अरे दानो दहेज ने उजार घर छोड़ा, बिकाई बाबू बी पास घोड़ा, पुराने जमाने की बात, अरे रात

लोकगीत सामान्य जनता द्वारा सामूहिक रूप से पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले वे भावपूर्ण गीत हैं जो मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। अब लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में पूर्वी चंद्राकर और साथियों का गाया ये लोकगीत।

0: आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस में विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। ये लोक हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होते हैं, जिनमें ग्रामीण जीवन के हर्ष विषाद, संस्कार, ऋतुएं और संस्कृति का वास्तविक चित्रण सहज लय और धुन में होता है। लीजिए सुनिए उदय मजुमदार और रेखा त्रिवेदी का गाया गुजराती लोकगीत।
1: मुझसे तुमसे तो अच्छा, बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: लोकगीत लोक के गीत हैं, यानी जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित और लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए गुरदास मान का गाया ये पंजाबी लोकगीत।

0: सबरस। इस कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत एफएम बैंड और मीडियम वेव पर। यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। सुबह के 11:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। भारत सरकार के सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2-3% दर्ज की गई है। ये आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जीराम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्व सहायता समूहों की महिला और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के क्रियान्वयन के लिए पत्र लिखा है। पत्र में सभी नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण की स्थिति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए निकायों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्वच्छतम पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति और स्वच्छता गतिविधियों से संबंधित प्रविष्टियों की भी जिला स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। कल शाम दल्लीराजहरा में यह हादसा हुआ। मजदूर सीवरेज पाइप बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई। बताया जा रहा है कि बीएसपी की सीवरेज पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत कार्य चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी और चेन माउंट मशीन की मदद से खुदाई की जा रही थी। अचानक मिट्टी धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी केंद्र रिले करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। आईपीएल मैच को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अलावा होगी। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। और दल्ली राजहरा में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने कागज।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। झुमझुमा लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मोतीलाल और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।

झुमझुमा लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोतीलाल और साथियों के गाए हरबी लोकगीत। आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार जुहार दीदी बहन मन जुहार एची संगे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सब पाए गांव करे दीदी बहन मन के मैं पारो करें से जुहार। तो बहन मन तुम्हें तो जान साची आमी कार्यक्रम घर द्वार कार्यक्रम भितरे कैक असन ज्ञान ध्यान चो गोट गीत गोविंद और काय मजा भेट वार्ता कहानी और कविता बल धरन तुम चलगे अमरों से। तो बहन मान तुम्ही तो जान साची ए बच्चो समय असन होली से कि आमके जीवना खावना का जे आमचो जरूरत चो पूर्ति का जे कहीं ना कहीं आमके कमानी करतो जरूरी है। बल्लो ने आमचो जीवना खावना के नगद सुचारू रूप से संगा तो काजे आमचो पीला पिचका के अच्छा पढ़ाई लिखाई करतो काजे आमके सबके तो नौकरी नहीं मिरे। कसन बल्लो ने जनसंख्या इतरो बड़े बाढ़ली से और ए भी असन पढ़ाई लिखाई जो समय आए और कंपटीशन जो समय आए तो हर किसी के नौकरी मिरतोर संभव नहीं हो सके। तो ये जो संगे संगे आम के जीवना करतोर बल जरूरी है और जीवना करतो काजे हाथे पैसा रहतोर खूबी जरूरी है। तो बहन मन आमी आप लोग घर परिवार के नगद चला तो काजे और बाढ़ती चो दिशा ने आप लोग पीला झेला करने तो काजे आमी घर बसुन बोले कहीं असन काम करुक सकूँ जे चलो आम चो लगे चार पैसा रहो। बहन मन देखा घर बसुन आम के कमानी करतो काजे कैक असन नियम मन बोले होली से और बल्लो ने समूच माध्यम ने बोले हो नाले कहीं ना कहीं रूप ने आमी जोड़न भाती घरे बसुन कहीं असन कमानी कर सकूँ जहाँ आम के घर भीतर ले ची आम के मेहनत करुन भाती चार पैसा आम चो हाथ ने योग सके। बल्लो ने बहन मन देखा एबे घर पड़त समय समय ने देखा महिला मंचो समूह ने जुड़ला सोत और ए मेहरार मन समूह ने जुड़न भाती कैक असन काम मन कर सोत जे चो माध्यम ले आमी एकल बले नहाले सामूहिक रूप ले बले आमी बैंक लोन धरुन भाती समूह चो माध्यम ले कई असन काम करुक सकूँ जोन चोले आमचो लगे आय चो साधन मिरुक सके। बल्लो ने जसन आमी पापड़ अचार या फिर पशुपालन या गाय पालन असन मछरी पालन असन काम बल करुन भाती आप लोग व्यवसाय के आप लोग रोजगार के बढ़ा सकूँ। बल्लो ने आमी समूच माध्यम ले बले आप लोग रोजगार के बढ़ाउन भाती आप लोग घर चो स्थिति के सुधार सकूँ। ये जो संगे संगे ए भी जो समय जान सा तकनीकी जो समय आए और असन समय ने काया है आमी घर बसुन भाती आप लोग हुनर ले आप लोग तकनीक चो माध्यम ले बले आप लोग पैसा कमातोर साधन बना सकूँ। बल्लो ने असन हो से कि आमी जो नाम चो तकनीक शिक्षा आम के अच्छा मिरली से शहर नगर ने आमी आसूँ और हर चीज चो ट्रेनिंग आमी कर लूँ से आले ये कंप्यूटर इंटरनेट चो माध्यम ले बले आमी कमानी करुक सकूँ। बल्लो ने कुटुक हो से फ्रीलांसिंग तुम चो लगे लिख तोर एडिटिंग कर तोर जोड़ तोर ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग कर तो बल हुनर आसे आले तुम्ही बसुन भाती अपवर्क या फीवर जसन साइड प्रोजेक्ट मन संगे बले धरुन तुम्ही घर बसुन पैसा कमा सकास। जसन कोनी विषय ले तुम्ही खूबे अच्छा जान सात खूबे अच्छा पढ़ा लिखा लोग हास और तुम चो भीतरे असन हुनर आसे कि तुम्ही कोनी बले विषय ने एकदम माहिर हास तो असन विषय ने धरुन भाती तुम्ही वेदांतु असन ट्यूशन क्लास ने बोले ऑनलाइन ज्वाइनिंग करुन भाती पिला झिला के पढ़ा सकास और ऑनलाइन सिस्टम ने तुम्ही ट्यूशन चो माध्यम ले बोले पैसा कमा सकास। असनी डेटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट कंपनी मन के डेटा एंट्री क्लर्क और वर्चुअल असिस्टेंट जो जरूरत हुआ है इचो काजे तुम चो लगे असन हुनर आसे आले तुम्ही कोनी बले कंपनी ने ज्वाइन करुन भाती ऑनलाइन कोनी बल डेटा चो असिस्टेंट जो रूप ने काम करुक सकास और तुम्ही घर बसे उन चो काजी बोले आप लोग मेहनत चो कमानी करुक सकास। तो बहन मन देखा असन एवे चो समय आईली से कि तुम चो भीतर ने कहीं बोले हुनर आसे आले तुम्ही कहीं बोले बना सकास आले जसन ऑनलाइन अचार पापड़ वाला ऑर्डर कर लो ने दे सकास अगरबत्ती या मिक्सर मिठाई या फिर कहीं बोले आभूषण कहीं बोले असन बनावट चो सामान तुम्ही बनाउन भाती एचो काया ऑनलाइन एके बिक्री भांजरी बल करून भाती घर बसून भाती पैसा

0: निरहो काही ना काही काम करून भाती काही ना काही आमचो हुनर के आमचो भित्रे लुकलो हुन हुनर के उजागर करत राय और बाहरे आनून भाती हुन हुनर जो उपयोग करत राय और आपलो उन्नति बाढ़ती काजे आपलो बल्लो ने घर परिवार चलातो काजे ये हुनर के आमके दखातो राय और ये हुनर आमके असन होय से कि आज ए हुनर चो कारण ने कैक असन नामन होय से जोन जो पहचान हुन हुनर ले होय से। तो बहिन मन दखा घरे बसोन भाती आमके खाली रतोरनो आय और घरे बसोन भाती खाली आमी कम पढ़ा लिखा आमके नौकरी नहीं मिरी आमके काम नहीं मिरी बोलून भाती बलतोरनो आय सब चो भीतरे कहीं ना कहीं असन हुनर आसे जोन चनी हुन खुबे नगद काम करुक लाय सके। तो बहिन मन ए तो रली आमके आपलो जीवना चलातो का जे घर बसो नाम के कसन कमानी करतो रहे। तो ए तो रली गोटोक घर कमानी बीती नगद गोट और एच बात आसे आमचो मोडरा ने गोटोक जहाला आले इया एके बले सुनो।
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनात उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मयो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तले खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तग वेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरु गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरु गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो भाई मन आमचे मोडराना से गुटुक भेटवार्ता इमनात पशु मित्र और स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती भगवती देवांगन और इमन संगे भेट करला सो बलबीर सिंह कक्ष अलिया ए भेटवार्ता बले सुनो।
4: घर द्वार सुन तो बहिन मन जसन के अपन मन घर द्वार कार्यक्रम ने सुनसास के आमी कई महिला स्व सहायता समूह बनान बाती काम करतो बहिन मन संग गोट बात करूँ से जे चोले हुन मन के बल्ले ने आर्थिक उन्नति होतो कारण ने उनमें परिवार ने बल्ले निखिन एक सुख है से मतलब सुविधा हो ऐसे। तो असनी मैं फिर गोटोक बहन संग गोट बात करें से बहन तू सब ले आगे तोर नाम आरु गांव नाम संग
5: जो सब के जुआर
4: जुआर
5: मर नाम श्रीमती भगवती देवांगन है मर गांव नाम मंगना रहे मर समूह नाम प्रगति महिला स्व सहायता समूह है मर समूह तानर में हदेख चाहे।
4: अच्छा तुम्हार समूह ने कतक लोग आ सजा
5: अमर समूह ने 12 लोग आ छू।
4: अच्छा 12
5: हाउ।
4: अच्छा कतक दिन से होला जाले बनाले बा
5: अमर समूह तो 2016 जुडला 7 साल होसी छे।
4: अच्छा
5: हाउ।
4: हां हां हां तो बल्ले ने ये समूह बनाए बाका जे तुम के कौन सांगला कौन सन बनाए बार समूह है बोलते
5: तो आनी ले राउंड बलू आता है दीदी मनाए लाए चारा माँ काय काय बाटर आई दीदी मनाए लाए आम के समूह ने जुड़ला आज कसन बलते पूछ लाए तो आमी ना इना जुड़लू आचे बल्लू तो कसन कसन आए सांगा बलते गलू गुनू काम पेराए लग बस आए लाए पूछ लाए सांग लाए असन असन स्थिति है ये सब बलते बल लाए और पाचे आमी समूह जुड़लू।
4: अच्छा बले ने शुरू ले 12 जन जुड़ लो।
5: हाँ हाँ शुरू ले 12 जन जुड़ लो है।
4: अच्छा है तन कहीं मतलब कहीं कागज वगैरह कहीं फार्म वगैरह भर के पड़ोगे।
5: हाँ आधार कार्ड और फोटो कॉपी मांग लाए।
4: हाँ
5: और इन्हें लाया है मन।
4: अच्छा हाँ फिर शुरू ने तुम पैसा वगैरह बोल जमा कर लो।
5: हाँ हम 10-10 रुपया जमा कर लू जमा करी गोटोक सील गेन लू पहले और समूह लोग 10-12 लोग ग्रुप ने गोटोक आमी खाता खुलाए लू और आई तन 10-10 रुपया हफ्ता ने जमा करते रहू आई पैसा का आमी बैंक ने कर जमा करू।
4: अच्छा हाँ फिर बाद में सरकार बाटले कहीं सहायता मिल
5: सरकार बाटले आरे पैसा बलुआ 15,000 आरे पैसा मिलला और सीआईएफ बलुआ 6 महीना बाद ने सीआईएफ पैसा मिलला और 1 साल बाद ने हम 1,00,000 पैसा दलू और 12 लोग आमी बैंक नामी अपना उठाई करी बैंक ने हमें पटाई सार लू।
4: अच्छा
5: हाँ
4: हाँ बोले ने सब ले पहल बोले ने काय काम की तुम्हें मूर कर ला साले
5: पहले तो समूर काम चल ला पाचे 2020 ले आमी गोठान काम कर लू।
4: अच्छा समूह ने काय काम करते रहला
5: समूह ने मैं पशु सखी काम करवाए
4: पशु सखी।
5: हाँ।

0: गाय
1: अच्छा
0: बैला कुकड़ा चिमड़ासनी काय मरनी बले हुआ माता बोलुआ ताय बल्या हुआ गाय बैला के असनी गलगोटा ये सबर तो बड़े बड़े डॉक्टर मन के आग दे बार कारीगर असनी बीमार सीमार आए बलते और खुद छोटे छोटे बीमार होल तो मसीबल करवाए।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा तो ये पशु सखी काज बोलते हो तो के ट्रेनिंग धर के ब्लॉक से आजे।
0: हाँ पशु सखी काचे ट्रेनिंग दर के लागला हम के
1: कहाँ कौन?
0: बकावंड।
1: अच्छा बकाउंड।
0: हाँ
1: अच्छा बोले ने कतक लोग के हैं ट्रेनिंग दिला जाले?
0: तो हर गांव ने तो आई लगे 27 पंचायत ने हर गांव ने एकला लेका पशु सखी बलवान तो आती सब लोग जाई कर हम सीख लू और सीखी करी आई कर हम गांव ने वे कुकड़ा चिमड़ा के इंजेक्शन लगावा
1: अच्छा हाँ, तो है तन पूरा इंजेक्शन लगावे बीती बोले सब सांग लावे।
0: आओ कसन मार बारा है कसन कतक मा दवाई दर बारा है कसन मार बारा ये सब और सिखाए लाए तो सीखी करी आए लुआ और ये गांव ने आमी करबू आचे।
1: अच्छा तो हाँ तो मतलब दवाई वगैरह बोल कहीं है सरकार बाटली
0: आओ
1: मिले?
0: दवाई बल सरकार बाटले देवन
1: अच्छा बोले तुम के खुद घिनुकना पड़े।
0: नहीं
1: हाँ, तो ये जैसन कि पशु जानवर वगैरह बोले कहीं सर्वे वगैरह तुम कर सा कि कहीं हाक दिले ने लगा सा कौन?
0: नहीं हर घर ने तो दिन भर तो कुकड़ा चिमड़ा तो दिन भर बुलुआ संजोले होलुआ तो हर
1: हाँ
0: घर ने आमी तो जावा तो हर कुकड़ा के आमी इंजेक्शन लगावा छोटे बच्चा के अलग लगाए बराई और बड़े टाके अलग लगाए बराई।
1: अच्छा
0: आओ
1: हाँ बोले सबका जो अलग अलग।
0: आओ अलग अलग आवाई
1: हाँ, तो बोले ने कहीं विशेष समय बल रही से आज का है जैसन कि पशु टीकाकरण वगैरह बोले लगा हुआ बोलवा तो हसन बल तुम लगा हुआ?
0: गाय बैल के तो बदमाश माँ बैल मन के लगाए ना होए असनी कि सावधान माँ बैल मन के लगावाऊ
1: अच्छा
0: असनी बकरी और बैल मन के।
1: अच्छा हाँ, बोलने जोन तुम्हें मतलब इलाज करके सकास बोले
0: हाओ
1: हो
0: हाओ
1: अभी तक तुमका। अच्छा ये तो अच्छा है बोले तू पशु सखी चो बोले काम कर सी ये बोले आए पशु सखी बोले काम कर
0: हाँ
1: सी।
0: ये बेबल कर भी अच्छे
1: अच्छा हाँ, तो बोले ने ये चुकाज कहीं जैसन कि रजिस्टर वगैरह कहीं मेंटेन कर पड़ू है कहीं
0: नहीं कहीं ना लगे।
1: कहीं ना लगे?
0: आओ
1: अच्छा नहीं कहीं रिपोर्ट वगैरह कहीं
0: हाँ
1: बना?
0: तो जसन आमी तो गांव ने कतक घर ने कतक कार घरे कतक कुकड़ा आचे ये
1: हाँ
0: सबर आम के जानकारी इधर के लागू आए तो
1: अच्छा
0: आई दीदी घरे अतक कुकड़ा आचे ताई दीदी घरे अतक कुकड़ा आचे तो गांव ने अतक ले का आचे ते सब के आम के तो दर के पर लिखे लागू आए और आगे सर मन के कोनी बले पूछ ले आके आम के सांग के लागू आए कि अमर गांव ने ए दीदी घर अतक कुकड़ा आचे तो गांव ने अतक आम के अतक मुर्गी जनसंख्या आचे बलते।
1: अच्छा हाँ, तो हाँ हिसाब में तुम के दवाई बोले मिर्सी आज बोले।
0: आओ
1: हाँ, तो ये जैसन कि पशुपालन विभाग ले कई ने कुकड़ी बकड़ा गाय भैंस पोस्तो योजना मन रही सी आज ताय हाँ मन के बल तुम्हें संग आज गाँव लोग से?
0: हाँ पारम भर बाराए बलते सांगुआ
1: अच्छा
0: तो आदिवासी लोग के तो 350 रुपया लागू आए और असनी पिछला वर्ग आए मन के 750 लागू आए असनी
1: अच्छा
0: कुकड़ा काज पारम भर बारो ले।
1: हाँ, तो अब तक कोनी के अमरा ला सा से ऐसा नई योजना मंच लाभ को की दिला सा से?
0: हाँ दीदी मन के कुकड़ा लाभ
1: हाँ
0: दिलाई
1: दिला
0: लुआ
1: सा।
0: जी। हाँ
1: अच्छा हाँ, तो ये तो अच्छा काम है। ये तो तुझो बोले ने खुद चुकर तो भी थी पशु सखी आसमांतर जसन के अभी हम गोट बात करते रहलू तुम चो समूह
0: ओ
1: ये समूह बोलने अभी काय बनाए सा?
0: एब समूह ने आमर समूह ने एबे तो खूबे काम आचे आमर गोठान ने तो चीज
1: हाँ
0: चलसी है सबू एबे तो आमर समूह ने बकरी पालन करबू आचे 11 टा पशु विभाग ले आम के बकरी देलान ताके चरावा दिन भर संजोले डापवा और आची गोट के काम तो ना हो एबल तेबे रीपा बोलुआ रीपा काम आचे
1: अच्छा
0: तो आती आमी तो लाई ए अचार ए पेपर कप प्लेट और गिलास ये सब ले आमी दूसरा दुकान ले या सर ले को लग ले आम गेनी आनते रहूं
1: हाँ
0: तो हाई बीती मशीन आम के केंद्र सरकार ले आम के
1: मिर्ला।
0: मिरला आचे तो आई खुद आमी बनाए करी आम तो आमी बिग बुआ छे दे।
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ, भले भी मतलब चालू आसे
0: आओ
1: काम?
0: चालू आचे
1: अच्छा, इतलो अच्छा तुम काम कर सा तो ये बिक तो भी थे कहाँ बिकवा जाले?
0: तो आइटा मन के तो काय तो कोई बटन नुआए सब काय तो वही बटन नुआए तो गांव ने तो पेपर कप काय काय गांव ने शादी ब्याह बलुआ सट्टी गरे बल लागू आई लाई चना ये
1: हाँ
0: सब आई तन तने बिकवाऊ।
1: अच्छा, तो बल हाँ खुद गोठान निचान के बात कर
0: हाओ हाओ
1: असन कहीं हाट वगैरह बोलने
0: नहीं नहीं को लगना नहीं हूँ।
1: ना नहीं?
0: हाँ
1: अच्छा तो जैसन कि गोठान ने काम करवा पूरा 12 लोग संगे आसु आज की कहीं अलग अलग पारी बना हुआ
0: नहीं सब संगे आसु
1: अच्छा हाँ हाँ बोले दिन ने कतक समय संगला साथ जाल का कोनी दिन आए कि रोजे दिन आए
0: नहीं डेली रोज जावा मामी सक्रिया 9 बजे टिफिन दरी कर जावा 5 बजे छुट्टी करवाऊ अथी कवाऊ और दिन बराती काम करवाऊ
1: अच्छा बोला रोज दिन
0: हाँ रोज दिन
1: अच्छा हाँ ये तो अच्छा काम है जैसन कि मशीन बीती तु बोल दोना पतल गिलास कप वगैरह बोले बना तो इसका तो प्रशिक्षण जरूरी है
0: हाँ तो प्रशिक्षण ना धरलू आम के जो सीखी रहे तो आयलाम के और असन के बटन के असन करबारा असन ले असन करबारा ये सब के सांग लाए आय तान ले पेराम बले खुद तिकरी रला दाय चालू कर लू और देख लू सीख लू सीखी करे खुद आमे बनाए बुआ छे
1: अच्छा कसन असन बाहर ही नहीं गेला साज बोले
0: नहीं
1: अच्छा और कहीं दूसर काम ने कोनी बाहर ही देख के गेला सा
0: बाहरे तो आमी रायपुर तक मैं दुयार गलिया छे
1: अच्छा
0: चारा मा जाई रे तो सनी काय काय काम कौन कौन जगह ने बनाए बात इस सबर दक के
1: अच्छा रायपुर ने काय दक ली जल्द
0: रायपुर ने काय समूह लोग काय कर बात इस सब के दक के गलू असनी ये बिसांग भी है तुम्हें तो दोना पत्थर ये सबर तो आय बाटले दखी आई कि रामी बले सब के करबू बलते आईलू और रामी एक सीखलू और अम्बल खुद करबू आचे
1: अच्छा हाँ हाँ तो अच्छा बल्ले ने कहा कि बल्ले कसन लागली रायपुर जाऊं दगबा के
0: अच्छा लागला
1: अच्छा लागला
0: हाँ
1: मतलब मन ने तो कहीं
0: आमी
1: बोला सन नहीं असन आमी करूं दे असन तो हो लगी होती नहीं
0: हाँ तो आमी बल्ले दख लू दखिच कर दख ले तो आम के काम ना आता ये कि खुद खरी कर दख बार आते वे आम बल करबू की ना करबू बलते ये सोच लू और आम बल खुद कर लू और ये करबू आ
1: अच्छा हाँ अच्छा देवंग ने तू इतलो अच्छा गोट के सांगलिस काम के बल सांगलिस वर्मी कंपोस्ट तु खुदे बोले ने कहा कि पशु सखी बलियास जसन की ये चो लाभ बोलू भे पैसा कोड़ी वगैरह मिर लेने तुम चो 12 जन आसास तो कसन बाटा करू आसा ले
0: असनी आजरी बरुआ तो कौन जाऊ आए कौन के काम बल पड़ू आए ने को दुख आए सुख आए गाँव ने कौन गाँव गुड़ा बल जाऊ आजरी उनसार ने आजरी बरुआ आजरी उनसार ने बाटा करुआ
1: अच्छा
0: हाँ
1: ये तो अच्छा अच्छा ये सांग तू कितलो पढ़ा लिखा कितलो असन पढ़ ली
0: मैं 8वीं पढ़ लिया
1: 8वीं पढ़ लिया अच्छा तो ये तो अच्छा 8वीं बोले कुछ काम है ऐसे भी पशु सखी बोलिया बोले ने समूह संग बोलिया तू पशु सखी बोले तुझे दुठान काम हो तू दक पशु सखी बनलो बेराले और महिला स्व सहायता समूह ने जुड़लो बेराले घर परिवार का कहीं दखा दे से अच्छा उद्यम हिसाब ने
0: हाँ।
1: कसन लागे से?
0: नहीं पहले तो आमी के नी ना जात रू गाँव ने कुली बुती जाऊ तो दारू काचे जाऊ तो बरसात बेरा बेड़ा ने बुती जाऊ तो जोन दिन ले आमी 2016 ले आम जुड़लू आचे आई दिन ले बल्ला सन मैं शुरुआत ले पशु सखीन काम कर भी चाहे दिन ले के नी कुली बुती के नी ना जाऊं तो पाचे फिर 2020 ले फिर गोठान होयला गोठान हो बाके अमर आर्थिक सहायता अधिक अच्छा लागला कि घर द्वार बल खूब अच्छा होयला पिला जी लाग बल पढ़ा लिखा अच्छा करायलू अपना घर द्वार के बले आघर ले दूसरा बदल लू
1: अच्छा।
0: आम के बल खुद अच्छा लाग सी अच्छी
1: बल्ले ने कहा कि बल्ले ने खिनिक पैसा कोड़ी हिसाब ने खूब सुविधा होली
0: हाँ। नोनी बोले 12वीं तक पढ़ाई ली ऑनलाइन पढ़ाई हुए तेरे अर्दाई मोबाइल ना रहे तार काज मोबाइल धर देली और फिर 12वीं पढ़ी कर छाड़ ला चाड़ बाग फिर एक टन टेलर धर दिलिया चेबे नोनी टेलर करवाए काम
1: अच्छा ये तो अच्छा है टेलर बोले गोटो हुनर आए समझो आई कि नहीं बोले कहीं बोले काम करुन करुन उन असली खाली समय ने उन बल काम कर ले सके अच्छा तुम चो समूह चो लोग एबे आगे बोले असन उन्ती बाढ़ती काज काय सोचला सास काय करा से
0: तो बे आवरी हम काय करू आ तो आई आवरी बोले कहीं काम होइले हावरी बोले करबू
1: अच्छा
0: हाँ।
1: असन मन आसे बिचारा हाँ। से बोलू
0: हाँ
1: हाँ, हाँ तो आले दिख तू इतलो अच्छा बोले तुम चो स्व सहायता समूह तू चो पशु सखी बनलो सपाय गोट के इतलो अच्छा नंगा सांगली साल खूब खूब जुआर
0: जुआर
2: हाँ तो बहन मन दखा सुनलास जी आमचे लगे युरला भगवती देवांगन और एमन संगे भेटघाट करला बलबीर सिंगज और सुनलास की तुम्ही भगवती देवांगन जोन दीदी आत हुन समूह ने रहून भाती कितरो अच्छा काम करला और आप लोग घर परिवार के नगद बना तो काजे पशु मित्र होन भाती पशु सखी होन समूह ने रहून कितरो काम मन करला वर्मी कंपोस्ट खत बना तो बाटे टीका लगा तो बाटे तो घर चो काम तो महिला मन के कर तो जिया मानतर ए चो संगे संगे आमी दूसर काम बल करून भाती आप लोग जीवना खाना के खूबे नगद बनाव सकूँ। तो बहिन मन दखा भेटवार्ता तो सुनलास और इच्छे संगे संगे आमचो मोटरानी दखा काय मंजा रंग रसिया गीता से अले इया ए गीत के बोल सुनू फिर पाछे गीत कुरिया मंजू नाव के सांगवा।

हाँ, तो दादा दीदी माँ निकाय मंजा छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ महतारी बीती गीत के अमचो लगे अमरोर लला, एक गुतकुरिया भाई मना राजकिशोर और हुंचो संगवारी मन। तो बहिन मन दखा अमके अमचो समिया ने जसन जसन काम चले से उसनी उसनी समिया चले से, और उन समिया के अनुसार आमके बलि हुंचो अनुसार ढल तो रहे। और आमके घरे रोन भाती अपलो मनुख ची ऊपर ची निर्भर नहीं रहतो रहे, आमचो जीवना खावना का जे आम के बोले मेहनत कर तो जरूरी है। तो बहन मन ए तो जातो पूरे आमचो दखा जातो समिया बली ली, और जातो पूरे मैं विदा धरे से सब पाए कार्यक्रम सुनतो सब पाए दीदी बहन मन के मैं पारो करें से जुहार।

0: घर द्वार, अभी आप ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार। इसे हम आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगा सामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगा सामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिकी बेड़ा खड़ा चुगोट।
2: मेथी गोटक गुणकारी फसल आए, ये भाजी बले आए आरु मसला बले आए, ये बल बपू काजे खूबे नगद फसल आए। ये फसल चो कमानी उन्नत वाट ने कसन करतो राय, एके मैं सांगे से ध्यान देऊन सुना। ये चो नंगत किसी मनात LAM सिलेक्शन, पूसा अर्ली बंचिंग, कसूरी सिलेक्शन, प्रभा मेथी नंबर 47 और 14, राजेंद्र क्रांति RMT अदा जाना बेड़ा तैयार करतो। बुनतोर पहिल 2-3 हार बेड़ा के नंगत जोपुन भाती माटी के बिरबिरा बनाऊन देतो राय। सरासरी हार जोप तो पहिल सरलो गोबर चो खत के हिसाब ने भूई ने मिसाउन देतो राय, फिर समान चौरस कियारी बनाउन देतो राय। बीज आरु बुनतो समय 2.5 एकड़ काजे 15-20 किलोग्राम बीज खूबे होय से। बीज के अगर तो काजे 6-8 दिन चो समय लागे से। बुनतो पूरे बीज के राइजोबियम कल्चर ले बीजोपचारित करलो ने खूबे लाभकारी होय से। बीज के आगर करुन पेरुन भाती बुनई करुआत, मांतर धाड़ी हिसाब ले बुनलो ने 15-20 सेंटीमीटर चो लाफी ने आरु 10 सेंटीमीटर

0: बूटा ले बूटा चो लाफी संगावन बुनाई करतो राय। असन करलो ने मूर बेरा मिजानी करतो काजे सुविधा रहे से। अदा जाना खत भात बेड़ा के तैयार करतो बेरा 10 से 15 टन कार्बनिक खत नहाले कंपोस्ट 2.5 एकड़ चो हिसाब ने माटी ने मिसातो राय। 40 किलोग्राम नत्रजन 20 किलोग्राम फॉस्फोरस आरु 20 किलोग्राम पोटास 2.5 एकड़ चो हिसाब ने उपयोग करतो राय। एचो मिजानी कसन करतो राय हुनके जाना। जेबे बूटा 3 ले धरुन 4 पाना चो होन जाए दे तेबे आगर गोछा बूटा मन के निस्काउन देतो राय। एचोले धाड़ी ले धाड़ी बूटा मन चो लाफी 8 से 10 सेंटीमीटर होन जाए दे। फिर बूटा नानी रलो समयाने एक हार मिजानी करतो राय। फिर बुनलो 45 से 50 दिन पाछे फिर मिंजानी करतो राय आरु लाटा बूटा मन के निकराउन देतो राय। अदाय जाना सिंचाई चो वाट। बुनतो पहिला पानी पलालो ने बीज नंगत अखरे से पाछे माटी आरु बतर दखुन 4 से 6 दिन चो फरक ने सिंचाई करुक लागे से। रोग आरु कीड़ी मन चो वाट के अदाय में सांगे से। गोटोक रोग होय से चूर्णील आसिता। ए रोग होले पाना ने दोनों पाटे पंडरी गुंड महा दखा देवाय। एके थेबा तो काजे कार्बन डाजिम 50%, WP 0.1%, नहाले घुलनशील गंधक 0.2% चो छिड़काव रोग होलो ने करतो राय। गोटोक रोग होय से मृदु रोमिल आसिता। ए रोग आगर फरवरी और मार्च महीना ने होय से। ए रोग होलो ने पाना मंच उपरे हरदया बाना महा आरु खाले बाटे कापस असन कुमटलो महा दखा देवाय। एके थेबा तो काजे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP फफूंदनाशी के घोरून छिड़काव करतो राय। कीड़ी ए फसल ने तो कीड़ी आगर नी जाउटोत मांतर केबे जेबे पाना खाओ सुंडी आरु फर काना करू कीड़ी जाउटून जासोत। उदलदाय ए मन के मरला तो काजे 0.5% मैलाथियान नहाले 0.4% क्विनाल फास के छिचतो राय। अदा में सांगे से कटई और उपजन। कसूरी सिलेक्शन किसिम ने जोन थाने फूल बेरले फुटवाय हुंचो पहिल हार कटई बुनलोर 25 से 30 दिन पाछे पाना काजे करतो राय। फिर 15 से 25 दिन चो फर ने फूल फुटतो पूरे तक कटई करून साग रांधुक सकूं। और सामान्य मेथी ने 2 से 3 पाना होलो ने टूटातोर मूर होन जाए से। बुनलोर 20 से 25 दिन ने भूई ले बूटा के टूटाउन पहिल हार टूटा तो काम के आमी करू सकूं। पाछे 30 से 35 दिन ने झिकुन भाती एके निस्काउ पड़े से। बीज काजे मेथी फसल ने फूल फूट तो पूरे 2 हार टूटाउन बूटा के फूल तो फर तो काजे छांडून देतो राय। पाछे पाकलो ने फसल चो कटाई करतो राय। काटून बूटा के घाम ने सुखातो राय। सुखलो पाछे बूटा मन के मिंडून ओसाउन बीज के अलगाउन देतो राय। एचो उपजन सामान्य मेथी ने 70 से धरुन 80 क्विंटल 2.5 एकड़ चो हिसाब ने मिरे से आरु कसूरी मेथी ने 90 से धरुन 100 क्विंटल 2.5 एकड़ चो हिसाब ने मिरे से। दादा दीदी मन असन करून मेथी फसल चो कमानी करून तुम्ही आगर फसल पाऊ सकास आरु आगर फायदा वाले कमाऊ सकास।
1: कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का प्रसारण किया गया। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। समय है दोपहर के 1:10 का। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। आपके ढेर सारे खतों के साथ कार्यक्रम श्रोता सुमन लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो साथी शिफाली। हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वीकारे मेरा स्नेहिल अभिवादन नमस्कार। इन लाइनों के साथ कि रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता। जी हाँ, रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। तो थाम कर अपने अपनों का हाथ जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। और अब लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर प्यासा सावन इस फिल्म का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संतोष आनंद के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है आप सभी ने। गौरीनगर इंदौर से आप हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले। छतरी तलाव अमरावती से आप हैं साधना रानी गुप्ता और किशोर कुमार गुप्ता। महावीर वार्ड भाटापारा से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव, श्रीमती लक्ष्मी यादव और कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आबिदा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्ल्यूउल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से आप हैं बदरू वली अंसारी, फरजू वली अंसारी और फरजी वली अंसारी। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिराबाई खोबरखेड़े, सुनैना खोबरखेड़े और तनुज। खांडवी तालुका जड़गांव जामोद से आप हैं राम धाड़े, दीपाली धाड़े और स्वराज धाड़े। इसी गीत की फरमाइश इन श्रोताओं ने भी की है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। आप हैं स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और मालती स्वाति प्रयाग चौधरी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश लिख भेजी है आप सभी ने। मोती गार्डन भाटापारा से आप हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया और युग कुमार झेरिया। श्री रोग डेकेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली से आप हैं टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सुनील जबड़े, रामदेव राव शिंदे पाटिल, चांदू बलखंडे, मास्टर विलास शिंदे पाटिल। अशोकनगर से आप हैं दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। छत्रपति शाहू नगर से आप हैं पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत टिंकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि मंजूषा, गौतम इंगोले। श्री माटेश्वर रेडियो श्रोता संघ से आप हैं शेषराव बोबडे, सोनाजी सीताराम, शुभम बालाजी बोबडे, सुवर्णा वेणुताई वैष्णवी बोबडे और नावकीकर मारोतराव भुसारे। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। बेरडी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, आहिल खां और जिशान खां। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश मुकेश मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक कुमार सावलानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला। जतुका किशनपुर से आप हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से आप हैं हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी और ललिता। डोंडी लोहारा संबलपुर से गौतम उर्वशा, डामिन लक्की, डोमनलाल कोठारी, अर्जुंदा बालो से दिनेश यादव, साधना यादव, मंचुआ से रिंकू रावटे, अयांश रावटे, मर्दापुरी चरामा कांकेर से नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा और नरेश कावड़े। प्रमिला गंज जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। जमशेदपुर से आप हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म फर्ज का ये गीत मुकेश की आवाज़ में, शब्द आनंद बख्शी के, सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए जिसे सुनना चाहा है भाटापारा से बच कामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर, सोनाडी से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघने। महामाया पारा ग्राम दरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, ग्राम दरचूरा से ही ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। ग्राम बुल्ढहन छत्तीसगढ़ से आप हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। हटौद बाजार लाहौर से आप हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। दरियाचूर भामली महाराष्ट्र से आप हैं गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेर अकोला, बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। हिच्चा महासमुंद से आप हैं अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, रीचा गायत्री वैष्णव और भीषम दास मानिकपुरी। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से। कुर्मीपारा बेमित्रा से आप हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। वरुड जलौका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे। सपना संगीता रोड इंदौर से आप हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। सर्वानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार और यशस्वी पाटीदार। साथ ही आप हैं हसवी पाटीदार। आदर्श नगर मलोट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। ताजपुर मोरबा से आप हैं भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। डोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। अगर तुम ना होते, आप सभी ने सुनना चाहा है इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आरजू कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। इस फिल्म से हसरत जयपुरी के शब्दों को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फरमाइश करता है आप सभी दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से ही आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित अमीन यादव, गिरीश करण यादव, युवान राबेश यादव। सरसा बिहार से आप हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली, फलना झा। नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और चिलना झा। गांव रतनपुर तहसील झिरन्या जिला खरगोन पश्चिम निमाड़ से आप हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष नायक, रविंद्र नायक, शिवानी अश्वनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन और पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक। धाणी नांदुरा महाराष्ट्र से आप हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुंभार। नयापारा फरसगांव से सत्येंद्र मंडावी, उमेश नाग, कृष्ण नेताम, रंजीत भंडारी। भाटापारा से आप हैं दानसिंह रावत दानू, पद्मनी रावत और शुभम सौरभ रावत। बेरडी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। लीजिए सुनिए आप सबकी फरमाइश का ये नगमा।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: श्रोता सुमन, आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। अगली फरमाइश लिख भेजी है ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर, कांति गुप्ता, दादा ठाकुर, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि सिद्धि गुप्ता ने। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से आप हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका, माधवी, साध्वी, एम के गुप्ता, राजू गुप्ता और विनीता गुप्ता ने। कंवर कॉलोनी बड़वाह से आप हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली। जमशेदपुर से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और राकेश कुमार। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से आप हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीके पुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेश, विनोद, पाली, डीसीपुरी और अरुणपुरी। साथ ही आप हैं नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोडीपुरी, सुनीलपुरी और वीकेपुरी। साथ ही आप हैं आरएसपुरी। शेरकोट जिला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और भाई सुच्चा पाठक। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभय, राधिका गजभय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभय। कंवर कॉलोनी बड़वाह से आप हैं प्रवीण श्रीमाली, घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंजोलिया, श्रीमती माफ कीजिएगा प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोरदा लवन से आप हैं भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा और वेद किरण वर्मा। बक्सर बिहार से आप हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, महताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। सरगुजा मेनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिया थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्ल्यू डोम। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में हवस फिल्म का ये गीत। सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश लिख भेजी है आपने। चंडीगढ़ से आप हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाडोदे और चंद्रप्रभा वाडोदे। गणेशपेट पार्थी महाराष्ट्र से अंबादा शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा शिंदे।

या जिला अंबागढ़ चौकी से ही आप हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान। गुरमीत सिंह मीता, आप हैं साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से आप हैं पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह और ऋषभ सिंह। अर्जुंदा बालो से आप हैं दिनेश यादव, साधना यादव। फरड्डी ही बालो से आप हैं मंगतूराम यादव, चित्ररेखा यादव, शुभम और साहिल। साथ ही आप हैं सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी और माया कुमार। आप सभी ने सुनना चाहा है लोफर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी के शब्दों को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कहते हैं हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने में। तो मुस्कुराते रहिए, और इसी के साथ कार्यक्रम श्रोता सुमन से मुझे यानी शेफाली को देविदा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्र हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल के

0: के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी मान्यता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड और मीडियम वेव पर आप हमें आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से सुन रहे हैं। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम कला और कलाकार।

0: धीमन जुहार एची संगे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो सब पाक गांवकारी सियान सज्जन संग जवरिया संगवारी मन के मई पारो करें से जुहार और एची संग संगे आम के नानी नानी पीला मन के बल नहीं भूलक तराय तो रेडियो कटा बस लो सब पाए नानी नानी पीला मन के मई पारो बाटले खुबे खुबे मया और चुमा तो दादा दीदी मन तुम्ही तो जान साची आम्ही कला और कलाकार भितरे मोडराने कैक असन ज्ञान ध्यान चो गुट भेटवार्ता गीत गोविंद और बड़े बड़े कलाकार मन चो जीवन परिचय धरून तुमचे लगे अमराऊ से। तो दादा दीदी मन तुम्ही जान साची आमचो लगे असन मोडराने कलाकार मन चो जीवन चो जो आप बीती मन रहे से और उन कसन कसन संघर्ष करून बाती आमचो ना मंचो इतिहास ने हुए से। तो दादा दीदी मन आम के कला असन जीवा जोन आमचो जीवनाले जुड़ली से कला हरेक मनुक लगे हरेक मनुक जो भीतरे लुकली से जोन अलग अलग रूप ने अलग अलग समय ने हुंचो ना हुंचो पहचान ऐसे कला बलतोर गोठियातोर नाचतोर डगातोर गावतोर बजातोर कहीं बनातोर पेंटिंग हो चाहे मूर्ति हो चाहे आभूषण हो चाहे कहीं बल असन जोन लगे हुनरा से हुन हुंचो कलाकार चो ना होय से और हुन कला ने हुंचो गुटोक विशेष पहचान होय से। तो कला और आचो समयाने तकनीक चो मेल डिजिटल कला यह तकनीक चो असन कला चो मिश्रण आए जोन कला के और अधिक रोचक और रचनात्मक के बढ़ाए से आधुनिक उपकरण एआई टूल्स असन वास्तविक एआईआर और वर्चुअल रियलिटी जो उपयोग अब नई कलाकृति के बनातो काजे बढ़ातो काजे उपयोग करुक लाए सकत कला चो माध्यम ले कला ने उपयोग करतो काजे कई असन सामग्री जसन पेंट ब्रश ले धरुन भाती आधुनिक डिजिटल टेबलेट सॉफ्टवेयर तक बोले हो सके जो उपयोग कलाकार नई तकनीक और सामग्री जो उपयोग करुन भाती आप लो बात के और आउ अधिक प्रभावी ढंग ले रखुक लाए सकोत कला चो विभिन्न रूप कला कैक असन बल्लो ने तकनीक सुविधान बल जोड़न भाती आप लोग गुटुक नया रंग नया रूप और नया कारण के दर्शक लाए सके तकनीक चो माध्यम ले कलाकार आप लोग कल्पना के डिजिटल स्क्रीन ने बोले दिखा सकत एक कला चो आधुनिक सुलभ और इंटरेक्टिव बनाउक लाए सकत कला शिक्षा चो एआई और डिजिटल टूल्स बल उपयोग रचनात्मक के बढ़ातो काजे करुक सकत कलाकार काजे आप लोग आधुनिक तकनीक और पारंपरिक कौशल चो एकोटोक नवा मिश्रण चो संभावना तकनीक द्वारा हो सके कला ने पेंट ब्रश कागज कैनवास और डिजिटल उपकरण बलों ने म्यूजिक कला ये सब मिलुन भाती गोटोक नया रंगमंच देख सके जहाँ कलाकार आप लोग कला के प्रदर्शित करतो काजे कै आप लोग बलों ने नवा आप लोग भीतरे जोड़ लाई सके। तो एरली तो कलाकार भीतरे कला और तकनीक चो मेल चो गोट आले या आमचो मुड्रा ने आसे गोटोक जहाला आले या जहाला के बोले सुनो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: इत बदले मत तांक अच्छा।

0: दरम्यान आमच्यो कार्यक्रम कला और कलाकार चिमुंडानी काय मंजा गुटुक नाड गीता से ए या एके वाले सुनु फिर ए मंजो गीत कोरिया मंजो नाव के सांगवा
1: दशरथ राजा।

0: घनश्याराम चंद्र की जय।
1: हां तो दादा दीदी मन एक आय म्हणजे राम भजन चो नाटके आमचे लग धरून इवरला मधुराम और हुंचो शंगवारी मन। तो दादा दीदी मन आमचो आजीचो कलाकारात रामनगर चो रामलीला लोकनृत्य वाराणसी चो रामनगर चो रामलीला दुनिया चो सबले जुना और अनूठी रामलीला है। इमन गोटोक असन जुन आपलो पारंपरिक और लोक मंचन काजे असन प्रसिद्ध आसे ये 200 ले ज्यादा बरकले चलते एतु बीती कुटुक परंपरा है। रामनगर चो रामलीला चो मुख्य विशेषता ऐतिहासिक शुरुआत रामनगर चो रामलीला चो मूर 19वीं शताब्दी चो मुरले काशी नरेश महाराजा उदित नारायण सिंह ले करला। कलाकार और वेशभूषा इथाने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चो भूमिका के जुआन लोकमन लेकामन करुआत ये कलाकार मन चो चयन काशी नरेश चो मार्गदर्शन ने होते रहे। लोकमंच चो अनुभव ले ये सिर्फ नाटक ची नहीं बल्कि गोटोक असन लोकमंच रंगमंच रहे जहां कलाकार आप लोग प्राकृतिक आवाज चो इस्तेमाल करुन भांति आप लोग कलाकारी के दिखाते रहो। 31 दिन चो ये आयोजन होतो बीती रामलीला पूरे 31 दिन तक चलते रहे और जोन अनंत चतुर्दशी ले मूर होन भांति दशहरा तक चलते रहे। यूनेस्को मान्यता रामनगर रामलीला के यूनेस्को बाटले मानवता चो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत चो रूप ने एमन के मान्यता मिली। शाही परंपरा आज बले काशी नरेश अनंत नारायण सिंह हाथी ने चेगुन ए रामलीला चो साक्षी बनवात जहां हनुमन चो स्वागत हर हर महादेव चो रूप ने जय घोसले हुआ है। रामनगर रामलीला चो कलाकार पारंपरिक लोक नाट्य और भक्ति भाव चो माध्यम ले रामचरित्र मानस चो कहनी के जीव करुआत और जोन अनूठा और सांस्कृतिक आभूषण बनाउन भाती हुमन चो अनुभव के दखावा। रामनगर रामलीला भारत चो जोन असन प्रसिद्ध पारंपरिक रामलीला मन ले एक आय जोन केवल धार्मिक नाटक ची नहीं बल्कि लोक कला लोक नाचा ले बले आप लोग जीव ले परंपरा के मानुआत। रामनगर रामलीला पीलावेरा लेची अभिनय गीत गोट संवाद और पारंपरिक मंच चो शिक्षा धरुआत ये कलाकार मंचो जीवना सादगी धार्मिक और आस्था विश्वास ले जुड़ू रुआ एमन सांस्कृतिक सेवा ले जुड़ाव रहून कई परिवार पीढ़ी पीढ़ी ले राम लक्ष्मण सीता हनुमान और काउर बले पात्र मंचो भूमिका के निभाते ऐसो। लोक नृत्य और लोक कला ले जोड़लो कलाकार भारतीय संस्कृति चो जीव के संगातो काजे इमन आपलो उदाहरण चो रूप ने आसोत। इमन चो अर्जुन सिंह धुर मध्य प्रदेश चो प्रसिद्ध असन लोक नृत्य जोन एबी बले आपलो नाम पहचान के रामलीला चो रूप ने बना लासोत। रामलीला असन भगवान चो लीला है जहां लोग आपलो आस्था आपलो विश्वास आपलो जीवना के आपलो धार्मिक दृष्टि ले ये रामलीला ने दक्षोत। रामलीला सतयुग चो राम कथा मंत्र आज बले ए कलाकार चो माध्यम ले ए कलाकार मन आपलो धार्मिक नाटक बल बने पारंपरिक आपलो कला के दखात काजे इमन सांस्कृतिक सेवा ले जुड़ा रहून भाती लोक के आज बले राम लक्ष्मण सीता हनुमान चो कहानी के हनुमान चो जीवना के उमन चो रहन सहन के आज बले लोक चो पूरी दखासोत और हुन रामचरित्र मानस चो जोन आत्मा है जोन जीव है हुनके आज बले जीवित संगालासोत। ये 31 दिन चो वाराणसी जिला चो राम कथा रामलीला आज बले आमचो विश्वभर ने प्रसिद्ध हासे। तो एतो रली रामनगर चो रामलीला चो ये पारंपरिक राम कथा और हनुमान चो कलाकारी। तो आमचो मोडरा ने दखा आज बले ये कार्यक्रम भीतरे मोडरा ने और गोटोक राम

तो दादा दीदी मन दखा आज बोले आमचो बस्तर चो असन कलाकार मनासो जोन रामचरित्र मानस चो कुटुक भाग के धरुन भाती असन नाट मन बना लासोत और आप लोग कला चो प्रदर्शन करुन भाती रामलीला चो कथा के सांगसोत। तो ये नाट गीत रामलीला चो गौरला ये गुप्त क्रिया भाई मनात कम लोचन और हुंचो संगवारी मन। तो देखो देखो आमचो जातो समय बोली ली तो जातो पूरे मैं कला और कलाकार सुनतो सब पाए गांव के दादा दीदी मन के बिदा धरे से जातो पूरे मैं पारो करें से जुहार।

कला और कलाकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त शाम के 5 बजे है, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होती है। सबसे पहले लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। पहले सुनते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर सुनेगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। गोंडी समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर शाम 7:21 पर सुनेगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। कुड़ी फूल में प्रस्तुत करेंगे भत्री लोकगीत रात 8 बजे, कलाकार होंगे नीलू राम और साथी। पिलामन काजे कोट में आज आप सुनेंगे सरदार उधम सिंह के बारे में रात 8:30 पर, प्रस्तुति होगी सुकरू राम यादव की। पुरानी फिल्मों से रात 9:15 पर। रात 9:30 पर उवाट में सुनिएगा सरकारी योजनाओं की जानकारी। इसमें आज आप सुनेंगे कृषि विभाग की योजनाएं, इस विषय पर अजय कुमार मीरी से बातचीत करेंगे बलबीर सिंह कच्छ। परिचर्चा आप सुनेंगे रात 10 बजे, विषय होगा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास। प्रतिभागी होंगे श्री मंदाराम नाग और श्री बलदेव मौर्य, संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रजनीगंधा में सुनेगा पुरानी फिल्मी गीत रात 10:30। लीजिए अब सुनिए कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संदेश टू सोल्जर्स हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे शाम 4 बजे। संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे दोपहर 2 बजे। वंदना आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर। सुबह 6:20 पर होगा चिंतन, आलेख और प्रस्तुति होगी डॉक्टर रामकुमार बिहर की। रामचरितमानस का गायन सुनिएगा सुबह 6:25 पर। गायक होंगे ए हरिहरन, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कृषि सामी की बीड़ा खाड़ा चौक गोट का प्रसारण होगा सुबह 6:35 पर। इसका पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। सुबह 6:40 पर हुलहुली में सुनिएगा बिरली पाड़, वादक कलाकार होंगे श्रीधर और साथी। नमस्कार जगदलपुर, हमारा ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आकर्षण सुनेगा कहानी धुंध, कहानी सुनाएंगी मोहनी ठाकुर और होगी मधुरिमा। लोकमंजरी में आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एक ही फिल्म से, इसमें आज सुनेगा फिल्म, इसमें कल आप सुनेंगे फिल्म बाहर फिर भी आएगी के गीत सुबह 9:30। सुबह 10 बजे गुलशन में सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। लोकगीतों के कार्यक्रम गुर्दू में आप सुनेंगे अर्जुन नाग और साथियों के गाये गोंडी गीत सुबह 10:30। सुबह 11 बजे एक ही कलाकार में कल के कलाकार होंगे पार्श्व गायक मोहित चौहान। गैर फिल्मी गीतों गजल का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 11:30। दोपहर 12 बजे पाटाविनार में आप सुनेंगे ध्रुवी गीत, कलाकार होंगे बालमती बघेल और साथी। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण होगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमान। संवाद द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ गोंडी बोली में आप सुनेंगे दोपहर 2:30। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2:45 पर। दोपहर 3 बजे से विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। सांध्यकालीन सभा में सुनेगा समसामयिक विषय पर आधारित

कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हलबी बोली में शाम 5:05 पर, शाम 5:10 पर सुनेगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुनेंगे गोविंद राम और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत शाम 6:35 पर। बस्तर के स्वर शाम 7:00, शाम 7:21 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। डांडामाली में रात 8:00 प्रस्तुत करेंगे ध्रुवी गीत, कलाकार होंगे चमरू राम बघेल और साथी। पिलामन काजीकोट में आप सुनेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में रात 8:30 पर। रात 9:15 पर ग्राम पंचायत के विकास गाथा में सुनेगा वार्ता दिव्यांग निराश्रित निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1999, वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। घुमकली में सुनेगा ध्रुवी आदिवासी गीत रात 9:30 पर, कलाकार होंगे बनसिंह कश्यप और साथी। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 और रात 10:30 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। यही हमारे केंद्र से आज की सभा और कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी।

0: ए सम्यानी आमचो बारदक्तो और युवाणी कार्यक्रम सुनतो सप्पाय संगवारी मन के मैं धर्मराज पटेल
1: और मैं यहाँ गीता ठाकुर एचे संगे अमी दोनों करो से तुम्हें सप्पाय के
0: जुहार। गीता खूब दिन ले भेट घाट आले संग तुई कसन आसित।
1: मैं तो नंगता से धर्म तुई संग तुई कसन आसिस।
0: मैं बले नंगता से काय
1: धर्म।
0: हाँ
1: आजी आमचो संगवारी मन का जे काय विषय ने बात गोड बात के धरुन इलु से आले सांगुन दर।
0: हाँ गीता आजी चो आमचो विषय आए बार बार नौकरी बदलना। तुई तो जान सित काय फिर मके कसन घन घन पूछ सित।
1: हाँ धर्म मैं तो जाने सी ची काय।
0: हाँ
1: मांतर ये गोड आमचो संगवारी मन लगे बले अमराऊं बोले से।
0: हाँ घन घन नौकरी बदल तो आजीचो समयाने खूबे आम बात होए से।
1: हाँ धर्म जेके जॉब होपिंग बले बोलुआत।
0: गीता तू जान सीत घन घन नौकरी बदल तो चो कारण के।
1: हाँ धर्म जसन अच्छा सैलरी गुड की कंपनी ने मिर्तो बीती इंक्रीमेंट जो मुकाबला दूसरा कंपनी ने गेले अच्छा सैलरी मिले से।
0: हाँ करियर चो ग्रोथ अगर वर्तमान कंपनी ने सीख तो कहीं नुआ नी मिले से तो प्रमोशन हो तोर कम हुआ है।
1: वर्क कल्चर खराब मैनेजमेंट काम चो दबाव नाले ऑफिस चो राजनीति ले परेशान।
0: कौशल विकास अलग अलग कंपनी ने काम कर ले नुआ टूल्स आउ टेक्नोलॉजी सीख तो ने कम मौका मिलुआ है।
1: धर्म
0: हाँ
1: ये जो फायदा काय हो से
0: जसन की नेटवर्किंग कम समय ने ज्यादा लोग और प्रोफेशनल मन संगे अच्छा संबंध बनाऊ सकोत।
1: हाँ अनुकूल क्षमता।
0: हाँ
1: तुम्ही नुआ माहौल ने झपके मिलुक सकास और तुम चो अलग अलग इंडस्ट्री कार्य प्रणाली चो अनुभव मिलुक सके।
0: गीता ये चो नुकसान बल्ले आसे
1: आले सांगुंदक
0: जसन स्थिरता ने कमी बल्लो ने योग्य उम्मीदवार मन के लागे से कि तुम्ही भरोसेमंद नुहास और मुश्किल समय ने कंपनी के कई कारण होले छाड़ुक सकस।
1: रिटायरमेंट बेनिफिट जो नुकसान।
0: हाँ
1: ग्रेजुटी और पीएफ जसन फायदा का जे गुड की कंपनी ने खूबे समय ने पांच साल तक थेबुक जरूरी है।
0: संगवारी गोटोक सुझाव बले संगवारी मन गोटोक सुझाव बले आसे आले ये सुझाव के बले सुना।
1: सही कारण जाना तुम्ही तुम चो तरक्की का जे नौकरी बदल सा नाले छोटे बड़े परेशानी मन ले भाग सास।
0: कम समय ने कोशिश करा कि कहीं बले कंपनी ने कम से कम 1.5 साल ले 2 साल तक जरूरी रहा कसन बल्लो ने तुम चो रिज्यूम स्थिर रह दे।
1: नौकरी छाड़ तो बेरा प्रोफेशनल रहा और अच्छा संबंध ले नौकरी ले निकरा।
0: संगवारी मन तुम्ही हर 6 महीना ने नौकरी बदल सा तो ये चिंता चो विषय हो सके।
1: मानतर तुम्ही 2-3 साल चो भीतरे बेहतर अवसर का जे बदल सा तो ये तुम चो करियर का जे गोटक अच्छा साबित हो सके।
0: हाँ संगवारी मन ये तो रेली आजी चो चर्चा मानतर आजी आमी तुम चो काजे काय काय कार्यक्रम ने आनलू से एके जानुआ।
1: आजी आमी तुम चो काजे आनलू से यादो के श्वर जोन थाने तुम्ही सुना से पुराना पुराना गीत मन के ये गीत मन तुम के पुराना दौर चो याद कराए दे।
0: आउर आनलू से ज्ञान ध्यान चो गोट आउर सामान्य ज्ञान आउर आनलू से रोजगार सूचना
1: एचे संगे संगे आसे तुम चोका जी गोटोक वार्ता।
0: हाँ तो आजी चो कार्यक्रम के मूर करू मांतर मूर कर तो फैल सुनु ये जहाला के।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
1: धर्म
0: हाँ
1: आजी जो कार्यक्रम यादव केशवर के मूर करुने।
0: हाँ
1: संगवारी मन आजी जो कार्यक्रम जो पहल गीत आए फिल्म लव स्टोरी ले
0: ये गीत प्यार और सपना जो खूबसूरती के दर्शाए से जोन थाने फूल जो शहर ने आप लो घर बना तो कल्पना कर सो।
1: शर्ट दिला से अमित कुमार और लता मंगेशकर गीतकार आत आनंद बक्सी संगीत निर्देशन आर डी बर्मन चो तो संगवारी मन या सुनो ये गीत।

0: संगवारी मन, अगला गीत आए फिल्म नया दौरले। ये गीत समर्पण चो प्रतीका है, जोन थाने प्रेमी आपलो प्रेमिका चो हाथ मांगुन ये महसूस करे से कि हुन के दुनिया चो हर खुशी मिरले।
1: ये गीत के शर्दिला से मोहम्मद रफी और आशा भोसले, गीतकार आज साहिर लुधियानवी, संगीतकार आज ओपी नैयर। तो यह सुनो ये गीत के।

0: संगवारी मन गीत मंचो सिलसिला तो असने ची चलते रहे दे आमच लगे तुमच काजे गोटोक सामान्य ज्ञान नहीं रोजगार सूचना चो गोटा से आले के बोले सांगो।
1: तो संगवारी मन आज जो पहल रोजगार सूचना है छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग ने उप अंकेक्षक ने 69 रिक्त पद मन ने भर्ती चो संबंध ले आए ये जो शैक्षणिक योग्यता आए उम्मीदवार लगे बीकॉम चो डिग्री होतर जरूरी है ये जो काजे आयु सीमा 21 बरक ले धरून 30 बरक तक होतर है ऑनलाइन आवेदन करतो मूर 29 अप्रैल 2026 ले होली से और आवेदन करतो अंतिम तिथि आए 22 मई 2026 तक ये जो आवेदन करतो काजे व्यापम चो ऑफिशियल वेबसाइट आए vyapam.cgstate.government.in ने ऑनलाइन आवेदन करुक सकास और अधिक जानकारी काजे बले यही वेबसाइट ने दखुक सकास।
0: असनी दूसर रोजगार सूचना आए संगवारी मन छत्तीसगढ़ नगर सेना ने फायरमैन चो ये 295 पद ने भर्ती चो संबंधन ने आए ये भर्ती काजे हुनी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करुक सको जोन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करला से ये चो काजे आयु सीमा 18 बरक ले धरून 30 बरक तक तो चो होतो रहे ऑनलाइन आवेदन कर तो मूर 8 मई 2026 ले होली से और आवेदन कर तो अंतिम तिथि आए 5 जून 2026 तक ये चो आवेदन कर तो काजे व्यापम चो ऑफिशियल वेबसाइट आए व्यापम सीजी स्टेट गवर्नमेंट इन ने ऑनलाइन आवेदन करुक सकास।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: संगवारी मन एबी तुम्हें सुनते रहला रोजगार सूचना अतः फिर ले सुनो गोटक गीत के फिल्म लवले।
2: ये गीत के SP बाला सुब्रमण्यम और KS चित्रा गावला से,
1: ये गीत के मजरू सुल्तानपुरी लिखला से और संगीतवद आनंद मिलिंद करला से। तो संगवारी मन या सुनो ये गीत।

0: धरम
1: हाँ
0: आम जो गीत गोविंद मन के थेबाऊ
1: हाँ
0: और आम जो संगवारी मन का जी वार्ता आनलु से एके सुनाऊ।
1: हाँ ये वार्ता चो नावा युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य है और ये वार्ता के सांसद बिमल साहू। तो संगवारी मन या सुनो ये वार्ता के।
2: नमस्कार, मैं विमल साहू और आज मैं आप सभी को एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, हमें अपना जीवन एक अच्छा और निरोगी जीवन जीने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपना जीवन कभी भी खुशी से और तनाव मुक्त नहीं जी सकेंगे। इसलिए सभी लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर के दिन मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने को या

0: फिर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास को मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहते हैं, बल्कि हम अपने संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं का उपयोग अपना जीवन तनाव मुक्त करने के लिए और अपने समाज के विकास के लिए करते हैं, उसे मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं से कोई भी पीड़ित हो सकता है, जबकि कुछ व्यक्ति या समूह अधिक संवेदनशील होने से कोई भी व्यक्ति खराब मानसिक स्वास्थ्य से अछूत नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त लोगों को अक्सर कलंक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वे मदद लेने से कतराते लगते हैं तथा उनके सुधार में बाधा उत्पन्न होती है। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ। एक व्यक्ति अनेक प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त हो सकता है, जिसमें शामिल है चिंता, दोर्द्रव्य विकार, अवसाद, जुनूनी बाध्यकारी विकार, OCD। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने वाले प्रमुख कारण शैक्षिक दबाव, यानी कि पढ़ाई लिखाई का दबाव, अच्छे अंक प्राप्त करने और करियर से सफल होने की चिंता युवाओं में तनाव और अवसाद उत्पन्न कर सकती है। सामाजिक मीडिया। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग आत्मसम्मान को कम कर सकता है, क्योंकि युवा अन्य लोगों की जीवन शैली और सफलता तुलना करने लगते हैं। रिश्तों की जटिलताएं, प्रेम संबंध, दोस्ती और परिवार में अनबन मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। बेरोजगारी या करियर। सही करियर चुनने या रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई के कारण आत्मसंदेह और चिंता उत्पन्न हो सकती है। मानसिक विकार। अवसाद, चिंता विकार और अन्य मानसिक बीमारियां युवा अवस्था में अधिक देखी जा रही है। स्वास्थ्य धन है। हमारे जीवन में हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा पहला कार्य होना चाहिए। स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया है। बीमार धनी होने की अपेक्षा गरीब व स्वस्थ होना अधिक अच्छा है। एक बीमार व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, एवं एक स्वस्थ व्यक्ति अपने सभी कार्य पूरे उत्साह के साथ कर सकता है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है, असल में वही धनी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम भी बहुत आवश्यक है, अर्थात हमें स्वास्थ्य रूपी धन की हर कीमत में रक्षा करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज में संवाद की आवश्यकता है। थेरेपी और काउंसलिंग जैसी सेवाएं युवाओं को भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकती है। स्वास्थ्य जीवन शैली। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सहयोगी वातावरण। परिवार और दोस्तों का समर्थन युवाओं को मानसिक तनाव से लड़ने में सहायक हो सकता है। समय प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण। सही समय प्रबंधन और यथावर्दी लक्ष्य तय करके तनाव को कम किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि मानसिक रोगों के कारण हृदय रोग और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मानसिक रोगों के कारण पुराने शारीरिक रोग गंभीर रोगों का रूप ले लेते हैं। अगर सही समय पर मानसिक रोगों की पहचान कर उनका उपचार ना किया जाए तो वे मनुष्य को पतन की ओर ही लेकर जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने के कारण। दुनिया में ऐसे कई सारे कारण हैं जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, जिनसे व्यक्ति हमेशा तनाव भरी जिंदगी जीता है, जिसमें कई सारे कारण शामिल हैं, जैसे कि पारिवारिक मतभेद, सामाजिक मतभेद, सांस्कृतिक मतभेद, अपने किसी मुश्किल काम का तनाव और ऐसे ही कई सारे कारण हैं जो अपने मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने में योगदान देते हैं। अपना तनाव मुक्त और निरोगी जीवन के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसलिए जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो व्यक्ति बाकी व्यक्तियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनती और आत्मविश्वास होता है। इसलिए वो हमेशा किसी भी मुसीबतों का सामना पूरी हिम्मत से करता है, ना कि मुसीबतों से डरकर भागता है। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह भी अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धन्यवाद।
1: तो संगवारी मन एबे आमी सुनते रहूं मानसिक स्वास्थ्य जो बारे में वार्ता। मानसिक स्वास्थ्य

0: महान गणितज्ञ आर्यभट्ट कहला से
1: हाँ
0: हुनमन जो ये योगदान बिना आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान जो कल्पना करते खूबे मुश्किल आए।
1: सबले बड़े महासागर प्रशांत महासागर आए, ये दुनिया जो सबले गहरा महासागर आए, ये इत्रो विशाल आसे कि एथा पृथ्वी जो सपाय महादेव मन डुबू जाऊ सको।
0: मानव शरीर जो सबले बड़े मजबूत हड्डी फीमर आए,
1: हाँ।
0: एके जांग जो हड्डी बले बोलुआ।
1: अंतरिक्ष ने जातो बीता पहल जानवर जीवित प्राणी गोटो कुत्या आए, जेचो नाव आए लाइका, एके 1957 ने सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 2 मिशन चो तहत भेजू रहो।
0: शुक्र ग्रह के भोर तारा नाले सांस तारा बले बोलुआ। कसन बोलो ने सबले अधिक चमकतो बीती ग्रह यही है।
1: हाँ।
0: ए तो रली सामान्य ज्ञान चो गोट बात धर्म।
1: हाँ।
0: गीत मन के सुनते रलो ने कितरो हरिक लागे से ने।
1: हाँ।
0: तो फिर ले सुनु गीत मन के
1: फिल्म आए सनम वेवफाले, ये गीत फिल्म चो सबले यादगार गीत आए,
0: जेथा चूड़ी और कंगन चो माध्यम ले प्रेमिका अपलो मन चो भावना के व्यक्त करे से।
1: स्वरा लता मंगेशकर चो, गीतकार सावन कुमार आउ संगीतकार महेश किशोर। तो या संगवारी मन सुनू ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: अदाय सुनो गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं ले, सरदिला से आशा भोसले और मोहम्मद रफी, गीतकार आद मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार आद आर डी बर्मन। तो संगवारी मन, या सुनो ये गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: संगवारी मन अदाय सुनु फिल्म लम्हे ले। ये गीत ने स्वर दिला से लता मंगेशकर और इला अरुण, गीतकार आत आनंद बख्शी और संगीतकार आत शिवहरी। तो संगवारी मन या सुनो ये गीत के।

0: हाँ तो संगवारी मन, अमी आशा करो से तुम्ही सपाय के आज जो युवाणी कार्यक्रम पसंद दिली होती।
1: अदाय आम चो जातो समया बले होली, तो आम के दिया विदा। मैं आए धर्मराज पटेल
0: और मैं गीता ठाकुर।
1: शुभ
0: संध्या
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में

0: जयपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी रेपुरी छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री है अपन काफिला मा करीन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल है 14 ठिन खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत मा बढ़वार ला दे है मंजूरी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करिस घोषित। अब समाचार विस्तार ले। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकार मन है ईंधन बचत उपाय तेज कर दे है। वैश्विक ईंधन कीमत में बढ़वार के सेती प्रधानमंत्री है हाले में घरेलू दौरा पर अपन काफिला के आकार छोटा कर दे है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के जरूरी सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रही। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गलो अपन काफिला के आकार घटा के आधा ले कमती कर एति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका हा अपन आधिकारिक काफिला मा चलैया गाड़ी के संख्या कमती करीन है। श्री डेका हा आम लोगन ले मितव्ययता बरते के आह्वान करीन है। राज्यपाल हा कहिन की सामूहिक जिम्मेवारी और संसाधन के संतुलित उपयोग ले ही हमर देश भविष्य के चुनौती के प्रभावी ढंग ले सामना कर सकी। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो प्रदेशवासी मन ले ईंधन और संसाधन के कमती उपयोग करे के अपील करीन है। उमन किहिन की सबो सरकारी गाड़ी ला चरणबद्ध तरीका ले इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के काम शुरू करे जाही। मुख्यमंत्री है बतैन की उमन अपन काफिला मा गाड़ी के संख्या मा कटौती करे के फैसला ली ही। केंद्रीय मंत्रिमंडल है विपणन सीजन 2026-27 बर 14 ठिन खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत में बढ़वार ला मंजूरी दे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठका के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव है कहिन की सरकार है किसान मन ला उखर उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे बर खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दे है। उमन कहिन की खरीफ सीजन पर किसान मन ला अनुमानित 2,60,000 करोड़ रूपया के भुगतान करे जाही। उमन यहू कहिन की ये सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन ज्यादा के फसल बिसाए जाही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा घोषित कर दे है। एसओ CBSE के कक्षा 12वीं के विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषय परीक्षा 17 फरवरी ले 10 अप्रैल तक रखे गई रही। CBSE है बताया है कि 17,68,000 ले ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में संघरीन जेमा 15,07,000 ले ज्यादा विद्यार्थी पास हुए हैं। एसओ के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपन परिणाम CBSE के आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप में देख सकत हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय CBSE 12वीं बोर्ड के परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी मन ला बधाई और शुभकामना दीन है। केंद्र सरकार है सोना और आने कीमती धातु में आयात शुल्क बढ़ा दे है जोन आज ले प्रभावी हो गए है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय है कहे है कि सोना और चांदी में 5% और प्लेटिनम में 5.4% आयात शुल्क लगी। एकर पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया में चलत संकट ला देखत लोगन ले सोना बिसाले बांचे के अपील करे रही। रायपुर के प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के बैठका रखेगी। बैठका में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कतकुन बड़का अधिकारी मौजूद रहीन। बैठका में नक्सल उन्मूलन में प्रस्ताव पारित करेगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कोती ले आवास और पर्यावरण विभाग के सहायक संचालक योजना के 21 पद में भर्ती पर अंतिम चयन परिणाम जारी कर दे गए है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हकीन कि ये भर्ती सिर्फ खाली पद के पूर्ति नो है भलुक छत्तीसगढ़ के सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और दूरदर्शी शहरी विकास के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। बालोद जिला में मिट्टी धसे ले 3 झीन मजदूर के दबके मौत हो गए, जेमा एक महिला घरों शामिल है। ये हादसा काली संझा दल्ली राजहरा नगर में वो बेरा हुई जब मजदूर बीएसपी के सीवरेज पाइप बिछाए बर खुदाई करत रही ने। इस दौरान औचक माटी के धसे ले वहां काम करत मजदूर मलबा में दबके उखर मौत हो गए। घटना के बाद गुस्साए लोगन मन आरोप लगाए हैं कि काम के दौरान सुरक्षा के बने व्यवस्था नहीं करेगे रही। प्रशासन मामला के जांच शुरू कर दे है और दोषी मन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे के भरोसा देवाइन है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक परिवार के 4 जन के मौत के मामला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मृतक के परिजन मल्ला 5-5 लाख रुपया के सहायता राशि देके घोषणा करी है। ये रकम शासन के नियम के तहत मिलैया 4-4 लाख रुपया के सहायता रकम ले अलग हो ही। घटना की जानकारी मिले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मौका में पहुंच के वहां के स्थिति ला देखी। लोक शिक्षण संचालनालय है महासमुंद जिला के भंवरपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष समेत 5 जिन कर्मचारी मल्ला निलंबित कर दे हैं। ये सब ऊपर परीक्षा संचालन में कोताही बरते के आरोप है। खबर के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जांच नियम के उल्लंघन पाएगी, जेकर से एक छात्र डिजिटल कैमरा लेके परीक्षा कक्ष के भीतरी प्रवेश करे में सफल रही। छात्र परीक्षा कक्ष के भीतरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में प्रसारित कर दी। निलंबन के बिरा ये सबो के मुख्यालय महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रही। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पद के प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई के होए के घोषणा करे है। ये परीक्षा इतवार के बिहनिया 10 बजे ले मंझनिया 12 बजे तक राज्य के सबो 33 जिला में होही। ये पद पर 1,37,000 ले ज्यादा अर्जी मिले रही। दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण के बाद 63,342 उम्मीदवार परीक्षा पर पात्र पाए गए हैं। प्रवेश पत्र परीक्षा ले 15 दिन पहली आयोग के वेबसाइट में जारी करे जाही। बीजापुर जिला में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले लुका के राखे करीबन 65,65 लाख रुपया नकदी समेत बड़ मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक जिनिस बरामद करे हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव बतायें कि अभी तक जिला में 7 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नगद रकम के संगे संग 8 किलो 200 ग्राम सोना घलो बरामद करे जा चुके है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। ये मैच संध्या 7:30 बजे ले शुरू होही। एकर पहली 10 मई के नवा रायपुर में खेले गए एकाने मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुंबई इंडियन ला हराए रही। आकाशवाणी रायपुर कोतिले आज सोमना स्वाभिमान पर्व में विशेष कार्यक्रम प्रसारित करे जाही। प्रादेशिक समाचार एकांश कोतिले तैयार ये कार्यक्रम के प्रसारण आज रतिया 8:15 ले होही। इला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र रिले करही। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर नामांकन के काम चलत है। ये पुरस्कार खातिर 5 ले 18 बच्चर आयु वर्ग के लड़का 31 जुलाई तक अर्जी दे सकत है। महिला और बाल विकास विभाग ले मिले जानकारी के मुताबिक अर्जी सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ले ऑनलाइन मंजूर करे जाही। राज्य शासन प्रदेश के प्रतिभाशाली लड़का मन ले ज्यादा संख्या में अर्जी करे के अपील करी ने। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर बच्चर राष्ट्रपति कोती ले वो लड़का मन ला दे जाते जौन मन आने आने क्षेत्र में बने प्रदर्शन करके देश के गौरव बढ़ाए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार बतायें कि एनसीईआरटी और सीबीएसई मिलके 3री ले 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी मन पर कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आधारित एक थी नवा पाठ्यक्रम शुरू करे है। उमन बतायें कि शिक्षक मन ला गर्मी की छुट्टी के दौरान प्रशिक्षण दे जाही और छुट्टी सिराए के बाद स्कूल खुले में ये विषय के पढ़ाई शुरू हो जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष ले पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट ला देखत प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री अपन काफिला में करीन कटौती। केंद्रीय मंत्रिमंडल

0: 14 खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन कीमत मा बढ़वार ला दे हे मंजूरी। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हा आज कक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजा करिस घोषित। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इही सिरावत है। जय जोहार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। सूर्यपुष्पस्य बीजस्य सर्वाधिक वृद्धिः, तदनन्तरं कर्पासतिलयोः च। तमिलनाडुराज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे TVK सर्वकारेण राज्य विधानसभायां सहज बहुमतेन शक्ति परीक्षणं विजितम्। एन रंगासामी पंचमं वारं पुडुचेरी राज्यस्य कार्यकालाय मुख्यमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवान्। अपि च CBSE द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक वर्गस्य द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः घोषिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रक्षा समूहस्य SPG प्रोटोकॉल इत्यस्यान्तर्गतं सर्वाः आवश्यकाः सुरक्षा व्यवस्थाः अवलम्ब्य सद्यः एव आन्तरिक यात्रासु स्वस्य यात्रा वाहनानां संख्या न्यूनीकृतवान्। सूत्रानुसारं प्रधानमन्त्रिणः यात्रा वाहनानां संख्यायां न्यूनीकरणं तस्य सद्यः गुजरातस्य असम राज्यस्य च भ्रमणकाले कार्यान्वितम्। आर्थिक स्थिरतायै योगदानाय नागरिकान् प्रति प्रधानमन्त्रिणः सप्ताग्रहाणाम् अनुरूपम् एतदभवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आग्रहानन्तरं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य दिल्ल्याः च मुख्यमन्त्रिभिः विधायकैः जनप्रतिनिधिभिः च आधिकारिक यानानां संख्या 50% यावत् न्यूनीकर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रां करिष्यति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः संसूचितवान् यत् पंच देशानां यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्स्यति, यत्र हि सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। सः अवदत् यत् उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकारे अपि च परस्पर हित सम्बद्धेषु क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य 98-19 शततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भारते कृत परमाणु परीक्षणस्य स्मरणं कृतम्। सामाजिक माध्यमेषु एकं संस्कृत सुभाषितं विनिमयी कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतत् परमाणु परीक्षणं देशस्य अविचल संकल्पं प्रदर्शयति। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य परीक्षणस्य अनन्तरं सम्पूर्णेन विश्वेन भारतं सम्पीडितम्, परञ्च देशेन सिद्धीकृतं यत् कापि शक्तिः भारतम् अवरोद्धुं न शक्नोति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विपणन सत्रस्य 27-2017 वर्षयोः कृते चतुर्दश खरीफ इति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिककालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000-2,00,000 कोटिरूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एमएसपी मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धे सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणाम् अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। 44,00,000 विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रान्तरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 आसनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चण्डीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः, तीव्र वायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा 12 कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा 12 कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
3: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।
4: सेवा जोहार, ईद आकाशवाणी जगदलपुर आंध गोंडी ते समाचार बुलेटिन तसंग नना माखनलाल सोरी। नेणता हेडलाइंस। गुजरात ते फेरे पंडले सोमनाथ मंदिर ता 75 वर्षा पूरे मायना बेराते सोमनाथ अमृत महोत्सव ता जलसा कीले आत्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतुर शामिल। केंद्र सरकार विकसित भारत जी रामजी अधिनियम ता क्रियान्वयन इतेक लागू किया ना उन्द जुलाई ले आयाल इदेना अधिसूचना आता जारी। प्रदेश ते आयना नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत ता आम और उपचुनाव ते नामांकन पत्र निहान तबूतो आता मूर 18 मई तक निहान परनूर नामांकन। बस्तर विकास प्राधिकरण ता उपाध्यक्ष लता उसेंडी चिलपुटी नारते 9 करोड़ रुपया ले आगेरता विकास बूतो ता कीता नेली सेवा। इदेक समाचार ओंडाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्तोर की सोमनाथ ना मंदिर पक्की आस्था दिव्यता और देशुमता शाश्वत आत्माता चीना आंद। गुजरात ते सोमनाथ अमृत महोत्सव तुन संबोधित किसोक तिरुमाल मोदी इत्तुर की सोमनाथ अमृत तिहार काली ऊंद जुन्ना तिहार आयो बल्कि ईद वायना ऊंद हजारिंग वर्षा तक देशुम तुन हरी तोहाल। और केत्तोर की सोमनाथ माने कुन ईद सुरता की हालता की बदेगला देश तभे मजबूती ले नित्ति मनता जब तक आपुना जड़ी ले जुड़े मासी मनता। ईद ले मुन्ने प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव मंदिर ते अलगे महापूजा की तूर और सोमनाथ मंदिर ता कोडीते कुंभ ता अभिषेक इतेक एर तरगह न गला की तूर। मंदिर ता इतिहास ते पहली बेरा कोडीते 11 तीर्थ जागा ता ततले एर क्ले एर तरगी ले आत्ता। तिरुमाल मोदी झंडी परिहना नेंगते गला शामिल आत्तूर। इदे नडुम वायुसेना एयर शो गला कीता। इगा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम सोमनाथ परो मनमोहक करतब गला तोहत। हेलीकॉप्टर ले पुंगार्क हिडिकतूर इदे न परेक तिरुमाल मोदी विशेष प्रदर्शनी ता अवलोकन गला कीतूर। सोमनाथ मंदिर ता 75 वर्ष पूरे मायना बेराते छत्तीसगढ़ ता अलगे अलग पुरातात्विक और जुन्ना मंदिर ते सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ता कार्यक्रम आतूं। यू कार्यक्रम ते मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोर शामिल आतूर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर ता महादेव घाट ते मंदे हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर ते आयले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ते अवलेर और जनप्रतिनिधि और भक्त लोरा संग गुजरात ते मनले सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअली जुड़े मासी प्रधानमंत्री न संबोधन केंच तूर। इत बेरा मुख्यमंत्री तूर की नेण ता दिया ते 75 वर्षा मुन्ने सोमनाथ मंदिर ता फेरे पंडा न बूतो मूर आयले और इदे जूना बेरा ता देश मेटे स्वाभिमान पर्व ता रूप ते मना कीन तोर। और के तोर की सोमनाथ मंदिर परो अच्छाए बेरा बहिरले अवलेर लड़ई के वालोरकना अतिकेडा हमला कीले तबले गला ईद मंदिर ता आस्था और परंपरा माई ही परवोर। त्रुमाल साई तोर की उन्दबेरा लड़ाई तबेरा मंदिर तोर पूजार्क और भक्त लोर मंदिर तुन तासोर और आपुना जीवतुन हितूर। मुख्यमंत्री इतूर की ओना ईद त्याग नेण ता इतिहास ते सोन्ना ता रूप ते कोटले आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया संकेट ता नडुम जनता तुन उन्द वर्षा तक सोन्ना असना गार्डनी ता कपत कम किया ना और विदेशी रुपया मुद्रा पिसना तक आजे इत्तोर। हैदराबाद ते 10 मई दिया आयले उन समारोह ते त्रुमाल मोदी लोन ते मंजीबूतो किया ना व्यवस्था तुन फेरे मूर किया ना पल्लो अपील की तोर। प्रधानमंत्री ने ईद अपील ईदान ता बेरा वाता की ईद टेम ते पश्चिम एशिया ते बढ़े मायले तनाव और होमुर्ज जल डमरू मध्यता हेड़े लड़ाई ता कारण ते गुलाय दुनिया ते कच्चा नीता कीमत $70 प्रति बैरल ले बढ़े मास $926 प्रति बैरल आता। प्रधानमंत्री इवे सब कुन हुड़सोक अपुना मती मदूर हिसाब तले खर्चा तुन कम कीसोक नीक ना खपोत कम किया ना पल्लो वहतूर। प्रधानमंत्री जनता ते इंदना नीक ता खपत कम कीसोक किसान लोर कुन विदेश ले ततले रासायनिक खतु तुन गला कम हिये का ना आह्वान की तोर। इदे नडुम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इतोर की पश्चिम एशिया ता लड़ाई ता हरेक गुलाय दुनिया ते आनता

मावा देश और राज्य ते गला असर दिसालता। हंगाड़े प्रधानमंत्री देसुम तोर मानिक नकाजे नकाय नेला सलाह हितोर। केंद्रीय गृह मंत्री वायना बेरते उषा आउ हल्ले त स्थिति ते देसुम तुन पिसाना त तैयारी तुन हुड़ सोक समीक्षा बैठक कितुर। नई दिल्ली ते हत्ता 10 मई दिया उन्द उच्च स्तरीय बैठक ते त्रुमाल शाह सरकारी एजेंसी न तैयारी त आकलन किसी मुन्ने पुट्टा न चेतावनी प्रणाली संसाधन त तैनाती और अंतर एजेंसी न नडुम समन्वय त समीक्षा बैठक कितुर। गृह मंत्री देश ते चले मायले दीर्घकालीन उषा निवारण उपाय त समीक्षा की शोक ढांचागत परियोजना न पिछाना नंदी प्रबंधन पहल और पुरुड़ बतरता वैज्ञानिक पूर्वानुमान शामिल मत्ता। बैठक ते जन जागरूकता माल मत्ताक न नुकसान कम किया न आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारी न पर्याप्त भंडारण किया न बारे गला चर्चा कितुर। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम तक क्रियान्वयन तकाजे अधिसूचना जारी कीता। ईद अधिनियम ईद वर्षा 1 जुलाई ले लागू आयाल। देश मेटे पूर्णांग ढांचा तुन लागू किया नकाजे ईद वर्षा ता वितीते 95,692 करोड़ रुपया तक प्रावधान किले आता। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम त उद्देश्य उन्द वित्तीय वर्षा ते 100 दिया ता रोजगार गारंटी तुन विड़िची 1,925 दिनांक ता कीले आता। इदेना संगे ईद अधिनियम परो बेराते रोजी ता संग पारदर्शी औ जवाबदेही ते भुगतान परो जोर हीले आता। यदि निर्धारित कीले बेराते बोने रोजी पुटवेक ईद नियम तलपा और कुन बेरोजगारी भत्ता हिया नता प्रावधान मनता। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम नाटेना अर्थव्यवस्था तुन मजबूत किसी रोजीता पुना मौका और नाटेता विकास बूतो ते लाभ हियाल। आस्क बूतो केवालकना भागीदारी प्रोत्साहित किया न काजे ईद अधिनियम बूतो ठानाते पिलांग न देखभाल त व्यवस्था गला प्रावधान मनता। 5 वर्ष ले कम उम्र त पिलांग न देखभाल काजे उन आस्क बूतो केवालकना ड्यूटी पिलांग कुन हुड़ा न काजे गला इरले आता। प्रदेश ते आयाना नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत न आम और उपचुनाव तकाजे नामांकन पत्र निहना बूतो 11 मई ले मुहर आता। 18 मई तक इव चले मायानु। नामांकन पत्र न जांच 19 मई ते की आयाल। उम्मीदवार लोग 21 मई तक अपना परोय मलिह परानूर। मतदान उन्दी चरण ते 1 जून दिया आयाल। अगाय परिणाम 4 जून दिया घोषित आयाल। पुनर्टपियान की नगरी निकाय ते अध्यक्ष पद 5 और पार्षद पद 77 तसंगे 82 पद नकाजे चुनाव आयानु। अगाय त्रिस्तरीय पंचायत ते जनपद पंचायत सदस्य 10 पद सरपंच पद 82 और पंच ना 1,936 संग कुल 1,228 पद नकाजे चुनाव आयाल। नगरी प्रशासन और विकास विभाग सपाई निकाय कुन उन्दना एर संकट तुन गुची है ना निर्देश हिता। विभाग सपाई निकाय ते टेंडा नल बोरवेल और एयर सोतान कुन उन्दी सप्ताह ते जांच की शोक मरम्मत किया ना निर्देश हिता। संगे पाइपलाइन किता लीकेज और उरिंगले पाइप कुन तुरते सुधारे किया ना और गली ते हनले पाइपलाइन कुन हाउस सर्विस कनेक्शन कुन गुची है ना निर्देश गला हित तोर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अद्दी छुट्टी ते देशुम त सपाई स्कूल ते भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर कियाल। उन सप्ताह त ईद शिविर ते इगडा भाषा ते मूर करियाना शब्द न बारे वेहना वड़कना पर केंद्रित मंदाल। इदेना उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति त हर समावेशी और समान शिक्षा त पलो कुन विढ़ना आंद। प्रदेश ते ईद दिया लोन सूचीकरण और लोन कहना बूतो चले मानता। ईदे कड़ी ते कोंडानार जिला ते जनता कुन जनगणना त महत्व तुन वेहना काजे LED वेन और नाट तोहची इवेहना प्रचार प्रसार की इंतोर। ईद बेरा वीडियो ऑडियो तोहची केंजिहची जनगणना त प्रक्रिया उद्देश्य और जनता त भागीदारी तुन वेहाल तोर। पुनर्टपियान की उन महीले मूर आयले लोन सूचीकरण बूतोता लपा प्रगड़क लोर लोन पिची आवसी आवासी गैर आवासी और अदेना स्थिति उपयोग और बुनियादी सुविधा उंडाना एयर पेलाना कोली बिजली अट्टाना गैस इंटरनेट और संचार व्यवस्था ले संबंधित जानकारी जुहा कीन तोर। ईद बूतो 30 मई तक चले मायाल। बस्तर विकास प्राधिकरण तो उपाध्यक्ष और कोंडानार विधायक लता उसेंडी हत्ता 9 मई दिया चिलपुट्टी नार ते 9 करोड़ रुपया ले आगेरता विकास बूतोता नेली सेवा कीता। ईद बेरा चिलपुट्टी ते आयले सम्मान समारोह ते 12 मेधावी होशियार पढ़े माइनर पीलांकुन प्रशस्ति पत्र ही सी सम्मानित कीता। कार्यक्रम तुन संबोधित किशोक लता उसेंडी

0: मजगूत किया ना उद्देश्य ले 11 मई दिया माड़ मैत्री अभियान ता मोर कीत था। नारायणपुर ता हाई स्कूल मैदान ते आयले कार्यक्रम ते पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़ियाल वहतूर की ईद अभियान ता उद्देश्य नक्सल प्रभावित लंकाकोस लापित और लयोर नाटेनोर कुन शिक्षा खेल स्वास्थ्य रोजगार और सामाजिक बूतों ले जोड़े किया ना मनता। कार्यक्रम ते हमर फिट नारायणपुर ता लप्पा ओंडाले जुम्बा एंदाना गला आता। ईद बेरा डायल 112 वाहन सेवा माड़ मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम कुन हरी झंडी तोह ची रवाना की तूर। नाटेनोर और पुलिस ता नडुम विश्वास सुरक्षा और सहयोग ता भावना तुन और आगेर मजबूत किया ना उद्देश्य ले बीजापुर जिला ता उड़ता मल्ला नारते मनवा पुलिस मनवा नाटी अभियान तलप्पा जन संवाद और चलित थाना ता आयोजन मत्ता। कार्यक्रम ते पुलिस अधिकारी जवान लोर्क नाटेनोर्क न संग वर्कशॉप ओना समस्या कुन केंच तूर अगाय जन कल्याणकारी योजना न बारे गला वह तूर। पुलिस अधिकारी लोर पीलांग कुन रोजे दिया स्कूल और आंगनवाड़ी लोहा न बारे इतूर। कार्यक्रम ते नाटेनोर कुन रोजे दिया बौरे किया न जाहक गला तूस्तूर अगाय पीलांग कुन पाठ्य पुस्तकी और करसना जाहक गला हितूर। बीजापुर जिला ता मरार मेट्टा नारते गला मनवा पुलिस मनवा नाटी अभियान तलप सिविक एक्शन कार्यक्रम और चलित थाना ता आयोजन आता। ईद कार्यक्रम ते गोंड मेट्टा मर्रा मेट्टा पद मेट्टा धर्मा घोटपाल और बैल नार तोर नाटेनोर्क शामिल आतूर। ईद बेरा ते पुलिस जवान लोर नाटेनोर्क ले अपील की तूर की ओर जागता शांति और विकास काजे उन्दी सूलते मनीर नाटेनोर पुलिस प्रशासन पर विश्वास तोह चोक जागता शांति विकास और सुरक्षा व्यवस्था पाड़न काजे सहयोग किया न जुबान ही तोर। जगदलपुरा ते मनले अंतिया व्यवसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र टिकेडा अनुसूचित जनजाति वर्ग ता आसकुन कोसाले नूल पंडान काजे रंड महीना ता टेरलिंग हिंता टेरलिंग पयाना आस्क नार 14 मई दिया तक कुम्हार पारा ते मनले केंद्र ते आवेदन की परांता। आवेदन के वाल आसकुन पांचवी पास आयना जरूरी आंद यू आसकुन स्टाइपेंड तरूप ते 1,500 रुपया हर महीना पुटाल। मारले बेरा ते मदोल समाचार उन्द बेरा फेरे गुजरात ते फेरे पंडले सोमनाथ मंदिर ता 75 वर्ष पूरे मायना बेरा ते सोमनाथ अमृत महोत्सव ता आयोजन आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतूर शामिल केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी अधिनियम तुन उन्द जुलाई ले लागू किया ना ता जारी किया अधिसूचना। प्रदेश ते आयना नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत ता आम और उपचुनाव तक काजे नामांकन पत्र निहना बूतो आता मूर 18 मई तक निही परनूर नामांकन आकिंग। बस्तर विकास प्राधिकरण ता उपाध्यक्ष लता उसेंडी चिलपुटी नारते 9 करोड़ ले आगेर रुपया ता अचाय विकास बूतो ता कीता नेली सेवा। इदिन संगे गोंडी समाचार बुलेटिन ता ईद अंक इगाय माडल ता मी सोबेकुन सेवा जोहर।
1: अभी आप सुन रहे थे गोंडी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी का, ये जगदलपुर केंद्र है। कुछ ही देर में विज्ञापनों के बाद प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीवी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी अपने आधिकारिक काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री डेका ने आम जनता से भी मितव्ययता बरतने का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों से ईंधन संरक्षण और संसाधनों का संयमित उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू की जाएगी।
6: प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें, सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें, तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है। आने वाले समय में हम लोग ईवी पर विशेष जोर देंगे।
5: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस सीजन में 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट और उमंग ऐप पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित सेमिनार और समीक्षा बैठक में बताया कि यह व्यवस्था 1 जुलाई से देशभर में लागू की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा और पंचायत कार्यों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, समय पर भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण को मजबूती मिलेगी, जिससे गांवों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर हैं। रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा गया कि जनता ने विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। पार्टी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने मोदी गारंटी के कई प्रमुख वादे पूरे किए हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा बलों की भूमिका की सराहना की गई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित करने की घोषणा की है। ये परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य के सभी 33 जिलों में होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा से 15 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। इधर वन विभाग में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेज दी गई है। लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। इस बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवास और पर्यावरण विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक योजना के 21 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
7: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
5: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। ये हादसा कल शाम दल्ली राजहरा नगर में उस समय हुआ जब मजदूर BSP की सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मिट्टी के धंसने से वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के खपरी में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि शासन के नियमों के तहत दी जाने वाली 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखा गया करीब 65.5 लाख रुपए नकद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अब तक जिले में 7 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि के साथ ही 8 किलो 200 ग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा और उससे जुड़े आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई करते हुए रायगढ़ पुलिस ने एक संगठित सट्टा सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1.2 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि बरामद की है। साथ ही नोट गिनने की मशीन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री सहित 1.3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई है। आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्र रिले करेंगे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने सीएसएमसीएल में हुए ओवरटाइम भुगतान मामले में सीडीएल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट एन उदय राव को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 7 आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जा चुके हैं। उदय राव पर फील्ड संचालन में बिलिंग समन्वय और भुगतान की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। आरोप है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 के बीच ओवरटाइम बोनस 4 अतिरिक्त दिवस भुगतान और सर्विस चार्ज के रूप में मैन पावर एजेंसियों को लगभग 183 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। वहीं आज शाम राजधानी रायपुर सहित कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिली है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3% दर्ज की गई है। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर 3री से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आज बिलासपुर स्थित जिला और सत्र न्यायालय में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय ने महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केन्द्र के अध्यक्ष और सहायक केन्द्र अध्यक्ष सहित 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर परीक्षा संचालन में लापरवाही बरतने का आरोप है। महासमुंद जिले में महतारी वंदन योजना के तहत ई केवाईसी के एवज में हितग्राहियों से राशि मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी ब्लॉक कर दी गई है। बीजापुर जिले में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से नागरिकों को आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोंडागांव द्वारा कल 14 मई को कलेक्टोरेट परिसर स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की ईंधन बचत से संबंधित अपील के बाद प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों ने अपने काफिले के वाहनों की संख्या में कटौती की। सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि वीबी ग्राम जी विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए करीब 65.5 लाख रुपए नगद सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
8: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
10: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
9: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
10: 8700001-4242।
8: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम मिटकी, राम राम।
1: राम राम पंडकी, राम राम अमरलेश ने।
0: हो खूबे दिन ने भेट घाट।
1: हाँ ने
0: हो
1: आज काली का है कि बिया अभी अटिकाज बल माहौल है का इकाजे फिर।
0: हो आए आए लड्डू खातिर इस बिने
1: हाँ तो हम ही तो
0: ये
1: जुआर भेट हूँ ने।
0: हो
1: आले हम जो रेडियो सुन तो दादा दीदी मन के बल जुआर भेट हूँ।
0: आले
1: तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सपाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
0: मैं पंडकी,
1: आमी दोनों करूं से
0: राम
1: राम राम।
0: राम। और नानी नानी पिला मन के भूलख लीस।
1: नाई का हूं मन के फिर कहन भूल कहूं तने।
0: हाँ
1: तो रेडियो कटा कटा बसलो और सपाए नानी नानी पीला मन के बल हमें दोनों चो बाटले खूबे खूबे मया और चुमा बले
0: चुमा।
1: ने।
0: हाँ हाँ का
1: हाँ
0: ए मिटकी,
1: हाँ
0: आजकल ये गर्मी छुट्टी माँ बीती बोले होली से ने।
1: हाँ पीला मन चे स्कूल मन बल छुट्टी होली से ने।
0: हो
1: पीला मन चे स्कूल छुट्टी होली से और रसने का है कि छुट्टी संग सगे बे बिया टीका बल खूबे होए से।
0: बिया टीका हो ऐसे बल्ले हुन बिया घर घरे बोलते रहले हो है।
1: हाँ नहीं हो का मातर का आया कि एबे दक्षी सामचो बिया टिका थाने जसन कि हम ये जानू कि हम चो जे बस्तर बल्लो ने हम चो काय होए से हम चो जोन बास कला बल सोत हुन चो
0: हो
1: ले काय होए से हुन चो ज्यादा खूब
0: सिक्स होत
1: सिख
0: नया
1: सोत
0: नया
1: लोग
0: बीती मन
1: और
0: ने
1: हुन चीले हम चो बस्तर के ज्यादा जानू
0: ज्यादा
1: सपाई
0: जान सोत
1: लोग।
0: हो हुन।
1: हाँ तो ये भी काय होए से हम चो जोन बिया घर घर होए से तो काय होए सजा तो काजे
0: हाँ
1: जसन बांस मंचो खूबे खूबे उपयोग कर
0: उपयोग
1: सोत ने।
0: कर सोत का मान तर मुई हुन गोट के बले से कि हुन भैया
1: हाँ
0: टीका घरे गले इन पीला मन दख सोत बे
1: हाँ
0: तो हुन मन के बना तो बल सीख तो रहे।
1: हाँ
0: जैसे
1: सत्य
0: छुट्टी होले
1: बल्लेस।
0: ने फोका टीवी मोबाइल दखुक नहीं बस तो रहे, हुन बुता मन के बल सीख तो रहा है घरे सजा तो काम दे हुआ है। जैसे कि हुन है टांग तो बीती आए संगा तो बीती ना आए हुन जो आया मन बल हुन मन के बावर भाई ने।
1: हाँ काय हो से कि जसन हम चो ये जो बांस कला बल तो बीती आई नहीं एक आया है हम चो पीढ़ी ले चलते ऐसे नहीं।
0: हो
1: और ए भी काया कि एक जो दखुन भाती जसन ए बांस ले हम चो खूबे सामान बने से जसन कि घर ने सजा तो सामान बल होली
0: हो
1: सोफा होली पलंग होली
0: हाँ
1: नहले बसुन खातो काजी
0: खातो
1: होली
0: काजे
1: पीड़ा
0: होली
1: माची होली नहले बिया घर घरे हुन काय बलुआ था हुन टाकना टुकरा बल
0: टुकरा
1: लो बीती मन।
0: हो
1: हाँ हुन बीती मन
0: तो
1: होली ये सपाय काय हो से हुनी बांस लेची बने
0: बने से।
1: से ने। और
0: हाँ
1: काय है कि ये सब ले हुन बना ले काय है कि और हुन सब के हामी आप लो मतलब उपयोग में आन ले काय हो से कि हुन अच्छा बल लागे से। और काय है कि जैसन हम चो जन दादा दीदी मन एक मन के बनाए सोत हुन मन काज बोल खिंडिक लाभ हो से
0: लाभ हुई
1: ने।
0: से। और असन आए दक ए मन के तो आज काली चो पीला मन नहीं जानो तो
1: हाँ
0: आम चो जो जान लो दादा मन आत नहीं हुन मन का है आम चो आप लोग घर पीला मन के सीखा तो रहे
1: हाँ सिखा
0: ने।
1: तो रहा सत्य
0: हाँ
1: बल्लीस
0: हुन
1: काया
0: मन के
1: कि
0: नहीं भूलक तो रहे।
1: हाँ जसन कि एबे काया कि कोनी खूबे कम लोग जान सोत ने एक के बना तो काजे।
0: हो
1: तो उनके काया एक के काया कि बना लोग बना तो काजे जसन कि जो ने भी हम चो सियान सजन मन जानो थुन मन काया है कि आप लोग घर चो पीला मन होली नले संग संग लोग चो
0: हो
1: मतलब
0: उन
1: पीला
0: आरा
1: मन
0: पारा
1: आसोत
0: चो
1: आरा पारत
0: हो
1: लोग हुन मन के काया कि पीला मन के बले सिखा तो रहा कि जो ने हम चो जो ने कला ये आई नी लुप्त नहीं हो
0: लुप्त
1: बोलून
0: नहीं
1: ने।
0: हो उन मन के भूलक तो नो है
1: हाँ
0: उनके सब फाय के बस आउन सीखा तो रहे
1: हाँ
0: ने।
1: आजकल जसन की दक्षी जसन हामी चित्रकूट बुलुक बल जाऊं से नहीं हुन लग
0: हो
1: मंडा उरसोत काय
0: हो
1: काय
0: कितरो
1: दुनिया।
0: नगद कितरो सुंदर सुंदर बीती
1: हाँ
0: मन।
1: बनाउन बनाउन संगा उरसोत और हुन मन के काय होय से कि हामी घरे सजा ले काय सुंदर बल देखा
0: दखे
1: दे
0: से
1: से
0: हुन के
1: ने।
0: फिर बना तो सीख तो रहे कहे ने।
1: हाँ और
0: हो
1: काय से हुन के आनी हामी घरे आनुन भाती जसन के घेनु से बल जो जन हम से दादा दीदी मन बिकसोत हुन मन के बल लाभ होय से
0: लाभ
1: ने।
0: होए से।
1: और
0: हो
1: काय होय से कि हुन मन जितलो ज्यादा बिक दे और हुन मन ले हामी जितलो ज्यादा घेनु दे हुन मन के बल बिक बना तो काजे हरिक लागे दे
0: लागे दे इथे
1: ने।
0: इथाय चो कला इथाय रहो ने।
1: हाँ हाँ तो जसन की ए बीती ज्ञान दिहान चो गोट तो होली ने पंडकी। तो
0: हो
1: असने
0: मिटकी।
1: आम चो लगे जहाला मन बला से अले जहाला मन के बल अमराउन दू हम चो दादा दीदी मन लग।
0: अले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बना तो कंपनी अरु घेन तो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे एचे संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मने काही बदलाव नहीं होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम GST दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
5: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
6: GST काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सीट तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडो 18% टैक्स की सीट तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्नीटा लेकिन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का न गाड़ी 1% GST मौला तेने दोर किता अदेन के अव सोबेड कम टैक्स ता गाड़ी बने मास मंता।
2: एक मजबूत घर
0: हाँ तो मिटकी
1: हाँ
0: ए गोटमन तो होली सुन लू ने
1: हाँ
0: और हम चो लगे आज आसे कविता पाठ
1: हाँ काया के दिन हिसाब ने हमी रोजे धरू ने मुरुआ ने
0: हाँ।
1: तो असने आज दिन आए बुधवार ने तो आज दिन हिसाब ले हमी आन लू से कविता पाठ
0: हाँ।
1: तो वाले ये कविता पाठ मन के बले सुनू और हम चे दादा दीदी मन के बले सुनाऊ
0: हाँ।
1: और ये कविता के सांगला से हम के डालेश्वरी पांडे आले फिर सुनू ये कविता पाठ के
7: बस्तर चो गोट बात तुम के काय सांगू आए संगात बस्तर चो गोट बात तुम के काय सांगू आए संगात सोना आसन दिन चांदी असन रात सोना आसन दिन चांदी असन रात बस्तर चो गोठ बात तुमके काय सांगू आए संगात नोन मिरी संगे आमचो बासी भात नोन मिरी संगे आमचो बासी भात चापड़ा चटनी संगे मंडिया पेचो सुवाद काम बुता करूं से मिसुन काम बुता करूं से मिसुन आमचो खेत खार जो लगे दखले हुन लगे दंते सरी आया चो छतर छाया से जतरा बाजार मोहरी बाजा चौपाड़ बस्तर चो गोठ बात तुमके काय सांगू आए संगात केंदू पतर टूटा तो राय महू बेच तो राय केंदू पतर टूटा तो राय महू बेच तो राय सरगी चौफांदा काय सुंदर जीवना चले से दादा रान बन संगे जीवना करून आप लो पुरखती के नाम धरून चले से आमचो जीवना संसार बरन बरन चो तिहार बस्तर चो गोठ बात तुमके काय सांगू आए संगात सोना आसन दिन चांदी जसन रात बस्तर चो गोठ बात जगदलपुर चो गोंचा कुंडा कोटने दस रहा बस्तर चो काचन गांधी गुप्तेसर चो महादेव बाबा जगदलपुर चो गोंचा कुंडा कोटने दस रहा बस्तर चो काचन गांधी गुप्तेसर चो महादेव बाबा चितरकूट पानी चो धार डोंगरी घाटी बैला डीला चो पहाड़ इंद्रावती बहे से कितरो सुंदर बस्तर चो महिमा अपार बस्तर चो महिमा अपार बस्तर चो गोठ बात तुमके काय सांगू आए संगात सोना आसन दिन चांदी जसन रात बस्तर चो गोठ बात।

0: हाँ तो पंड की
1: ओए मिटकी
0: काश रशिया ये कविता पाठ के हमें सुनते रहो ने।
1: हो का फिर मुक्नी सुन ले सुनुक सुनुक माँ भाई से आउट
0: हाँ काय हो ऐसे के था हम चो बस्तर चो बारे में काय सुंदर सपाय गोट मन के सांग तरला ने।
1: हो
0: और काय हो ऐसे हम चो बस्तर का जी हम जितलो गोट बलू नेल कितली कविता लिखू नेल पाठ लिखू सपाय कम हो ऐसे ने। हम चो बस्तर आय चीतला सुंदर।
1: सुंदर
0: तो असनी हम चो लगे गोटो गीत बलिया से ने
1: हाँ
0: आले गीत मन के बल हम चो दादा दीदी मन लगे अमराऊ
1: आले
0: फेल।
1: आले झपके सुनू।

0: तो मिटकी
1: हाँ
0: ए लखेश्वर खुदराम और हनुमंचो संगवारी मंचो गायलो गीत के तो सुन लो
1: नहीं हाँ काहे रसिया गीत के मन हम के सुनाते रहला
0: नहीं।
1: नहीं
0: हाँ,
1: लेकिन मैं बोलते रहले पंड की
0: हाँ
1: काय हो ऐसे कि हम चो घड़ी बार देख ले हम चो जातो समिया बल हो ऐसे ने
0: हो
1: काय कि समिया ने एवरले समिया ने जाओ बल लागे से तो आले मैं मोड़ा गड़रा के शकलें दे तो
0: आले
1: फिर विदा धर
0: आले तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सफाए गांवकारी दादा दीदी सियान सजन संगवारी मन के मैं पंडकी
1: और मैं मिटकी
0: आमी दोनों करो से
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव।

0: हाँ तो जुहार पंडकी, जुहार
1: जुहार मिटकी जुहार।
0: अमरलीस ने।
1: ओ काय फिर।
0: तो फिर असने बस्त आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सपाय गांव करी दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
1: मैं पंडकी
0: आमी दोनों करूं से जुहार।
1: जुहार।
0: तो पंडकी
1: दादा दीदी मन संग बल झटके भेंट कर ली साजी ने।
0: हाँ काहे वैसे कि माता चुचाए दादा दीदी मन संग ची भेंट कर लेनी हो ने। आमचो रेडियो सुन तो काजे आमचो पीला मन बले आमचो
1: टाकला सोत
0: टाकला सो
1: ने।
0: थो। तो काहे वैसे हुन सपाए पीला मन के बल काहे वैसे हम के मया
1: सुरता
0: करुक
1: करुक
0: लागे
1: लागे
0: से।
1: दे।
0: हाँ
1: भुलक लेनी होई हुन मन के।
0: तो असने रेडियो कटा कटा बसलो सपाए नानी नानी पीला मन के बल हमें दोनों चो बाटले
1: खुबे
0: खुबे खुबे
1: खुबे
0: मया।
1: मया।
0: तो पंडकी
1: हाँ मिटकी सांग।
0: जसन की हामी तो जानू ने कि हमचो माई मूर बल्लो बीती काय हो से कि हमचो खेती बाड़ी
1: खेती
0: ची हो
1: बाड़ी।
0: से ने।
1: हो हो।
0: मानतर काय हो से एबे चो जो समय आए एक आया बाढ़तु समय आए ने। और एबे काय हो से नया नया उवाट मन निकरली से हमचो खेती बाड़ी कर तो काजे।
1: हो।
0: मातर काय है कि हमचो को दादा दीदी मन कोनी जानुक सकसोत कोनी नि
1: नहीं
0: जानुक
1: जानू सकसु।
0: सकसोत ने। तो असने हमचो काजे काय हो से कि ये गोटो हमचो जो हमचो पीला झीला मन पड़सोत
1: हो
0: हुमन काज बल काय है कि उन पढ़ाई लिखाई बले हो से आजकल
1: वैसे
0: ने।
1: ये नगद गोट के बल्दी स्मिट की
0: हाँ
1: जैसे स्कूल ने गाले वाले नी हुन
0: हाँ
1: थाने पीला मन का जे अलग गोटक विषय आसे
0: हाँ
1: हुन
0: सत्य है।
1: विषय ने हुनके खेती बाड़ी करतोर हुनके मतलब कसन कमातो राय कसन बाड़तो राय हुन मन केवल सीखा सोत
0: हाँ
1: समझ लीस।
0: आजकल का हो से जसन गांव बाट बल छपाई स्कूल मन हो से नाले शहर ने बल हो से हुन थान का है कि स्कूल ने जो हम चो शिक्षक मन बल सोत हुन मन का है कि हमके पढ़ाई सोत और
1: हो
0: जसन सांग सोत कि
1: सांग
0: कसन
1: सोत
0: उनके
1: बाढ़ती करुक सकूं आमी।
0: बाढ़ती करुक सकूं और जसन कसन रोप तो राय कसन उनके सिंचाई कर तो राय
1: हो
0: कसन मिंडा तो राय ये
1: हो
0: सपाई गोट मन के हु मन के पढ़ाए सोत पढ़ाई
1: हो
0: संग संग काय हो से हम स्कूल ने बल हुन बीती मन के कराए सोत।
1: कराए सो तर काय उनके कर ले फिर अधिक सीखुक मिले दे
0: हाँ काय के
1: समझ ली।
0: पढ़ तो भी तीन तो काय है कि सीखू खुआ जानू खो चिया मातर काय है कि जन बूता हमें करुण सीखुआ हूं चोले
1: हाँ
0: काय हमें ज्यादा सीखुआ
1: ज्यादा
0: उन्हें।
1: सीखुआ। हाँ हुनी गोट के तो है।
0: हाँ तो जसन की बल तो गोटे आई पंड की जसन की हम तो दादा दीदी मन तो पहल जुग ले तो खेती बाड़ी कर सोची ने। लेकिन एबे का है जो हम जो बाढ़ती तो जो समय आए जो नया नया उवाट बना से हुन बीती का है कि हम के जो शिक्षा ले जो मिले से हुन बीती मन के बल हम के जानन भाती हम के का है कि हम तो जो खेती बाड़ी ने हुन के बल कर तो रहा
1: कर तो रहा
0: हुन
1: है।
0: जो ले का हो दे हम क्या नहीं और ज्यादा लाभ मिले दे। जसन की पहले जसन थोड़े कम लाभ मिलते रहे हुन का हो दे हम के और
1: और
0: ज्यादा लाभ
1: ज्यादा लाभ
0: मिले दे
1: मिले दे।
0: ने।
1: हो
0: हुन के अनगर ले अनगर का हो दे हुन हम तो जो खेती बाड़ी ना से जसन की खेत आसे हुन चल का है कि हम तो जो भूई मना से
1: हो
0: हुन बल का हो दे कि अच्छा हो दे।
1: अच्छा हो दे हुन चो जो उर्वरा शक्ति बलसोत ने
0: हाउ हाउ
1: उपज जो बलसोत हुन बाड़े दे
0: हाउ
1: ने।
0: आ हुन चोले का है कि एबे का हो से कि दुई खेती बल कर सोत गुट की बेड़ा ने।
1: हो
0: ये सब चीज का है कि हम तो जो
1: शिक्षा पद्धति ले सीख लो बीती आई
0: हाँ
1: ने।
0: हाँ और ये भी दिखाया कि हम के और अच्छा ले करु खोए
1: करु
0: दे।
1: खोई दे उनके सीख ले
0: हाँ
1: उनके स्कूल ने भले विषय के सीखा सो तो उनके जा तो रहा है सीख तो रहा है पढ़ तो रहा है ने।
0: हाँ तो जसन की पंड की मैं बोलते रहे कि ये ज्ञान ध्यान चो गोट मन तो होली नहीं।
1: हो मिटकी।
0: तो असने आम चो लगे जहाला मन बला से अले जहाला मन के बला आम चो दादा दीदी मन लगा मैं अमराउन दे।
1: आले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम कीस इंजे 18% कीस इत्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके ओनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% कीस इत्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता ईदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला बाला 12% से कम मास 5% की सितोड़।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: हाँ तो पंड की
1: ओए मिटकी
0: ये जहला मन के तो हम सुन लू ने असने हम चो मुंडरा ने आशिक आजी गोटोक नाटक ए आई हल्बी नाटक ए आई माटी माय अरे एक बले हमी बले सुनो और हम चो दादा दीदी मन के बले सुनाऊ।

0: जुआर साहब, जुआर।
1: जुआर धनसा है जुआर, अलावे लग बस।
0: अच्छा वाली साहब, भेटघाट होली, मैं तुमको भेटघाट हो तो काजे बड़े बिहान निकलू ना इले से।
1: अच्छा कर लिस संजका रिलीस, मैं दौरा जातो बीता रले संजका रिलीस गुन भेट लिस। आले काय गोटा झट के सांग।
0: मके गोटक भिपती पोरली साहब।
1: आई
0: देखा मोचो बेड़ा ने।
1: हाँ।
0: मैं रोजे बरक उन सरकारी खतमन के लगाए से।
1: हाँ।
0: अरे तेबने बोले नहीं, अरे उपजन नगद नी हो से।
1: हाँ।
0: काई माटी माय रीस होली असन लागे साहब, मैं कसन करें दे मके तो हेके नहीं विचार बोलली साहब।
1: हाँ, ये गोट का जीलिस धन सा सिया ने।
0: हाँ।
1: देख चुच्छाए सरकारी खत बोलून लगा ले काम नहीं चले। भीने भीने किसम चो माटी ने माटी दखून खत लगातर होए से। कौन माटी ने फास्फेट कम आसे जाले फास्फेट बीती खत, सल्फर कम आसे जाले सल्फर बीती खत। अरु हिसाब दखून कौन माटी ने काय जीनिस कम आसे उसन बीती खत के लगाऊ पड़े से।
0: हाँ।
1: यूरिया चाय बोलून भाती चुच्छा यूरिया के बेड़ा न्यून बिखर लो ने नी पड़े
0: जाले। मैं ये भी कसन करें दे साहब, ये के तो सांगा मके।
1: देख भाई धन साय, सबले पहिल तो तुई तुचो माटी चो जांच कराओ।
0: माटी चो जांच
1: हो, और माटी चो जांच होलो ने तुई जान से कि तुचो माटी ने कितरो पीएच मान चो आसे, फिर हुन हिसाब ने तुई नंगत फसल धरुक सकसे। और गोटो गोठाय ता धन साय सियान।
0: काय गोठाय साहब?
1: हुन गोठ ए आए कि सरकारी खत देतो के धीरे धीरे बेड़ा नस्ते जाए से।
0: बेड़ा नस्ते जाए से?
1: हाँ।
0: ये सरकारी खत ने
1: यही काजे जैविक खत चो उवाट निकरली से। जैविक उवाट ने जैविक खत की तुई तुचो घरे नहाले बेड़ा ने खुदे बना उक सकिस।
0: हाँ।
1: और हुनके बेड़ा ने लगाओ नस्लो बेड़ा के बले सुधरा उक सकिस, समझ लिस?
0: समझ तो के तो समझ ले साहब, मात्र ये चो उवाट के मैं कसन जाने दे साहब।
1: देख भाई, ये चो उवाट के आमी सांगवा।
0: हाँ।
1: नाडे फिसाप चो खत हो कि केचवा कीड़ी बीती खत हो।
0: हाँ।
1: हुनके बनाऊन फसल चो नंगत दखा रखा और नंगत माटी हिसाब ने कमानी करून तुई नंगत फसल कमा सकी।
0: ये तो खूबे हरिक चो गोट है साहब, है तुमके शरण लागो साहब, तुम्हें अच्छा गोट के सांग लास। तुम्ही तो ये फादा ने पड़लो लोग के ऊपरे उठा तो काम कर लास साहब। आले साहब, जुहार साहब, तुम तो जय हो साहब, जुहार जुहार।
1: देख कोनी दिन काम पड़ले फिर असने आओ।
0: हाँ, यहीं दे साहब। आले जुहार साहब।
1: आले जुहार जुहार।

0: सोनाई ओ सोनाई दखानुए बाले के किदली दाए तो घरे रहती कहाँ गेलीस रे
1: काय होली हो काय काजे इतलो चीची आसास
0: काय गोट के सांग से तू सोनाई मैं जाऊ रहे बोंड का सौकार लगी
1: हाँ
0: ये पानी सो असन लगा अधर तो काजे जाऊ रहे मैं अरे सौकार दखनु फेरे सहरे गेलो से मने
1: नहीं तुम जो काज घरे बसु रहे थे
0: गोटक फेर हाँ
1: काय करा से हो है अरे इतरो बेड़ा खड़ा रो रो बोले काय होली जाले माता खाती जे कौन आए जाले हम जो बेड़ा खड़ा के नशा लो आए हूं के तो
0: सत्य आए सोना है तू सत्य बोलसी अली दखनु रोजे बरक छो असन येसु बोले बेड़ा ने ठोक का सरकारी खत के लगा ले मैं हाय और तक समय ने मिंजानी समय ने घसानी सब पायवार तो कर ले मंत्र काचो नजर लागली जाले आमचो बेड़ा ने दखानु फसल बिल्कुल नाजुन होए हो
1: मंत्र ये हो
0: कसन
1: हम चो बेड़ा रेटे चो उन धनसाय चो बेड़ा ने कसन असन नी होय हुंचो फसल तो इतरो सुंदर लल हुन जाय से हाँ। ये हो काय हुनी तो काय नी करलो से हमचो बेड़ा के
0: सत्य आय तू जाले सत्य बोलसी हमचो बेड़ा ने विपत हुंचो बेड़ा ने सकत हाय ये असनी तो होक नी सके सोनाय
1: हाँ।
0: काय नाले काय गोट तो जरूर आय हो बिल्कुल सत्य आय हुनिची आए पांगू बिल्कुल हुनिची आए पांगू हुनिची आए देवधामी बनाऊ बीता नाले हुंचो बेड़ा ने कसन का आए सुंदर फसला से और मोचो बेड़ा ने कहीं नहीं
1: होय हो हुनिची आए बे
0: हो निकाय
1: आम के असन अनगतान करू नाले बेड़ा खड़ा रो रो वाले हम के दूसर थाने भूती कर तो काजे काय जाऊक लागती हो
0: सत्य बोल सिस्ती सोना ये सोना
1: है
0: सुन लीस
1: okay.
0: मोके जाले तो अदाय खूबे रिस लागे से हाँ असन लागे से जोड़ान लगे टकू रून भाती नहीं धन साय के मरते मारून देव वहाँ लागे से हाँ यदा ये बे डरून चलते दिन गेली बे दाय आय जाएं दे तानू जाएं दे हुन जो भूत के नीचे रह जाले काय के सांग से जाएं तम जाएं से हाँ
1: ये हो ये कसन ये दे दे सुनो सुनो सुनो
0: कसन
1: अल कहाँ जा साथे बानो
0: हो गया रानू तू मौके जाओ देस मुझे मुझे नहीं हो मुझे आए से
1: हाँ ये हो ये दे दे थे बानू थे बा थे बा थे बा थे बा ये
2: राम राम सरपंच दादा राम राम
3: ए, राम राम धनसार राम राम धनसार आला बस आज कसन बियाने बियाने तरोली ना
2: काय के सांगे दे सरपंच दादा गोटक अर्णापचे असन गोठाय जानू अली रोजे चो खटखट के सौख नी होय सरपंच दादा
3: काय खटखट होन गेली गा
2: काय के सांगेन सरपंच दादा सोनू हुन खाले पारा चो हुन मके खूबे खटखट करे सरपंच दादा
3: सोनू काय खटखट करे सोनू
2: काय के सांगेन दादा हुन बेड़ा ले घरे बोरते बेरा नहीं हुन जोड़ान लगे मके टाकुन रही से आरू रोजे मके तीन दिन होली पे एक हार ऊपरी ऐसे खिजे से मारतो पेट तो काजू प्रिय से बारा बाखना बोले से अले असन करन कसन होय दे सरपंच दादा
3: खीजे से मारतो पेट तो काजू प्रिय से
2: हो दादा
3: काय काजे
2: हुन बोले से कि हुंचो बेड़ा ने येसु जो नाय फसल खिंडी घाटा होली मने
3: हां
2: और येसु चे नहीं गेलो दुई बरक ले उन घाटा चे होय से और येचो काजे हुन मके हुन लटा दे से मय हुंचो बेड़ा के पांग ले मने देव बना ले असन बोले से यार एकदम ऊपरी ऐसे सरपंच दादा
3: असन कसन होक सके ना धन साय
2: हो
3: उनसन कसन तू के बोले से
2: मोचो बेड़ा ने फसल एबे बोले दादा चमक राया से और मैं बेड़ा के येसु नहीं उन्नत किसाब हिसाब ने कमाए से और रोजे बरख मैं उन्नत वाट ने कमानी करे से और मोचो फसल अच्छा रहे से और हुंचो फसल खिंडी अच्छा नी रहे उन मके दका तीन दिन होली उन टाकून टाकून बाटे रहे से और जोड़न बाटे अमरते नहीं एकदम मार तो पीट तो का होय से बारा बाकना बोले से मके देव बनालीस बोले से पांगलीस बोले से अल असन कसन उन बोले दे सरपंच दादा मके
3: उन कसन बोलुक सके धन साय तू असन कर
2: हाँ।
3: सोनू क्या मैं समझावा मान तो रह चुका जे नहीं बैठक हाक दुख लागे दे
2: हाँ, हाँ।
3: तू जा घरे मैं कतवाल खाक देऊ नहीं गांव ने हाका पाड़ोक बोले दे
2: हाँ सरपंच दादा काई बल कर हम खूबे खटखट करे सरपंच दादा मके तो एकदम जीव जंजाल लागली मके डर लागे से
3: हाँ हाँ उन क्या मैं समझा
2: हाँ दादा ठीक

0: 哎，好，我们这样
1: 阿联。
2: Suna, ai tuar dine, gram panchayat bhavanne, goto khube kamcho baskay mane ho. E baskane, sappai kisan lokke, amar to raay सुना आईतवार दिने ग्राम पंचायत भवन ने बस काय हो
3: आजी गोटक गोट काजे यथा सपाय के हाथ दिलो आसे हुन गोटाय धनसाय ऊपरे सोनू दोष लगाए से हुंचो बेड़ा के नसालो से बोलून यही गोट चो आज ये था फासला होए दे सरपंच दादा बोले अमर लोग
1: सफाई लोग के राम राम हो जुआ तो सियान सजन मन देखा सपाय लोग के मैं गोटक नगद काम काजे हाक दिले से असन तो मोर गोट सोनू आरु धनसाय चो मंजी आए मांतर मैं ये था ये मंच लागू निहाक दे ये मंचो झगड़ा दंड के तो मैं एकलाय बोले निट्टा सकते मांतर सपाय के हाक दे तो काजे असन वाट होली से कि सोनू चु बेड़ा ने कमानी नहीं हुए आरु धनसाय चु बेड़ा ने कमानी हुए से ये चो फरक कसन आए आरु ये चो काजे धनसाय काय कर लो से यही कहने के आमी सपाय लोग जानवा तो होनी हिसाब ने ता हाक दिलो रासे आ सपाय लोग खिनिक ध्यान दे उन सुना अल्ला आओ ना धनसाय
0: हो दादा
1: तू ये लोग पूरी आओ आरु ये तू चो खेती कमानी चो जो फसल गोटा है ने अली के सब चो लोग सांगों देस
0: हाँ दे दादा सांगे दे सपाई गांव करी लोग के सियान सजन मन के मैं जुहार करें से
1: जुहार
0: सर लगा मोचो बेड़ा ने सरकारी खत मैं देते रहे मोचो फसल बोले कमानी हिसाब ने खिंडी कम चे होते के लिए तेबे मैं 5 बरख पहिल गोटक शिविर ने जाऊन भाती ये गोट के सुन ले कि आप लो बेड़ा के नगद उपजास काजे कोनी बोले तुम्ही खोजाकारी भाई मन लगे भेट हुआ बोलून तेबे मैं खोजाकारी भाई लगे गेले आरु आपलो बेड़ा चो सप्पाय गोट मन के हुन मन के सरसरा मैं हुता सांगले तेबे मोचो गोट के सुनून हुताले मके माटी के जांच करा तो काजे बल्ला आरु फिर मैं पाचे माटी चो जांच करा ले और हुन दिन ले मैं मोचो कमानी उवाट के उन्नत कमानी उवाट बना ले घरे चे मैं नादेप खत चो टंकी बना ले फिर हुन खत के मैं बेड़ा ने दी ले बेड़ा ने उन्नत किस्म जो

0: तो ये काय सुंदर नाटक के तो हमी सुन लू ने
1: हो
0: हाँ और एके अमराउरला हम चो लगे श्री आदित्य कुमार आचार्य और एके लिखुरला एक लिखुरला आदित्य कुमार आचार्य और एक आमचो लगा अमराउरला बलबीर सिंह कक्ष ने और एक था कौन कौन भाग धर रला चितालीस कसन
1: हो गए श्रीमती सुंदरा सिम्हा श्री नरेंद्र पाड़ी श्री शिवनारायण पांडे श्री बलबीर सिंह कच्छ श्री भरत कुमार गंगादित्य और श्री महेंद्र कुमार पांडे इतर लोग ये नाटक ने भाग धरू रला
0: हाँ तो पंड की
1: वही मिटकी
0: तो ये ज्ञान ध्यान चो गोट ये नाटक मन तो होली ने अमरालो तो असने आमचो मुंडरा ने गीत मन बला से
1: हाँ।
0: मैं बलते रहन ले अलगोट गीत सुन ले फिर हरिक लागते
1: आले सुनो ता
0: आले फिर सुनो ये गीत के
1: हाँ,
0: और गीत कुरिया मन के हमें पाचे चीता वहाँ
1: आले

0: तो मीठ की
1: हाँ
0: चितालीस
1: हाओ कच्ची ताले फिर कसन्नी चिताएं तने
0: हाल सांगुंदक
1: ए मन रला मेघनाथ पटनायक अरुण मंचो संगवारी मन
0: ने पक्का 44 मात्र ने।
1: हाओ लेकिन पंड की
0: हाँ
1: मैं बलते रले काय हो से नी कि ये गीत सुन ले फिर काय के गीत ची सुनुक भाषे
0: मैं जानते रहले काय।
1: तो आले फिर गोटक गीत के आउरे सुनू और
0: हाँ
1: हम चो दादा दीदी मन के बले सुनाऊ
0: अली ते भी सुनो।

0: हाँ तो पण के
1: ओय मिट की
0: काय सुंदर गीत के सुनते रहुने और ये गीत के गौरला जलधर और हुन मंचो संगवारी मन।
1: हाओ तो मुई बलते रहले समय
0: हाँ?
1: तो आसे
0: हाओ
1: ने फिर गीत सुन सुवाले सुनु
0: आले फिर गीत सुन ले फिर काय है कि अच्छा बल लागे से ने
1: हाओ
0: तो
1: उनके
0: आमच मोंडरा ने गोटो और गीत बले आसे
1: हाँ
0: आले
1: हाँ
0: ये गीत के बल हामी आमचो दादा दीदी मन लगे हम राउंड देऊ फिर
1: आले तेबे
0: आले फिर सुनिए गीत के।

0: हाँ तो पंड के
1: आई मिटकी सांग
0: अलका रशिया गीत के हमें सुन लू ने एक गीत
1: मिटकी
0: के गौरला शिवराम नागरुण मंचो संगवारी मान।
1: तो उन बार दक्ष इसकी नहीं।
0: हाँ काय काय हो से कि घड़ी बार दखले जा तो समिया बल हो से मंतर काय है कि ये गीत गोविंद ने भूरलू बल जाई
1: नहीं
0: हो
1: नहीं नहीं
0: से
1: भूर
0: ने
1: लूबे मोटरा गड़ रख सकले से मैं
0: आले फिर जा तो पूरे
1: आम
0: आमचो गांव कार्यक्रम सुनतो सपाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोहरिया संगवारी मन के मैं मिट के
1: मैं पंड की
0: आमी दोनों करूं से जुहार।
1: जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगांव। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। कुड़ेफूल में प्रस्तुत है भत्री लोकगीत। कलाकार है नीलू राम और साथी। पर पहले ये संदेश।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल
3: आज ही वो देगा।

पोलिटा को मारी देली अधिक गला सो पुलिस सके कान की रस रस खाने चलो सके कान की रस रस खाने संगर लोक बोली डाक मारी देली अधिक गला सो पुलिस सके कान की रस रस खाने चलो सके घनगी रस रस खाने।

0: कुड़ई फूल में आप सुन रहे थे नीलू राम और साथियों का गाया भत्री लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। लीजिए सुनिए अगला कार्यक्रम रायपुर से।
1: श्रोताओं नमस्कार। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आधारित विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, गुजरात में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 मई को सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि तट से टकराती लहरें सदियों से उद्घोष

0: कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के जरिए ये दिखाया कि भारत शान के साथ अपनी विरासत का संरक्षण करता है। 1940 के दशक में स्वतंत्रता की भावना पूरे भारत में फैल रही थी। सरदार पटेल जैसे महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत की नींव रखी जा रही थी। ऐसे में एक बात जो उन्हें बहुत व्यथित करती थी वो थी सोमनाथ की दुर्दशा। 13 नवम्बर 1947 को सरदार पटेल ने सोमनाथ के जर्जर अवशेषों के सामने खड़े होकर ये निश्चय किया कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण होगा। उनके इस आह्वान ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को नए उत्साह से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर पहला हमला हुआ था। ऐसे हमलों को अंजाम देने वालों का मानना था कि वे देश की भूमि की आत्मा को चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन वे गलत थे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर के द्वार खुले और उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि हमलावर भले ही इतिहास की धूल में विलीन हो गए हों, लेकिन भारत की आत्मा अमर है। 11 मई 1951 को अपने भाषण में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सोमनाथ मंदिर दुनिया को ये संदेश देता है कि अद्वितीय श्रद्धा और विश्वास को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। सोमनाथ मंदिर के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के विभिन्न पुरातात्विक और ऐतिहासिक मंदिरों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है।
1: पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
0: श्रोताओं, इसी के साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए अमल साय और साथियों का गाया भत्री लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे अमल साय और साथियों का गाया भद्री लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। पिलामन काजे गोट में लीजिए सुनिए सरदार उधम सिंह के बारे में। प्रस्तुति है सुकरू राम यादव की।

पिलामन, आम चो देश के अंग्रेज मंचो गुलामी ले आजाद करा तो काजे कहे एक बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर मन जन्म धरला और अंग्रेज मन संगे लड़ते लड़ते आपलो जान बलि दिला। उन भितरे गोटोक महान क्रांतिकारी चो नाव हैसे हुन मंचो नाव है सरदार उद्धम सिंह। सरदार उद्धम सिंह महान क्रांतिकारी रहोत और ए मंचो जन्म पंजाब चो संगरूरू जिला ने 26 दिसंबर सन 1899 ने होली।

ची ए मंचो मरण बले 31 जुलाई सन 1940 ने होली। ए मंचो जन्मलोर 3 बरख पाछे माय बीती और 9 बरख पाछे हुन मंचो बा बीता बोले मरुन गेला। हुनी कारण ने ए मंचो जीवना खूबे कठिन होली और जीवना चला तो काजे अमृत सरचो गोटोक अनाथ आश्रम ने आपलो बड़े भाई संगे जाऊ पड़ली। सरदार उद्धम सिंह चो बचपन चो नाव शेर सिंह रहे। मांतर अनाथ आश्रम ने उद्धम सिंह नाव ने जानते रहोत। सरदार उद्धम सिंह सपाय धर्म के खूबे मान सम्मान देवत। हुनी कारण ने आपलो नाव राम मोहम्मद सिंह आजाद संगाला। कसन बल्लो ने राम हिंदू धर्म चो भगवान आय और मोहम्मद मुस्लिम धर्म चो और सिंह बल्लो ने सिख धर्म चो देवता मनात। असन नाव के संगाउन भाती और ऊंच नीच चो भेदभाव के गुचा तो काजे अनाथ आश्रम ले बोले खूबे बड़े बड़े काम मन करते रहोत। असनीची आमचो देश काजे कहे बड़े बड़े काम मन के करते करते और बले खूबे नाम कमाला। और यही समयाचो सन 1917 ने हुन मंचो बड़े भाई बले मरुन गेला। जे चले हुन मंचो जीवतर और खूबे बड़े चिपा होली। असन चिपा बेरा बले उनमन हार नहीं मानला और देश सेवा काजे अमृत सरचो अनाथ आश्रम के छाड़ून बाती 1919 ने आजादी चो लड़ाई ने और बले क्रांतिकारी मन संगे शामिल होला। उन्हीं समय ने आमचो देश ने जलियावाला बाग हत्याकांड होन रहे और ये हत्याकांड ने आमचो देश चो कितले हजार निर्दोष भाई बहन मन आप लोग जान बलि दिला। और ये हत्याकांड ने हाँ गवर्नर जनरल डायर चो मायमूर हाथ रहे। असन हत्याकांड के दकुन भाती हुनमन खूबे रीस होला और जलियावाला बाग चो घोट के मैं फिर अच्छा ले सांगे से तुम किंडिक ध्यान दे उन बारी सुना। जलियावाला बाग बोलो ने हुनता ने 20,000 लोग गोटक सभा काजे जुहुन रोहत और हुनता ने शांति ले सभा के चलात रहोत। असन समय ने जनरल डायर काय अमरला और काई चेतावनी नी देहुन भती उन जन जलियावाला बाग के चारों पाट ले घेरला और जलियावाला बाग असन आसे कि हुन चो चारों बाटे भीती आसे उनता ने कोनी कुदुन बल प्रयोग नहीं सको और गोटक नानी असन गेट आसे ओल तो काजे उन सपाय बाटले जनरल डायर घेरुक मुरियाला और हुनता ने 18 मिनट तक गोली चलते रहे। और जोनता ने 2,000 लोग के तो गोली ने ची मारुन दिला और कितने हजार लोग हे बाटे हुन बाटे परातों ने बल्लो ने भग दड़ने वाले हुन मंचो जान गेली। और कितनी लोग तो असनी दीवाल के बले कूदला हुन ने बले हुन मन मरुन गेला और कितनी लोग तो असनी खुंद मांड करते बले हुन मंचो जान गेली। ये सपाय के आमचो उद्धम सिंह का है कि हुन भीतरे रोन भाती यही भले हुताय रहोत और सब ये जोन हत्याकांड होते रहे ये सपाय के दखते रहोत। जे चले हुन मन ये सपाय के दुखुन भाती जोन जनरल डायर रहोत हुनके खूबी रिस होला और पासे जनरल डायल के मार तो काजे क्रिया खादला और असन करुन भाती हुन मन जनरल डायल के मार तो काजे लंदन ने गेला और गोटोक होटल ने काम करुन भाती गोटोक पिस्तौल बले घेनला। उंच पाछे जनरल डायर के डगराक मुरियाला। कसन बल्लो ने उन समय ने जोन जनरल डायर रहोत हुनके ये हत्याकांड करलो कारण ने हुनके लंदन ने अंग्रेज सरकार पठौरे बल्लो ने हुता बदली करौरे तो हुन कारण ने हुनके मार तो काजे जोन उद्धम सिंह के आए हुन लंदन जाऊकलाई पड़ली। तो असन करुन भाती हुन गोटोक पिस्तौल के घेन

और जनरल डायर के डगराव मुरियाला। असनी खोजते खोजते जनरल डायर के भेटला और मानतर उनके नी मारला। कसन बल्लो ने हुन विचार करला कि असन मैं कोनी लगे हो एकला के मारूं दिले लोग म के डरपोक और कायर बल दे। हुन कारण मैं असन ठान ने मारें दे जसन हुन आमचो देश चो लोग के जलिया वाला बाग असन सभा करुन भाती मार लो। तो असन गोट के हुन मन विचार करुन भाती हुन के बोले गोटो का अच्छा बड़े सभा ने मार तो हुआ बनाला। तो असनी जुगे दिन चो पासे फिर हुन के बोले अंग्रेज सरकार गोटो जनरल डायर के सम्मान देते वाट बनात रहे। कसन बोलो ने हुन जनरल डायर का है कि भारत जो 20,000 क्रांतिकारी मन के हत्या करुन भाती हुन अंग्रेज सरकार के खूबे बड़े उपलब्धि हुन मन के देव रहे। हुन कारण ने जो लंदन सरकार रहे हुन जनरल डायर के खूबे बड़े मान सम्मान देतो का जे गोटो सभा बनातोर फैसला करला। और उन सभा ने लंदन चो बड़े बड़े लोग मन जुआ होला और हुनता ने कहा कि गुणगान करुक लाए हुन चो मुरियाला और असन गुणगान करुन भाती हुनके ही नाम देतो वाट बनाला। उन्हीं समय ने बोले उद्धम सिंह खिंडिक टाकुन भाती रहे और हुन मंच सभा ने गोटोक रेटे बसुन भाती हुन सुनते रहे। दकत दकत दकलो और उनके उद्धम सिंह के लगे गेलो और गोली ने हुनके ढेर करुन भाती हुनके हुन उताय मारुन दिलो। ये बड़े सभा ने पुलिस विभाग चो बड़े बड़े अधिकारी मन रहो और उद्धम सिंह के हथकड़ी लगा तो आदेश होली। मानतर उद्धम सिंह चो साहसारु हिम्मत के दखुन हुनमन तो बक पाड़ून भाती दखते रहो और गिरफ्तार करतो के बोले कोची हुनमन के हिम्मत नी होते रहे। तेबे उद्धम सिंह बल्ला या मके गिरफ्तार करा। असन बल्लो पाछे फेर बोले उनके कोनी गिरफ्तार नी करते रहो और मन ने विचार करते रहो कि हिंदुस्तान चो बहादुर बेटा लंदन ने उन भाती बदला धर लो। उनचो पाचे कोनी गिरफ्तार नी करते रहो उनके हथकड़ी पिंदा तो काज बल डरते रहो। असन के दकुन भारी उन आपलो धर लो पिस्तौल के उद्धम सिंह पकाऊं दिला और अंग्रेज अधिकारी के बल्ला या दायम के गिरफ्तार करा। असन बोल तो के गोटोक अंग्रेज अधिकारी गेलोवार उनके गिरफ्तार कर लो। मानतर आमचो उद्धम सिंह चो हिम्मत और साहस के दकुन उनके हथकड़ी पिंदा तो बराबले उनचो हाथ थर तरते रहे। तो असन करुन भाती उनके गिरफ्तार करला और फिर उनके लंदन चो कोर्ट ने नीला। तेबे जज उनके दखलो और उनके बोललो कि उद्धम सिंह तुई असन हत्या करुन भाती तुई पराख सकते रेलीस हिंदुस्तान मानतर तुई काय काजनी परालीस। तेबे उद्धम सिंह बोललो जज साहब हिंदुस्तान चो माटी ने पैदा होल लोग पाठ करुन भाती परवनुआत जरूरत पड़लो ने आपलो छाती ने गोली बले खाऊआत। असन गोट के सुनून जज भक्यान गेलो और फिर दूसर सवाल पूछ लो उद्धम सिंह तुई हिंदुस्तान ने जाऊन भाती 100 जान तुचो असन बहादुर पैदा करु सकते रेलीस मानतर फिर बोले तुई काय काजनी परालीस। तो असन गोट के सुनून भाती उद्धम सिंह हुनके जवाब दिला कि जज साहब जे दिन मके लंदन चो फांसी नीचे गवा से उन दिन मुचो हिंदुस्तान ने 1,000 जान मुचो असन वीर पैदा हो दे। तुम्हें असन गलत विचार ने निरुआ

वास्ते हुनमन जाऊन भाती फांसी ने चेक तो काजी तैयार होला। मांतर हुन समयान बले अंग्रेज अधिकारी मन के उनके फांसी ने लटका तो काजे हाथ उनमन चो थर थर तरे। तेबे उद्यम सिंह खुद गेला और आपलो फांसी के आपलो टोडरा ने फसाला और उनचो बाद ने हंसते हंसते फांसी ने झुल्ला। तेबे हुन दिन के आमी 31 जुलाई के आमी रोजे बरक उद्यम सिंह जयंती मनातर होए से। तो पिलामन इतलो बले बहादुर और क्रांतिकारी चो कहनी के तुम सुन लाज बे होती तो असन आमच देश चो महान क्रांतिकारी उद्यम सिंह रला।

0: पीला मन काजे गुट में आप सुन रहे थे सरदार उद्धम सिंह के बारे में। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल

0: की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bagged the silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said for the Kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees. He said an estimated over 824 lakh metric tons of crops will be procured during the season.
7: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
8: Today a major decision was taken for farmers for all kharif crop. The MSP has been fixed at cost plus 50% or even higher. With this decision, farmers will receive a total payout of 2,60,000 crore rupees. The annual kharif procurement for this year will be 824 lakh metric tons.
7: Kharif procurement hoga 824 lakh metric tons.
6: Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Addressing media, Union Minister Ashwini Vaishnav said the scheme marks a major step towards accelerating India's coal and lignite gasification program.
7: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के रिजर्व्स हैं.
8: इंडिया हैज नियरली 400 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिजर्व. बाय मेकिंग मैक्सिमम यूज ऑफ दिस कोल, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू गैस एंड देन यूज दैट गैस इन फर्टिलाइजर्स एंड अदर सेक्टर्स. दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द एलएनजी इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. एन आउटले ऑफ 37,500 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर दिस स्कीम. द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट विल बी अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीज. And project will be set up to gasify 75 million tons of coal.
7: Coal ko isme gasify karne ke liye projects lagenge.
6: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Minister said, as India's first semi-high-speed rail project, the project will serve as a pioneer project, acting as a reference model for the phased expansion of semi-high-speed rail across the country. The project will be completed by 2030-31. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner and a public-private partnership. GMR Nagpur International Airport Limited will take up the transformation of Nagpur's Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport into a world-class facility. The phased development is envisaged to reach the ultimate capacity of handling 30 million passengers annually, positioning it as a key airport in central India. Prime Minister Narendra Modi has said the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET-UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurugram and 1 from Nasik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group, Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लीजिए अब सुनिए फिल्म खामोशी का गीत, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत हेमंत कुमार का।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 बजे हैं। वाट में लीजिए सुनिए शासकीय योजनाओं की जानकारी। इसमें आज आप सुनेंगे कृषि विभाग की योजनाएं। इस विषय पर अजय कुमार मीरी से बातचीत कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
1: वाट ने आज अपन मन के जनाऊ दे कृषि विभाग चो योजना मन के आरु योजना मन के जना तो काजे आज आमी गोड बात करूं से कृषि विभाग चो सहायक संचालक श्री अजय मीरी संगे।
2: अजय कुमार मीरी साहब, जैसे कि आपके विभाग में मतलब वर्तमान में हमारे किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसका लाभ किसान भाई कैसे ले सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे।
3: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो हमारे बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से धान का फसल, मक्का जिसको जोंधरा का फसल बोलते हैं, साथ में उड़द मूंग थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद किसान भाई लगाते हैं, साथ में

0: फसलें दलहन और तिलहन की भी है जो किसान भाई लेते हैं। तो हमारे बस्तर में मुख्य रूप से अभी धान और मक्का की खेती होती है। तो अभी धान फसल लगाने के लिए किसान भाई तैयारी कर रहे हैं बरसात के पहले, और कुछ जगहों पर बुआई चालू भी हो गया है। तो शासन ने किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं और अपना आर्थिक मदद भी पा सकते हैं और अपना खेती किसानी के काम को बढ़ा भी सकते हैं और सुविधा भी एक प्रकार से किसानों को मिलेगी। तो मैं प्रमुख कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि बरसात चालू होने वाला है, तो खेती बाड़ी जो है एक अनिश्चितता का खेत बना रहता है हमेशा खेती बाड़ी में कि कभी भी ज़्यादा पानी गिर गया या कम पानी गिर गया, तो कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया, तो विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती रहती है। तो शासन की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना है जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किसान भाइयों के लिए चलाई जा रही है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीट रोग के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, जिससे किसानों की आय स्थिर हो और वे आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसमें मुख्य रूप से फसलें अधिसूचित की जाती है। खरीफ का जो मौसम होता है उसमें मुख्य फसल धान सिंचित और धान असिंचित होता है, मतलब बिना पानी वाला और एक सिंचाई सुविधा वाला। और दूसरी फसल होती है मक्का, अरहर, मूंग एवं मुड़द, ये फसल भी खरीफ मौसम में अधिसूचित की जाती है। इसी प्रकार से अगर रबी का मौसम जो ठंड वाली फसलें हैं उस समय के लिए देखेंगे तो उस समय मुख्य फसल चना होता है और साथ ही साथ गेहूं सिंचित एवं गेहूं असिंचित और राई सरसों, ये फसल पे बीमा कवरेज रबी मौसम में दिया जाता है। इसके लिए बीमा कराने के लिए, बीमा कवरेज पाने के लिए प्रीमियम दर जो है वो किसान भाइयों के लिए बहुत नगण्य है। खरीफ मौसम में जो भी बीमा बीमित राशि होता है उसका 2% किसान भाइयों से लिया जाता है और रबी के मौसम में 1.5% बीमा राशि जो प्रीमियम है वो लिया जाता है बीमित राशि का। इसी प्रकार से देखें कि इसका जो बीमा इकाई का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। तो जो बीमा इकाई है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम पंचायत इसकी बीमा इकाई होती है, वहीं शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर ग्राम स्तर इसका बीमा इकाई का क्षेत्र होता है। और इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो जो अधिसूचित ग्राम पंचायत है या ग्राम है तो शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दोनों के लिए बराबर है। तो ये खरीफ मौसम में जो अधिसूचित ग्राम है, ग्राम पंचायत, वहाँ पर कम से कम 15 हेक्टेयर का फसल होना चाहिए और रबी मौसम में कम से कम 10 हेक्टेयर का फसल उस ग्राम पंचायत में होना चाहिए। इसके लिए जब फसल का पक जाती है तो उस समय इसके आकलन के लिए फसल कटाई प्रयोग भी किया जाता है। अच्छा। तो प्रत्येक जो बीमा इकाई है उसमें 4 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग और कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है जिससे उसके उपज का अनुमान आकलन लगाया जा सके।
1: अच्छा।
0: इसमें बीमा की पात्रता दोनों प्रकार के किसान होते हैं, जो ऋण लेते हैं और जो ऋण नहीं लेते हैं। तो दोनों प्रकार के किसान जो हैं बीमा के लिए पात्र होते हैं, जो ऋण लेते हैं केसीसी के माध्यम से या और भी दूसरे माध्यम से, बैंक या वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जो ऋण लेते हैं तो उनका बीमा स्वतः हो जाता है। और ऐसे किसान भाई जो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लेते हैं तो वो किसी भी बीमा कंपनी के पास या कृषि विभाग के अधिकारियों के पास या उनके कार्यालय में या जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहां पर जाके बीमा का लाभ ले सकते हैं या बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: इसमें अलग अलग प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं कि आपको फसल का नुकसान होने पर कब कब मुआवजा मिलेगा। तो इसमें आपके बुआई से लेकर फसल कटाई के पश्चात तक
1: अच्छा
0: बीमा का कवरेज मिलता है। अगर किसी परिस्थितिवश बोनी विफलता हो गया या रोपाई नहीं कर पाए

0: जैसे कि अधिक सूखा पड़ गया या ज़्यादा पानी गिर गया तो बोनी नहीं कर पाए या अंकुरित नहीं हुआ बीज या फिर रोपाई नहीं कर पाए कम पानी होने या ज़्यादा पानी की होने के कारण, तो उस स्थिति में भी बीमा कवरेज मिलता है। साथ ही साथ जो खड़ी फसल है उसमें भी बीमा मिलता है, जैसे कि कोई बहुत अधिक सूखा हो गया, बाढ़ आ गया या अत्यधिक विस्तृत रूप से कीड़ा बीमारी लग गया, तो उस स्थिति में भी बीमा कवरेज मिलता है और किसान भाइयों को मुआवजा मिलता है। साथ ही साथ फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए 1 दिन 2 दिन किसान भाई छोड़ देते हैं ऐसे ही खुले में या फिर बंडल बना के, तो उस स्थिति में कम से कम 2 सप्ताह तक बीमा का कवरेज रहता है, मतलब 14 दिन तक बीमा का कवरेज रहता है। उस स्थिति में भी अगर नुकसान हो जाता है तो बीमा का कवरेज मिलता है। साथ ही साथ इसमें अपवर्जन है कि जैसे कोई बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, जैसे कि कोई नाभिकीय या युद्ध हो गया, तो उस स्थिति में फसल नुकसान होता है तो उसका कवरेज बीमा कंपनी नहीं देती है। तो अभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी मौसम चालू होने वाला है, यह 15 जुलाई के आसपास बीमा का कार्य चालू होगा, तो उसका लाभ ले सकते हैं।
1: अच्छा, मेरे साहब, जैसे आपने बहुत सारे फसलों के बारे में बताया, उन सब के बारे में बीमा, क्या सब अलग-अलग फसलों का अलग-अलग बीमा कराना पड़ता है क्या?
0: जी, आवेदन पत्र एक ही है,
1: अच्छा
0: आवेदन पत्र में फसल का उल्लेख करना होता है,
1: अच्छा
0: तो जिस भी फसल आप उगाना चाहते हैं या उगाए हैं तो उस फसल का उल्लेख करके, रकबा का उल्लेख करके आवेदन पत्र में दे सकते हैं, तो उस फसल का बीमा होगा।
1: अच्छा, एक किसान अलग-अलग फसलों का भी बीमा करा सकता है?
0: हाँ जी, अलग अलग फसलों का भी एक किसान बीमा करा सकता है, वो धान का भी करा सकता है, मक्का का भी करा सकता है, अगर वो दोनों फसल ले रहे हैं किसान तो।
1: अच्छा, जैसे आगे और जानना चाहूंगा, जैसे
0: आगे और केंद्र सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना है, ये देश के किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना करके दिसंबर 2018 से चला रही है। इसमें भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। योजना अंतर्गत किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, दो दो हजार रुपये
1: अच्छा
0: 4 महीने में एक बार, तो ये किसान भाइयों को उनके खाते में सीधे DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है
1: अच्छा
0: प्रत्येक 4 महीना में। इसमें सभी किसान परिवार पात्र हैं, इसमें इकाई जो है किसान परिवार को माना गया है, कृषक परिवार को माना गया है, कुछ अपवर्जन श्रेणी है उसको छोड़ के सभी किसान भाई इसके लिए पात्र होते हैं। तो मैं कौन कौन अपवर्जन की श्रेणी में आते हैं वो बताना चाहूंगा। इसमें लाभ लेने के लिए क्या है कि कोई भी संस्थागत भूमि धारक है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं, जैसे कि कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, अगर उनके नाम से कोई जमीन है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। और पूर्व में जैसे कोई मंत्री है, राज्य मंत्री है या सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व या वर्तमान, राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं या नगर निगम के महापौर हैं, या पूर्व में हो चाहे वर्तमान में हो, तो वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
1: अच्छा,
0: साथ ही केंद्र सरकार के जो सेवानिवृत्त और जो सेवा में है, या राज्य सरकार के जो सेवानिवृत्त और जो सेवा में है, तो ऐसे शासकीय सेवक भी चतुर श्रेणी को छोड़कर इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
1: अच्छा,
0: और ऐसे पेंशनर जिनको शासकीय सेवा के बाद पेंशन मिलती है चतुर श्रेणी को छोड़कर, जिसका मासिक पेंशन जो है 10,000 रुपये से अधिक है, वो इस योजना के लिए भी पात्र नहीं होते हैं।
1: अच्छा,
0: साथ ही साथ जिन्होंने आयकर दिया हुआ है या आयकर विवरणी भरते हैं, तो वो ऐसे जो किसान है वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
1: अच्छा,
0: साथ ही साथ जो पेशेवर लोग होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए या चार्टर अकाउंटेंट हो गए, तो इस प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं।
1: अच्छा,
0: डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार के जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी इसके लिए पात्र नहीं होते हैं। तो इसका पंजीयन लगभग हो चुका है अधिकतर किसान भाइयों का, और जो किसान भाई छूट गए होंगे तो वो निकटतम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं या उनके किसी भी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसमें पंजीयन के लिए वो जो कॉमन सर्विस

0: पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज का भंडारण कराया गया है।
1: अच्छा।
0: जिसका वितरण अभी जारी है, साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी भंडारण है और प्रमाणित बीज भंडारित जो किया गया है वो किसानों के मांग के अनुरूप किया गया है, उनके किस्मवार।
1: अच्छा।
0: और प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज प्रथम जनरेशन का और द्वितीय जनरेशन का दोनों प्रकार के बीज उपलब्ध हैं। और किसान भाइयों से अपील करूंगा कि जो सहकारी समिति के सदस्य होंगे तो वो तो जाके लेंगे ही, जो सहकारी समिति है वहां से खाद बीज, वहां से ऋण भी मिल रहा है। जिन किसान भाइयों के पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो वो जाके ले रहे हैं, और जो शेष बच गए होंगे वो भी जाके ले सकते हैं। जो किसान भाई सहकारी समिति के सदस्य नहीं है और वो प्रमाणित बीज लेना चाहते हैं तो जो बीज प्रक्रिया केंद्र है कोकामुंडा बस्तर में है।
1: अच्छा।
0: तो वहां से जाके सीधे भी क्रय कर सकते हैं प्रमाणित बीज, तो वहां पर भी अच्छी गुणवत्ता का प्रमाणित बीज किसान भाइयों के लिए उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जो शासन के द्वारा दर निर्धारित किया गया है उस दर पर प्रमाणित बीज किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है।
1: अच्छा। हाँ। और कोई योजना होगा तो उनके बारे में भी थोड़ा।
0: और जैसे कि खेती बाड़ी है तो बहुत सारा हमारे बस्तर का जो कृषि भूमि है वो असिंचित है, सिंचाई की सुविधा नहीं है
1: जी।
0: तो शासन ने इसके लिए भी सोचा है और योजना चला रही है। तो जैसे एक योजना है शाकंभरी योजना है।
1: अच्छा।
0: राज्य सरकार की शाकंभरी योजना है जिसमें किसान भाइयों के लिए सिंचाई सुविधा के लिए विद्युत पंप या डीजल पंप क्रय करने पर शासन के द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो इससे खुद का जैसे कि कुआं है या नदी है या नाला है तो वहां से पानी जो है ले करके सिंचाई अपने खेत में कर सकते हैं। और इसमें किसान भाइयों को जैसे डीजल पंप है या विद्युत पंप है क्रय करते हैं तो अधिकतम 75% जो भी उसका इकाई लागत है मूल्य है उसका 75% तक अनुदान मिलता है। इसमें अधिकतम 16,875 रुपये अनुदान किसान भाई को मिलता है।
1: अच्छा।
0: तो इसके लिए भी जो लघु सीमांत किसान है, मतलब जो छोटे किसान है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है तो वो किसान भाइयों के लिए ये है, उन पात्रता रखते हैं ऐसे किसान भाई। तो इसके लिए निकटतम जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या कार्यालय है तो किसान भाई वहां संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और आवेदन पत्र और क्या क्या दस्तावेज लगते हैं तो वो उस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक और है जो नलकूप खनन है।
1: अच्छा।
0: किसान भाई नलकूप कराते हैं अपने खेत में सिंचाई के उद्देश्य से तो उस पे भी शासन अनुदान देती है। इसमें किसान भाई जो लाभ लेना चाहते हैं नलकूप खनन का, साथ ही साथ पंप लगाने का, तो इसमें किसान के पास जमीन का कोई बंधन नहीं है। छोटे
1: अच्छा।
0: किसान, बड़े किसान, सभी प्रकार के किसान इसके लिए पात्र होते हैं। लेकिन शासन जो है लघु सीमांत और महिला जो कृषक है उसको प्राथमिकता देती है। तो ये भी योजना जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चलती है।
1: अच्छा।
0: जितना भी लक्ष्य मिला रहता है शासन से तो जो किसान भाई पहले आ जाते हैं तो उनका पंजीयन पहले होता है और उनको अनुदान का लाभ दिया जाता है। इसमें जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भाई हैं उनको अधिकतम 42,000 रुपये अनुदान मिलता है। इसी प्रकार से जो अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान भाई हैं उनको 35,000 रुपये, और जो सामान्य वर्ग के किसान भाई हैं उनको 25,000 रुपये का अनुदान शासन की ओर से खनन और पंप लगाने दोनों।
1: अच्छा।
0: के लिए मिलाकर अनुदान शासन की ओर से दिया जाता है। तो इसके लिए आवेदन पत्र आता है, जो भी निकटतम कृषि विभाग का कार्यालय है वहां से प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए नक्शा खसरा B1 आधार का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, तो ये सारे दस्तावेज लगा के आवेदन पत्र निकटतम जो कृषि विभाग का कार्यालय है वहां जमा कर सकते हैं। इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक नलकूप से दूसरे नलकूप के बीच की दूरी कम से कम 300 मीटर होनी चाहिए तभी शासन इसमें अनुदान देती है।
1: अच्छा।
0: ऐसी व्यवस्था शासन के द्वारा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा जो भूमिगत जल स्रोत है वो सीमित है, तो इसका अंधाधुंध दोहन ना हो इस कारण से शासन ने व्यवस्था

0: करके रखी है कि 300, जहां पर भी किसान भाई नलकूप खुदवाना चाहते हैं तो 300 मीटर के दायरे में कोई दूसरा नलकूप या हैंडपंप
1: ना।
0: नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से शासन ने व्यवस्था की है।
1: तो अजय कुमार मेरी साहब, आज हमारे किसान भाइयों को किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हमारे किसान भाई, जरूर आपने जो बताया है योजनाओं की जानकारी लाभ लेंगे और अपने कृषि में उन्नत और अच्छे तरीके से मतलब कमाई करेंगे। आपको बहुत
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद सभी को।
2: ओवाट में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, कृषि विकास की योजनाएं। इस विषय पर अजय कुमार मिरी से बातचीत कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:48 हुए हैं। लीजिए सुनिए भतरी लोकगीत, कलाकार हैं हीदा सिंह कश्यप और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे हीरा सिंह कश्यप और साथियों का गाया भतरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए परिचर्चा। विषय है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास। प्रतिभागी हैं श्री मंथन रामनाग और श्री बलदेव मौर्य। संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।
1: रेडियो सुन तो भाई भिन मन दखा में बेरा पस्त आपन मन के कई गोट बात करूं से आपन मन लगे अमराओं से मंत्र दखा आमचो बोले ने पूरा बस्तर ने बोले कई किस्म चो त्योहार बार मन होते रहे से तो आज यही हिसाब ने बोले आज गोट बात कर तो काजे आमता नीला से श्री बलदेव राम मौर्य सामाजिक कार्यकर्ता आरो श्री मंथन राम नाग प्राचार्य ले सेवानिवृत्त होला से सबले पहल भेंट घाट हिसाब ने खूबे खूबे जुआर
2: जुआर
3: और खूबे दिन ले अलग अलग रलू।
1: हाँ
3: मातर नवा जुआर निकाजे आम सुतर होन बाती ये था एक दूसर जुआर करूं से।
1: हाँ
3: और आम चो जितले वाले रेडियो सुन तो भाई भाई मन के आम तीनों बाट ले आम के
2: जुआर सब के कोना कोना में सब जितले वाले आसो सब लगे जुआर सब की करूं से का।
1: हाँ तो देखा आसन आए ये तियार बहार बोले ने हरी कुदिम ने आमी बनाऊ से ये सांगा सुना ने बोले आमी बोले पढ़ा लिखा होलू पढ़ू से जानू से कि आगे आमी बोले ने कहा कि अंग्रेज मंचो गुलाम रलू बोले ने हन मंचो हिसाब ने आमी चलते रलू आम के असन कहीं तियार बहार ना ले आमचो मन हिसाब ने कहीं चीज आमी नहीं करते रहू है कि नहीं
3: डर
1: रहे तो हन हिसाब ने एवे गोटोक आजादी चो अमृत महोत्सव मनातोर मोर होली से तो यही गोट बात आजी आमी तीनों एता बोसलू से करवा कि कई

0: जोन बाढ़ती उन्नति बाढ़ती जो बाट आए जैसे कि समाज जो विकास आए बौद्धिक बल्ले ने पढ़ाई लिखाई चु आए आर्थिक बल्ले ने धन दौलत चु विकास आए ये सब चीज के भी आम के जान तो रहा है आम कहाँ तक गेलू से और नहीं गेलू जाले आम कसन आगे बाढ़वा आई के नहीं तो सबले पहले मैं बलदेव राम मौर्य से मैं पूछू है भी कि समाज चो बाढ़ती हिसाब ने सामाजिक उन्नति चो हिसाब ने तुमके पूछे से कि ये आजादी चो बाद ने बोले ने कतलो विकास होली से और आम के काय कर रुकलाए पढ़े दे
1: आजादी चो बाद में पहले हम चो बस्तर संभाग ने सबे लोग एक ही हिसाब ने पिंदा ओढ़ा रहे जोन बोले ओबीसी मले रहोत चाहे जोन बल रहोत नहीं एक ही स्टाइल में पहना ओढ़ा जसन आजाद होती बाय होलो बाद में धीरे धीरे पहना ओढ़ा बदल ली सब जब जब तक के कागज में लिखलो नहलोर के जनजाति है कि ओबीसी है लिखलो ना ले समझी नहीं हो ये भी बराबर टाइप के दखा दे सो पिंदा ओढ़ा ने पिंदा ओढ़ा ने बदलाव ही ली हुंचो बाद में खान पान ने बोले बदलाव ही ली हुंचो बाद में खिंडिक कृषि खेती ने बोले बदलाव इली सबे बाटे खिंडिक बदलाव इली मंतर ये भी तक के नहीं हम चो लोग मन खिंडिक दुख सुख ने बोले ये भी परेशान आसो ची बदलाव धीरे धीरे उन होए दे कसन बोले उन लगे नील आसो तेसे ते जासो दुख सुख बाटे कसन बोलो ने हम चो देवी देवता के देवी देवता बोले अच्छा है लेकिन हुनके बोले भूलकसो थुन मन हमन बोलू से कि आगे देवी देवता देखो थुनचो बाद में दवाई दारू को सरकार बांट ले जो मुहाय करा सुनके बोल देखो तेबे हुन हमन मन चो खिंडिक डेवलप हम चो आगे जातोर अच्छा होए दे हाँ कसन बोलो ने नहीं ये भी सरकार बोले कोशिश करे से हमन मन चुकाजे हर स्तर ने कहीं ना कहीं बोले गाँव गाँव ने सुविधा दे से ये चीज के मन में कान में सुनन बाती गांव पारा ने बल बोस्तोर सियान मन ये ना ये कसन है हुन कसन है आपस में विचार कर तो रहे ना ये कसन बीती है ना कसन कर लेने अच्छा हो दे है जब तक कि हम ही एता ने सांगू से लेकिन ये चीज बोले गांव पारा ने बल बो सुन बाती विचार कर तो हो से ये बहुत जरूरी है कसन बल लो ने नहीं हम जो लोग मन पढ़े लिखे कमास हो शिक्षा बाटे कमास हो कसन बोले ने शिक्षा ये भी तक के सबले पाठ कुती होला आस होते अभी शिक्षा नीचे आस हो खूबे पाठ ने बाकी खान पीन पींदा ओड़ा बार तो सबले आ गए होली से लेकिन शिक्षा बाटे कम आसे कसन बोल लो ने नहीं हम चीज जानते रहे हम बोल बोले खिंडी खिंडी पढ़ लू हम कई बोलो ए ना ये पढ़ लो मैं डीसी बनुआ है ना बोलो है कि नहीं अब हम ही हूँ डीसी ची मतलब कुछ नहीं जानते रहो और ये भी पीला मन के पढ़ो बोले जासो और गांव च सियान मन पढ़ लो ने कहीं बोले नौकरी मिले दे आजकल पढ़ लेने बोले नौकरी नहीं मिले से नौकरी का नहीं पढ़ तो रहा है ज्ञान का पढ़ तो रहा है हर चीज के आज उन्नति कर तो काज पढ़ा लिखा तो आज जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है नहीं पढ़ लो ने आदमी आज ही एक कदम बोले नहीं है बैंक नहीं जाओ नहीं सके ना कहीं नहीं जाए कहीं है असन ये जसन की ऑनलाइन सिस्टम होली से मेरे पढ़ लो सोत लेखा मन बल बारहवीं बड़ बड़ पढ़ ला सोत नहीं जान सोत हनुमन का एप्लीकेशन निकली से कहाँ देते रहा असनी पढ़ ला सोत ना ऑनलाइन के जानत नहीं कहीं नहीं हूं चुप कारण है हनुमन चले मोबाइल नहीं आए कहीं नहीं आए और पेपर तो नहीं आए अब टीवी ताने देश होत बोले जानू कतन जाए नहीं मालूम है लेकिन ये मैं सांगे से पीला झीला मन के बोले पढ़ लो लिख लो लेखा मन के बोले कम से कम जाओ जोन लगे नगे ब्लाक आए कहाँ है पता लगाते रहो कहीं नौकरी पैसा चो निकले से कहीं ऊंच मंच कहीं कागज आता से कहीं आसे के दखुन बैठी दखाओ पोड़ बैठी घर रहने कहीं बोले नहीं मिले
0: हाँ हाँ उन तो आज तो बलदेव मोरे दादा गोड बात तो करूँ आची मानतर मंधर राम नाग आसो ते मन बल का है कि शिक्षा चो क्षेत्र ने जुड़ू लला से तो मंधर राम नाग मैं पूछू है जैसन की आजादी चो बाद ने बोले शिक्षा बल्ले पढ़े लिखे चो स्तर कितलो बाढ़ ली से और उनचो जो फायदा है बोले का है कि लोग मन के कितलो मिरे से और पढ़ोन लिखुन बोले अगर फायदा नहीं मिरे से तो उनचो बोल का है कारण
2: वैसे हाँ ये सही बात है कि ये वे आजादी चो 75 साल गिरा तो आमी अमृत महोत्सव के रूप ने आमी मनाते हैं उसे तो 75 साल पहले तो मचो उम्र 64 साल होली उंच पाठ कुते 9 साल और जो बोले जो घटना स्वतंत्र होली तो उदल दाले मैं दखे से कि मचो जन्म दर्शन जान तो बेरा ले कि स्कूल तो जुगे नहीं रहे और नाइच बराबर

0: এবে জেসেন কি এবে হামচো মহোদয় বললা কি কাসানায় এবে সরকার বাটলে নেই বহু সারে চিজ কুটির উদ্যোগ আর গাঁও গাঁও নে কিনি আগর পড়ে লিখে লেখা মানে আস যুগে যুগে হুন বাতি হুন গাঁও নে কই গিটি খদান বলে আসে না আর কই রেতিজ বলে আসে আপলে গাঁও চি হিসাব নে সরপঞ্চ মাধ্যম নে হুনতা নে কে একঠা হত এসোসিয়েশন টাইপ চ বানাওত হুন মন কে হুনতা নে দেখোত আর হুনমন কি হুনমন বিক্রি ভাঁজিরি করত আসন সরকার চো আর্ডার আসে আসন বলে করুক সকত পড়লা লিখলা নৌকরি নি বলে হুন বলে নৌকরি লি খিন্ডিক বল তুমি লে দে ইয়ে আসন বলে সহুলিয়ত সরকার বাটলে হোলি সে এ শুনাল আসত এবে আমচো সমাজ বাটলে সর্ব সমাজ বাটলে সর্ব আদিবাসী সমাজ বাটলে গোটক এসোসিয়েশন বলে বানাল আসত লেখা মন হুন চিজ কে কাম করসত মই চাহাই সে কি হুনমন চো সকসেস হো হ্যাঁ রেজিস্টার নগরা করলা জোন কে বলে আসে জুড়তো রাসে আল পড়ে লিখে লেখা মান হুনমন চলে যাউন বাতি জুড়ত নু হাও আর কালেক্টর সাহেব মহোদয় বলে মচে লাগিয়া বলুন বলে সে হ্যাঁ তুমি জিতলো মিলুন বাতি যাহা সে হুনমন কে মাঙ্গা কাম মাঙ্গা হুন কাম দাই দে হাও
1: তো ইয়ে তো আচ্ছা গোটা মন্ত্র দেখা কি জসন কি গাঁও নে তো বলেন কইক সমাজ চো লোক রয়েছো জসন কি আদিবাসী সমাজ কে হটুন বাতি দুসর বল সমাজ চো লোক রয়েছো মন্ত্র কায় কি হুন সমাজ চো লোক বলে পড়ে লিখে বলে আসত মন্ত্র কায় কি হুন মন বলে কায় কি আসন হুনর কে নি জানতো কারণ নে না ফের সরকার চো জোন যোজনা মানায় হুন কে নি জানতো কারণ নে কায় কি আর্থিক রূপ নে জোন বলে পয়সা কৌড়ি ধন দৌলত চো রূপ মে এবে বলে হুন মন আগে নি বাড়লা সে তো তুম জসন বললাস কি এবে আজাদি হলি তো আজাদি হতো লি আমি সমজতে রাই কি আমি কাহায় বলে কোনিজ বলে ধন্দা পানি করুকলায় সখু আর এছু কাজে মদত কাজে কায় কি সরকার পুরে আসে আমি তকলিশ কাজে পয়সা পৌড়ি পুঁজিপতি আয় জমিন জায়দাদ আয় ট্রেনিং আয় প্রশিক্ষণ আয় বললেন কায় কি কাঁ জোন মাল আয় বিক্রি ভাঁজরি সবচো কায় কি সরকার বাড়ি ব্যবস্থা আছে মন্ত্র কায় কি এবে আমচো জোন পড়ে লিখে নজওয়ান লেখা লেখি চাই আদিবাসী হো চাই দুসর লোক হো উন সবকে পুরে উন বাতি আপন খুদ কে করুকলায় পড়ে দে তেবে আমি কায় কি এবে আগে বাড়ুকলায় সকুয়া আর জসন কি মন্ধর রাম নাগ ভাই ফের তুমচু লগ মে পুছে সে কি আমি ফের আসনি সামাজিক জোন হিসাব নে বলুবে আমচু কই মেরা মন্ডই পর্ব তেহার মন আসে আর ইয়ে মন জোন কাম আয় আমকে বললেন কায় কি বিনা বললোর বিনা কাকি মতলব জবরদস্তি বললোর আপনি সম্পন্ন হয়েছে আর লোক মন আপনি এতে যায় সত আগে বললি কি আসান জোন কাম আয় কি আম করোড় রুপিয়া খরচা করলে বল কায় কি আসান কাই মন্ডি বানাত রায় বললে নে কোনি পয়সা কোড়ি দেউন হাক দেউন বললেন নি আওত মন্ত্র সেন পারম্পরিক কাম আয় বললে কায় আপনি রুন্ডা হয়ে সত উনমন কে সুরতা রয়েছে তো ইয়ে চিজ কে বল কায় কি আমকে বচাত রায় তো ইয়ে ছো কাজে বললে নে তুমি বাটলে
2: তো ये जो है गांव गांव लीने एक तिहार संगे संगे बाजार होए से मंडी होए से तो ये एक संस्कार ले जुड़ ली से तो ये संस्कार ने जुड़न बाती उता जानू जसन की गांव गांव लीने मंडी आए फलना ताने होए से है ये गांव ने होए से एक साल छाड़न बाती दूसरा साल होए से तो ये बोलू भी संस्कार ले जुड़न बाती तो हम जो गांव गोली के लोग जो है आगे ले जसन की आजादी जो पहले और बाद में बोले तो ये संस्कार चले से ये के सुनन बाती जानन बाती लोग जानू आगे जाए सो और उन काम के जो है उतर जाऊन बाती देवी धाम पूजा पाठ कर सो तो मैं संग संगे आर्थिक क्षेत्र चो गोट के मैं सांगे से जसन के आगे आजादी पहले ये सुविधा नहीं रही जसन की आम के मछली पालन आए या कृषि क्षेत्र आए या सुअर पालन आए ये कई प्रकार की जो योजना वाले नहीं रही तो ये सरकार बाटले आम चो कई प्रकार की योजना हो सी को आगे नहीं जान रोलू आम चो गाँव ने बल नहीं चलते रही जसन मछली पालन आए तो गाँव में आम चो खेती बाड़ी तो आसे लेकिन तालाब बला से उनता मछली पाल लेने आमके काय फायदा होए से और काय आमदनी मिरे से उनके जान लेने तो हमी उन सरकार चो योजना के बल आम धरु खोए दे और नहीं जान ले आमके काय नहीं मिरे उसने सुकर पालन आए जसन बरा पालन आए उता बोले आमके खूब फायदा मिरे से उन संगे संगे पढ़े लिखे भाई मन जेके हुनर आसे जे चो लगे अकल ज्ञान आसे उन मन काय कर सो तो आजकल सिर में टिटावल बनाए गाँव चो गाँव में पानी मिरे से गाँव में गिटी आसे सिर मीटा हमके धरुक पड़े से उन इटावल बनान बाती हमके अच्छा कीमत गोटो कीटाने हम कुतावला हमके मीरे से गांव चो पानी आए गांव चो लेबर आत गांव चो ये सब मीर सोत तो हम गांव गोली ने फायदा हो से ये केवल हमको हुनर रख तो रहा है और ये चीज के बले बनाते रहा है। उसने उसने कई प्रकार के कोसा पालन लाख पालन है कई प्रकार गांव नहीं लो रोजगार आ से हम तो रोजगार के हमी अभी ये खुशी बनाते बनाते रोजगार के बल हम के बनाते रहा है रोजगार मिले नाम का और बल खुशी है। ये अमृत महोत्सव अंतर्गत रोजगार मिले तो पूरा परिवार खुशी और उन संगे संगे हम खेती किसानी का ट्रैक्टर बल गेन सको कई प्रकार के कृषि यंत्र वाला हम चल गया दे तो ये चीज की हम की गाँव गोली ने पढ़े लिखे होन बाती ये के मसागत ने मूसा मास बलुआत ये सब चीज हम के मिलते जाए।
1: हाँ तो मंत्र राम ना हुए दर्शन की तुम इतलो अच्छा जोन बेरल आम के आजादी मिलने से हम स्वतंत्र होलू से बल्ले कितलो आमी कहीं बल्ले आमचो जीवना के चला तो काजे बोलू बे बल्ले कहीं बल काम करुक लाए सखू अपने मन ने सोचो सखू जैसन की बल्ले मोरे दादा तुम पूछू है भी कि तुम बल अपन लो मन ने सोच साच होती कि आम इतलो आजाद होलू स्वतंत्र होलू तेबले बल का है कि लोग पाग बल्ले ये चीज की नहीं कर सोत उन चीज की नहीं कर सोत अपन आगे नहीं बढ़ सोत शिक्षा ने ना आर्थिक रूप ने असन मन ने तुम जो विचार बल ऐसे होती तो ये तुम जो मन चो गोट के में जानुक चाहे से तो असन तुम जो मन नहीं लेने बल ने काय कर लेने होए दे कसन लोग के पूरे उन कसन बाढ़ दका लेने होए दे
0: ये बे हुन चीज के बात पूरी हुन बात करा का चाहिए। अबे तो सरकार बांट ले महिला समूह बना ला सोत सरपंच बल बना ला सोत सरपंच मन के बले असने के सरपंच बनलो और हम चुकाम हुतली बोलो नहीं ये चीज के सरपंच और महिला समूह बाटले बले नहीं हुन मन के जाऊन समझो पड़े दे घर घर ने कि पढ़ लो ने ये फायदा है पढ़ लो ने ये अच्छा होए दे ये सारे चीज के उन्हीं के माध्यम ने होए दे और कसन बोलो ने आजकल नहीं कोनिच बीती के बोले आगे बढ़ा तो रहा ले गोटक बात के 10 बार बोल लो नाल और गांव के लोग बोले नहीं समझते सत्य आए ना ये पहले से बोल उन बाती फिर हुन छी साहब ने आगे बढ़ सो तो ये सारी जो चीज है नहीं सबले आज जसन सरकार बोले से सरकार से बोले हुनी मतलब आए हुनी हिसाब ने बना ली सकी जुगे से जुगे लोग मन के समझोत है कि नहीं समझोत उनके और पीला मन के पढ़तो का जी पठाओ है नहीं पीला मन पढ़ दे अरे भाई ठीक है नौकरी नहीं मिल लिया ले कम से कम आप लोग ज्ञान वर्जन एक पढ़ाई लिखाई मर तो बेरा मनुक बोले साथ नहीं दे बेटा बोले साथ नहीं दे पढ़ लो लिख रो बोले कहीं कागज पत्री का बल पड़ुक बोले सके दे ये एक चीज है पढ़ लो ने ये फायदा है मर तो दम तक के साथ रुआ ये हाँ पढ़ लो लिख लो ने तो ये जो है नहीं ये मैं तो माध्यम हुनी देखे से कि महिला मन जो समूह बना ला सोत और सरपंच के उन मन की उन बाती कसन बोलो ने सरपंच बोलो ने आज शासन बांट ले राशन मीरे से है कि नहीं कहीं बीती कसन कहीं गाँव चो लोग मन कसन डरा लो नाल और तो नहीं कर सोत का है तू ऐसा कर नाल तू राशन के बंद करूं दे दे है कि नहीं असनी मेलाए मेलाए बोले समझ काज बोलते रहे उनके डरा तो काज नहीं बोलते रहे उनके नहीं मेरे बाती असन बोलू डरान बाती नहीं पीला मन के पड़ा पठा दे हुन बोलो ने हुन फट से मान दे गोटू बोल पीला के नी छंडा पढ़ा दे ये सारी चीजें असन बाद में उनचो बाद में नहीं पढ़ा रहा बोले आज भी दुकार सुकार दुनिया भर जो आसे है कि नहीं जुगे हुन सिरहा गुनिया लग बल दक्तोरा है उनके बल मना नहीं करूं हमी सिरहा गुनिया बल दक्तोरा यार अस्पताल आसे गाँव ने नर्स भाई आसे उनचे लोग फटाक नहीं जाते रहे कि असन असन हो से उनके बल दिखाते रहे तेबे हुन मन खान पीन पढ़ाई लिखाई ये सारे चीज होलो ने हम जो लोग मन शिक्षा बातें खिंडी आगे बढ़ दे असनी की कर लो नहीं हम चो बीत लोग मन नहीं मैं मचो हिसाब ने अब तक के जसन हम ये बाटू बाट भूलू से सामाजिक बाटले बल्ले शिक्षा ही बाटले कमी नजर ऐसे और बाकी कोनी बाटले खिंडी खिंडी की इम्प्रूवमेंट तो आसे ची ये चीज ये हमन बोले दोकू से हम बोले जाऊंगा हम समाज बाटले ये बाटू बाट बोसुआ तो हमन सांगुआ की पीला मन के पड़ा थोड़ा है ये भाई जाऊक दिया ठीक नो है समाज कसन सुधरे दे ये सब हमन बल समझाऊ कि शासन ही चीज नो है नाले ग्राम से ये सरपंच ही काम है महिला मन जो नहीं हमन बल समाज लग बोलूआ असन असन नो है कि हम समाज में ऐसा चिरुआ हम हमन बल बोलूआ कि काय भी तीखा तो राय हम तो ये सब मंद मंद मंद के भले जुगिनी पिया ये सब चीज के बल हम समझाइश दे हाँ
1: तो बलदेव मोरे दादा तुम्ही इतलो अच्छा सांगलास जसन की आमचो आजादी होरलो बेराले जसन की महिला मंचो गुट तुम्ही निकराला से मन के बले काय की हर क्षेत्र ने बल्ले ने प्रतिनिधित्व आगे बढ़तो काजे मेरे से आरु ये मंचो काजे अलग ले आरक्षण होली से चाहे वो पंच हो सरपंच हो जनपद हो जिला हो मंत्र काय की ये बले आम के दखुकला मेरे से कि आरक्षण कारण ने काय कि महिला जोन प्रतिनिधि मनात सरपंच बल बनसोत जनपद ने बल जायसोत जिला ने बले बनसोत मांतर काय कि तेबले बले बल्ले काय कि काई चीज काई सभा होए से काई अच्छा फंक्शन होए से जोनतान महिला मन के बोलतो रहे एतान बल काय कि महिला मन जाए कि जुगे पूरे नहीं होत बल्ले आम सांगा सुन आम बिल सोनू से जोसन की कोनी महिला सरपंच आहेत तुमचो मनोगीता के पूरे करे से नाले भाई भी ताक पूरे करे से नाले कोनी सा तो ये बले होय से बले काय की जब स्वतंत्रता होली और महिला मन के बल इतलो अधिकार मिरली उन मन बस स्वतंत्र आसत उन मन बल काय की असंता ने आपलो जोन दुख सुख आए जोन बनात रहे तो एक ही तो उन आपन सांगुक ला सके है कि नहीं काय बोले महिला मन के काय तकलीफ आसे
0: एक बात में सांगे से एकदम सही बात है हमन जे दिन ले हम समझू से अरे बेबल समझू से हम जो समाज ने बायले लेकी सबले अगर बूता करे सर ये बेबल करे सर मनुख ले अगर करे से कसन पर लो ने नहीं ये दखलो रासे जान लो रासे हुनी जो एक ऑटोमेटिकली दबाव कारण में ये खुलून बाती हुन सरपंच गिरी बने निक रुक सके से तो कम से कम हुनचो मनुख मन के उनके हुनचो काम के बल घर के हुन मनुख लोग मन हुनचो पुरुष जाति मुगल करो
1: करो
0: तेबे हुन खुल के आए दे कसन बरलो ने देखा ये भी तो खिंडी के एक बात होली की ढेकी उकी खिंडी कम होली
1: कम होली
0: आगे चार बजे धुरुन भाती ढेकी कांडुक मुरियाओ ढेकी कांड द्वार बड़ा पानी आंदो ठांडी कांदरी के धोत पीला झीला के उठावत गोरस खुआवत फिर कौन तो उन रांदा खाने जो सरा बड़ा करुन बाती बनावत हुन बात कौन कमाऊ के लाए गेलो मन खुनता ने रांधुन बाती नी खाउन बाती पेज ने उन देवत हुन बाटे पेज ने उन बात हुनतान बल बूता करुक लागत फिर हुन बात ले फिर उन बाती असनी करुन बाती रातली दस बजे तक के काम करो है नी अब हुनी एक चला नीली से एक मनुख लोग मन बोल समझुक पड़े दे हो है कि नहीं जबकि सरकार बाटले कानून ने सबके बराबर जो दर्जा दिली से कि भाई हुनमन जो खिंडी बुता के हल्का करुक पड़े दे तेबे सरपंच बोले हुन खुल बाती जसन की अभी तुमन बोला सास की नहीं नहीं हुन चो भाई असन करे सनाल हुन चो मनुख सरपंच सही बात है हुनके हुन बाटले हुनके रियायत नहीं मिले से हुन चो आदमी बाटले हुन चो बाटले मिर तो रासे और एक मैं इतलो बोले शासन सरपंच इन भाई मन बोले बनला साथ आले दोनों डोकरा डोकरी गोटिया गोटी हुआ कोई भाई मके इतलो काम के करुक दे तू इतलो काम की तू कर बाटा बटवारा हुन बाती कर लो ने तू समाज चो बल काम कर से हुन बल घर चो काम से फिर तू पे तो घर चो बल तो काम कर से ची तो असन जब तक के तालमेल कर लो नहा लो नहीं हुन मन खुलुक नहीं सक दे ये मचो मैं पर्सनली बोले मैं बोले से कि जोन जोन बोले हम चो समाज चो लोग मन असन आसोत नहीं उनमन के मकबले में उनमन के भाई गुआर करे से दखा हो उनमन के खिंडिक तुमन काम धाम ने बोले खिंडिक सहूलियत दिया है नी असन नी बोलू कि भाई तू असन काम करता रहे तुझे ही काम है बोला बोले नहीं हुन चो काम को बोले हम ही करूँ हम चो काम को बोले हुन करे से असन तालमेल बना लो ने दोनों घर बोले अच्छा चले दे समाज बोले अच्छा चले दे सब कुछ अच्छा चले दे
2: तो असनी बलवीर भाई बलदेव दादा तो ये मन जो लाज मेटात काजी ये मन श्रम मेटात काजी आज ही आजकल जो है स्व सहायता समूह महिला मन जो एक अच्छा रास्ता है तो ये मन जो श्रम बल मिटे दे और लाज बल मिटे दे और समाज में आगे बढ़ तो काजी एक रास्ता बल खुले से तो महिला मन के आगे आन तो काजी कई प्रकार के समूह स्व सहायता समूह बन ली थी तो ये समूह में रोन माती नहीं भाई मन शिक्षा क्षेत्र में और हुनर के क्षेत्र में आगे बढ़ला से जसन की खत बना तो काम खत बना तो काम महिला मन काय कर सोत ये जो यूरिया जो सुपर फास्फेट जो रासायनिक खाद है उनले बाज तो काजे किसान मन की काजे ये केचुआ खाद तैयार तो केचुआ खाद बनाते और उन मंचो जो बल विधि विधाना से उनके समाज तो सामने रख सोत गाँव गौली और ये मन उन खत के दिले ने काय हानि नुकसान आते उनके पूरा सांसद समूह के लोग और उसने मछली पालन क्षेत्र में समूह बने उन मछली बल बिकुन बाती नहीं आर्थिक स्थिति महिला मन मजबूत बोला थे और ये संग संगे एक जागरूक बल बढ़ ली उनके पीला जिला आगे हुनर जो स्तर के प्राप्त करला और उन मंचो खान पान पहनावा है और सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी

0: चीज में जो है ना, आजकल ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने ये त्योहार में उन मना गया सो 75 साल के बाद और आगे बढ़ते जाए सो धीरे धीरे ये मन सीख दे एकदम तो है आगे बढ़ तो नहीं सको, धीरे धीरे बढ़ दे ये सब चीज गांव गोल इन तो कुलाई मीरे से मैं आसन समझे से कि ये चीज जारी रहो और कई वैज्ञानिक क्षेत्र में बोले है समाज में बोले ये वे तुम सरपंच पंचायत बाती ली जो पढ़े लिखे होला जाले उन मन गांव च नेतृत्व बोले मजबूत लेकर और जो अनपढ़ होला से है और महिला सीट होली उत पीछे ची आसो उनच मनु काम करे से ना ले उनच कोई सगे समझे रिश्तेदार उनच काम करे से तो ये चो ने कहा कि आम चो समाज आम चो पंचायत खिनिक आगे बढ़ुक नहीं सक किनिक पिछड़े तो हम के शिक्षा में जाता रहा है शिक्षा के क्षेत्र में रहता रहा है और पढ़े लिखे की प्रतिनिधित्व देता रहा है तेबे आम च महिला समूह आप आगे बढ़े दे यही मचो एक सुझाव है।
1: तो देखा बोले अमृत उत्सव हिसाब ने आम इतना अच्छा गुड बात कर लू जितना आजादी आम की मिली तेबले बोले तेबे काय के आमी बोले ने धन दौलत चुनती बाढ़ती फिंदा वोड़ा बोले ने कहा बोले आमी जाओ के उकला सकूं ये सब गुड बात आर आम चुनती बाढ़ती बोले ने कितलो कसन हो से कसन नहीं होली से तो ये सब गुड बात आमी कर लू रेडियो बाटले आमचो गांवकारी भाई बहन मन बल सुन सोत होती सुनन बाती हुन मन चो मन ने कहीं ना कहीं असन तो विचार ये दे और उन मन बोले ने कहा कि आगे बढ़ तो काजे नहाले काय कमी आसे उन मन चो सोच ये दे और उन हिसाब ने कहा कि उन मन बोले ने भविष्य ने बोले ने जोन बोले करते रहे उन काम के कर दे और आगे बढ़ दे और घर परिवार संगे संग कहा कि आमचो समाज और देश ने बोलू कहा कि खुशहाली है दे हरी कह दे उदीम है दे तो बलराम मोरे दादा मंधर राम नाग दादा इतलो अच्छा आजी आमी गुड बात कर लू कितलो नंगत रही और आमचो रेडियो सुन तो लोग मन बोले सुनला जानला जरूर कहीं ना कहीं उन मन के उन मन चो मन ने विचार ये दे अरे तुम दोनों को खूब खूब जुहार
2: जुहार।

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा। प्रतिभागी थे मंदर राम नाग और बलदेव मौर्य, संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10:30 हुए हैं। रजनीगंधा में लीजिए सुनिए पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म अनाड़ी से स्वरलता मंगेशकर और साथियों का, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

लीजिए अब सुनिए फिल्म छाया का गीत, स्वर लता मंगेशकर और तिलक महमूद का। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: रजनीगंधा में आप सुन रहे थे पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested 5 accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The 5 accused persons in the case, 3 from Jaipur, 1 from Gurgaon, and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary inquiry in the case. Prime Minister Narendra Modi's appeal to reduce the consumption of fuel has made a profound influence, resulting in curtailing the use of petrol and diesel. Setting an example, the Prime Minister himself significantly reduced his convoy size, prompting several BJP chief ministers and other leaders to adopt similar measures. In keeping with the Prime Minister's appeal, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has directed an immediate 50% reduction in the fleet of vehicles. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has also announced that he will use a minimum number of vehicles for his convoy and asked his ministerial colleagues to do the same. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has announced limits on official vehicles used by ministers, MLAs and other public representatives. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma also announced to reduce his convoy size. Gujarat Governor Acharya Devrat announced that he will travel within Gujarat using trains, state transport buses and public transport. Bihar Deputy Chief Minister Vijay Kumar Chaudhary has announced that he will undertake official travel only when necessary. Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyed Abbas Araghchi, arrived in New Delhi this evening to participate in the meeting of the foreign ministers of the BRICS member country. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders have set a target of 193 runs for Royal Challengers Bengaluru and Raipur. In reply, RCB were 71 for 1 in 7.1 overs when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 192 for 4 in the stipulated 20 overs. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to field after rain and a wet outfield delayed the start of the match. In weightlifting, India's Gyaneshwari Yadav bagged 2 medals, a silver and a bronze at the Asian Senior Championship in Gandhinagar today. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद।